0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
1: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे तीना नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। पिछले फरवरी में दक्षिण अफ्रीका के बाद अब मॉरिशस ने नामीबिया से मवेशियों के आयात के परमिट निलंबित कर दिए हैं। ये फैसला डिवीजन दे सर्विस वेटरिनेर DVS ने लिया है। ये कदम खारास क्षेत्र के कारसबर्ग में कमर्शियल फार्म में फूड एंड माउथ बीमारी के एक मामले की पुष्टि होने के बाद उठाया गया। मंत्रिमंडल ने ये जायजा लिया कि 31 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने मॉरिशस और अमेरिका के साथ मिलकर 22 मई 2025 को हुए शागस द्वीप समूह समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए सहयोग का भरोसा दिया। और मंत्रिमंडल ने यह भी नोट किया कि 22 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने इस समझौते का विरोध दोहराया। बैठक के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सभी पक्षों को मंजूर होने वाला समाधान तलाशने की प्रतिबद्धता जताई। और न्यूयॉर्क में मौजूद विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कल अपने ब्रिटिश समकक्ष एड मिलीबान से मुलाकात की। और एड मिलीबान ने एक बार फिर ब्रिटिश सरकार की इस इच्छा को दोहराया कि ऐसा हल निकाला जाए जो तीनों पक्षों मॉरिशस यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काबिले तारीफ हो। और मॉरिशस की सरकार के मुताबिक शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। विदेश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर बैठक का मुख्य मुद्दा दोनों देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा रहा। चीन का मानना है कि अमेरिका उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है, खासकर व्यापार, टेक्नोलॉजी और ताइवान के मामलों में। अंत में मौसम का हाल।

0: कम दबाव वाली हवाओं के असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर के समय बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर देश के दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर, और रात्रि के समय भी बादल छाए रहेंगे और ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो हल्की एवं सामान्य रहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। सूर्योदय आज 5:56 पर और सूर्यास्त शाम के 6:06 पर। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। हमें आगे आ रही, नमस्कार।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
2: 819 kilohertz, ye hai Radio Mauritius.

0: धीरे धीरे सूर्य की किरणें धरती को चूम रही है और प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। देवी और सज्जनों, संगीत प्रेमियों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। इस समय मॉरिशस में सुबह के 6:04 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आप ही लोगों का लोकप्रिय राष्ट्रीय चैनल AM2 MBC रेडियो मॉरिशस। हमारा प्रसारण चल रहा है 819 किलोहर्ट्ज़ पर। नई सुबह नए दिन का आगाज कीजिए MBC रेडियो मॉरिशस के साथ। आज है शनिवार, जी हाँ शनिवार 26 सितंबर साल 2026। सितंबर महीने का ये अंतिम शनिवार है आज, सो इस शनिवार को अच्छी तरह से बिताएं। आज आप जहाँ भी रहें खुश रहे, सलामत रहे, मुस्कुराते हुए इस दिन को बिताएं और मन में अच्छे अच्छे विचार हो, शुद्ध पवित्र मन हो। जब मन शुद्ध और पवित्र होता है तो विचार भी अच्छे होते हैं। सो अच्छे विचारों के साथ इस नए दिन की शुरुआत कीजिए और एक प्यारी सी मुस्कान दीजिए। ये प्यारी सी मुस्कुराहट जो है आपको दिन भर खुश रखेगा और आप यूं ही मुस्कुराते रहेंगे। और कभी कभी दोस्तों आपके मुस्कुराने से अगर कोई और व्यक्ति खुश हो जाता है तो क्या बात है। तो जिससे भी मिलें प्यारी सी मुस्कुराहट से मिलें, नमस्ते करें, राम सलाम करें, अच्छी बात है। और जो कार्य पूरा नहीं हो पाया था कई दिनों से, अगर आज आपको मौका मिला है तो ज़रूर उस कार्य को पूरा करें। कोई भी काम अधूरा नहीं रहना चाहिए, काम तब बनता है जब काम पूरा हो जाता है, है कि नहीं। और मीठी मीठी नींद से जागे हैं और आप बेशक खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो नज़ारा बहुत ही प्यारा है। गर्मी का मौसम आ ही गया, जी हाँ। जब गर्मी का मौसम आता है तो सुबह जल्दी सूर्योदय हो जाता है, आपने अंदाज़ा लगाया होगा ना। अभी तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है और कई दिनों से काफ़ी गर्मी हो रही है। आज भी ऋतु विज्ञान के अनुसार काफ़ी गर्मी होगी, बस प्रार्थना करते हैं कि थोड़ी सी बारिश हो। बारिश की बहुत ज़रूरत है हमें, आप जानते हैं कि हमारे जलाशय धीरे धीरे सूख रहे हैं। सो प्रार्थना करते हैं इंद्र भगवान से, वरुण भगवान से कि बारिश हो और हमारे जलाशय भर जाएं। इन्हीं विचारों के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले कार्यक्रम की ओर। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रोग्राम है वैदिक नाथ।
1: सुनिए गहलोत राजपूत महासभा की ओर से वेदों और शास्त्रों पर आधारित कार्यक्रम वैदिक नाद।

अंते ही आदरणीय श्रोताओं को पंडिता सरस्वती तोड़िया रामभोजन का सादर नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की प्रस्तुति वैदिक नाथ कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, मानव जीवन केवल उपभोग के लिए नहीं है, यह दायित्वों और कर्तव्यों की एक श्रृंखला है। वैदिक दर्शन कहता है कि मनुष्य इस धरती पर अकेला या स्वतंत्र नहीं आता, वह आते ही समाज, प्रकृति और पूर्वजों की व्यवस्थाओं से बंध जाता है। इसी को वेदों में तीन ऋण कहा गया है। हर मनुष्य जन्म लेते ही तीन प्रकार के ऋणों को अपने कंधों पर लेकर आता है। इन ऋणों को चुकाना ही मनुष्य का वास्तविक पुरुषार्थ है। स्वामी दयानंद जी के अपनी अमर कृति सत्यार्थ प्रकाश और अपने उपदेशों में तीन ऋणों की जो वैज्ञानिक व्याख्या की है वह निम्नलिखित है। देव ऋण, महर्षि दयानंद जी के अनुसार देव का अर्थ है दिव्य शक्तियों और प्रकृति के तत्व, जैसे वायु, जल, अग्नि, सूर्य, पृथ्वी, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें जीवन दे रहे हैं। हमारा शरीर और जीवन इन्हीं के कारण सुरक्षित हैं। इस ऋण से मुक्त होने के लिए महर्षि दयानंद जी ने दैनिक अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन को अनिवार्य बताया। यज्ञ करने से वायु और जल शुद्ध होते हैं, जिससे पर्यावरण का उपकार होता है। प्रकृति से हम जो शुद्ध तत्व लेते हैं उसे यज्ञ के माध्यम से शुद्ध करके वापस लौटाना ही सच्चा देव ऋण चुकाना है। ऋषि ऋण, प्राचीन ऋषियों के नाम पर केवल तर्पण का जल छोड़ देना ही ऋषि ऋण से मुक्त मान लिया जाता था। महर्षि दयानंद का मानना था कि ऋषियों और गुरुओं का वास्तविक धन उनका ज्ञान और वेद है, जो उन्होंने कठिन तपस्या करके मानव जाति के कल्याण के लिए ग्रंथ रूप में छोड़े हैं। आर्य समाज के नियमों के प्रकाश में इस ऋण को चुकाने का एकमात्र तरीका स्वाध्याय और विद्या का प्रचार है। स्वयं वेदों और सत्य शास्त्रों को पढ़ना, अज्ञानता के अंधकार को दूर करना और उस ज्ञान को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सच्चा ऋषि यज्ञ है। पितृ ऋण, स्वामी जी ने इस विचार का सबसे तीव्र खंडन किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समुलास में लिखा कि जो जीवात्मा शरीर छोड़ चुका है वह अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म ले चुका होता है। उनके अनुसार पितृ ऋण चुकाने के दो मुख्य चरण हैं। जो माता पिता साक्षात हमारे सामने हैं उन्हें भोजन, वस्त्र, सम्मान और प्रेम देकर मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण तृप्त संतुष्ट करना ही सच्चा तर्पण और श्राद्ध है। संतानों को उत्तम संस्कार देना, अपने कुल और वंश की श्रेष्ठ परंपराओं को जीवित रखने के लिए अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और चरित्रवान बनाना ताकि वे समाज का उपकार कर सकें। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी समझाते हैं कि जो व्यक्ति मर चुका है उसका जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म ले चुका होता है, इसलिए सच्चा पितृयज्ञ वही है

जो 5 महायज्ञों के अंतर्गत रोज घर में किया जाता है, जहां विद्वानों, वृद्धों और माता पिता का सत्कार होता है। उपनिषद का आदेश भी यही है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, अर्थात माता पिता, आचार्य और अतिथि ही हमारे साक्षात देव हैं, जिनकी सेवा हमें उनके जीवित रहते साक्षात करनी चाहिए। श्रोताओं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने समाज को केवल विचार ही नहीं दिए, बल्कि जीवन जीने के लिए आर्य समाज के 10 नियम भी दिए। जब हम पितृपक्ष, श्राद्ध और 3 ऋणों की बात करते हैं, तो आर्य समाज के ये नियम हमें अंधविश्वास की भूलभुलैया से निकालकर सीधा और सच्चा मार्ग दिखाते हैं। आइए विचार करें आर्य समाज के 4th और 5th नियम पर। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्म अनुसार, अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करने चाहिए। महर्षि दयानंद हमें समझाते हैं कि जब हम पितृपक्ष की बेला में हो, तो हमें सत्य और असत्य का विवेक विचार करना होगा। असत्य क्या है? जीवित माता पिता को कष्ट देना और मरने के बाद उनके नाम पर श्राद्ध करना। सत्य क्या है? वेदों के अनुसार जीवित माता पिता की साक्षात सेवा शुश्रूषा करना, भूखों को अन्न देना और विद्वानों का सत्कार करना ही सत्य और धर्म अनुसार आचरण है। इसके साथ ही आर्य समाज का 6th नियम कहता है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। माता पिता हमारी आत्मिक और सामाजिक उन्नति की पहली सीढ़ी हैं। यदि हम उनके सेवा करते हैं, तो यह न केवल हमारी पारिवारिक उन्नति है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण है। जब हम अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता, उनके दादा दादी का सम्मान करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी संस्कारी बनेगी। यही सच्ची सामाजिक उन्नति है और यही पितृ ऋण को चुकाने का व्यवहारिक तरीका है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों में 3 ऋणों की अवधारणा मनुष्य को एक जिम्मेदार और सजग नागरिक बनाती है। उनका संदेश बहुत सीधा था, अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ो, वर्तमान कर्तव्यों को पहचानो और जीवित माता पिता और प्रकृति की सेवा कर सच्चे अर्थों में ऋण मुक्त बनो। यही वेदों का सच्चा ज्ञान है, यही पितृपक्ष का असली श्राद्ध है। सर्व तीर्थ मई माता, सर्व देव मयह पिता। माता सारे तीर्थों का रूप है और पिता सारे देवताओं का स्वरूप है। जीवित माता पिता और बुजुर्गों की सेवा तथा उनके प्रति अघात आदर को समर्पित यजुर्वेद का एक और दिव्य शक्तिशाली वेद मंत्र प्रस्तुत है। पितृभ्यः स्वाधायिभ्यः स्वदा

नमः। इस मंत्र में तीन बार स्वधा नमः और स्वधायिभ्यः शब्द आया है। स्वधा का अर्थ केवल तर्पण की

0: आहुति नहीं है। वैदिक विज्ञान में स्वाधा का वास्तविक अर्थ है आत्मिक संतुष्टि, पोषण और अन्न जल से तृप्त करना। सच्ची पितृ पूजा यही है कि हमारे घर का कोई भी बुजुर्ग अतृप्त न रहे। आइए वेदों के इस आदेश को अपने जीवन में उतारें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वैदिक नाद।
2: रेडियो मॉरिशस पर सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। सुबह के 6:18 हो रहे। अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। नोत्रदाम के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 27 सितंबर को सुबह के 7 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और वाकवा फिर रॉयल रोड ग्लेन पार्क मुंबई रोड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 26 सितंबर को दिन के 9 बजे से दिन के 12 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और हॉपा रोड ग्लेन पार्क के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 26 सितंबर को दिन के 11 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना की बिजली की सप्लाई को चालू कर दी जाएगी। सेव इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ।
3: 819 किलोहर्ट्ज़ यह है रेडियो मॉरिशस।

आज शनिवार है और बहुत से लोग शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करते हैं, और शनिवार की शनि पूजा इस तरह से होती है। ये जो पूजा की सामग्री होती है, सरसों का तेल, काला तिल, काली उड़द, काला कपड़ा, दीपक और रुई की बाती, जल, फूल, धूप, अगरबत्ती, गुड़, शनि देव की प्रतिमा या चित्र, प्रसाद और सुबह की तैयारी। शनिवार को प्रातः स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनना, पूजा स्थान को साफ करके शांत मन से बैठना और फिर संकल्प, जल हाथ में लेकर अपनी श्रद्धा के अनुसार संकल्प करें। हे शनिदेव, मैं श्रद्धापूर्वक आपकी पूजा कर रहा हूँ, मेरे जीवन के सभी दुखों को दूर करें और जीवन में प्रकाश लाएं। शनिदेव के चित्र प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, काला तिल, फूल और प्रसाद अर्पित करें। परंपरा के अनुसार सरसों का तेल का दीपक विशेष रूप से जलाया करें, मंत्र जाप करें और मंत्र जाप ओम शन शनाचार्य, ओम शनाचार्य नमः, इसे 108 बार जाप करें। और एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम प्रोम प्रोम सह शनिचार्य देवाय नमः। इसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें, समय होते हो तो शनि स्तोत्रम या शनि स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं। कई परंपराओं में शनि देव को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। यदि मंदिर में पूजा कर रहे तो वहाँ के नियमों का पालन करें। और शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा की परंपरा भी है। जल अर्पित करके दीपक जलाया करें और श्रद्धा के साथ ओम शनिचराय नमः का जाप करें। ध्यान रखें, यदि पीपल के पास पूजा कर रहे हैं तो स्थानीय मंदिर की परंपरा और स्वच्छता के नियमों का पालन करें। शनि पूजा में दान और सेवा को विशेष महत्व दिया जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, कंबल, काली वस्त्र, भोजन

दान कर सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी शुभ माना जाता है। अंत में शनिदेव की आरती करें और प्रार्थना करें। ओम शनिदेव, मुझे सत्य, न्याय, संयम और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरे कर्मों की भूलों को सुधारने की बुद्धि में दें और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें। तो शनिवार के दिन हम शनिदेव का व्रत धारण करते हैं और शनि पूजा का मूल भाव कर्म, अनुशासन, धैर्य, न्याय और सेवा है। केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि उस दिन किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, ईमानदारी से काम करना और किसी को जानबूझकर कष्ट न देना इस भावना के अनुरूप है। सो जितने भी लोग आज शनिदेव की पूजा करें, उनका व्रत धारण कर रहे हैं, ये शनिदेव भजन आपके नाम।

इसी शनिदेव भजन के साथ यह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होता है। ठीक 6:30 बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का हाल और स्पोर्ट्स रिव्यू। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्रेम से MBC रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 6:30 बजे है। समाचारों में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें। फुट एंड माउथ डिजीज के मामले के बाद मॉरिशस ने नामीबिया से मवेशियों के आयात के परमिट निलंबित कर दिए हैं। अब केन्या ही जीवित मवेशियों के आयात के लिए एकमात्र मंजूर देश है। मंत्रिमंडल ने शागस द्वीप समूह समझौते से जुड़े ताज़ा घटनाक्रम का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बातचीत की, जबकि अमरीकी राष्ट्रपति ने समझौते का विरोध दोहराया। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने यूके के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष लॉर्ड न्यूबर्ग से मुलाकात की। दोनों के बीच कानूनी सुधार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक विवादों के समाधान पर चर्चा हुई। विदेश में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की शिखर बैठक में व्यापार और ताइवान पर चर्चा हुई। ट्रेड वॉर्स में संघर्ष विराम जनवरी तक बढ़ाया गया। और अब समाचार विस्तार से। पिछले फरवरी में दक्षिण अफ्रीका के बाद अब मॉरिशस ने नामीबिया से मवेशियों के आयात के परमिट निलंबित कर दिए हैं। ये फैसला डिवीजन दे सर्विस वेटरिनेयर ने लिया है। ये कदम कारस क्षेत्र के कारसबर्ग में एक कमर्शियल फार्म में फुट एंड माउथ बीमारी के एक मामले की पुष्टि होने के बाद उठाया गया। बीमारी के संदिग्ध लक्षण वाले 11 मवेशियों में से 10 के 23 सितंबर को किए गए परीक्षण पॉजिटिव आए। अब केन्या ही एकमात्र ऐसा देश रह गया है जिसे डिवीजन दे सर्विस वेटरिनेयर ने जीवित मवेशियों के आयात की अनुमति दी है। कृषि उद्योग मंत्रालय के प्रिंसिपल वेटरिनरी ऑफिसर डॉक्टर पीताम्बर सिंह बिहारी ने इसकी जानकारी दी, उनको सुनते हैं।
2: Looking at correspondence officielle du chef vétérinaire de Namibie, côté info moi, les Fingai Banka, deux fièvres afteuses dans la zone qui est connue comme indemne de la fièvre afteuse par l'Organisation internationale des épizooties. Nous, nous, policy, c'est, étant donné qu'officiellement, nous Fingai une notification de la fièvre afteuse de Namibie, immédiatement, nous Fingai

0: On a des décisions pour annuler tout ban permis d'importation qui nous donné, peu importe, bans animaux vivants de ce pays-là. Mais cause bans animaux comme bœuf, cabri, mouton. Et il y avait deux pays qui sont amenés, c'est Namibie et Kenya. Mais là, malheureusement, il n'y a que Kenya, et pas partout dans Kenya, mais bien en face là-dessus, il y a un seul county qui est considéré comme non infecté par la fièvre aphteuse. Et il y a cinq ranchs là-bas depuis lesquels nous sommes capables d'amener les animaux.
1: मंत्रिमंडल ने ये जायजा लिया कि 31 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने मॉरिशस और अमेरिका के साथ मिलकर 22 मई 2025 को हुए शागस द्वीप समूह समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए सहयोग का भरोसा दिया। मंत्रिमंडल ने यह भी नोट किया कि 22 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने इस समझौते का विरोध दोहराया। बैठक के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सभी पक्षों को मंजूर होने वाला समाधान तलाशने की प्रतिबद्धता जताई। ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के फैसलों और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 73-295 का भी समर्थन प्राप्त है। मंत्रिमंडल ने यह भी कहा कि मॉरिशस ने कभी डिएगो गार्सिया में सैन्य अड्डे के लगातार संचालन पर सवाल नहीं उठाया है। मई 2025 का समझौता इस अड्डे के लंबे समय तक सुरक्षित और प्रभावी संचालन की गारंटी देता है। ब्रिटेन की आगामी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जोनाथन पावेल ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात करेंगे और शागस द्वीप समूह से जुड़ी ताज़ा घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल ने लोकल गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड यूज़ परमिट फीस रेगुलेशन 2026 लागू करने पर सहमति दी है। इसके तहत सभी स्थानीय प्राधिकरणों में बिल्डिंग एंड लैंड यूज़ परमिट फीस को एक समान किया जाएगा। इन नियमों में अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक नई श्रेणी भी शामिल की जाएगी। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और January 2027 से बार्टोलोमीज कॉलेज और रॉयल होलोवे कॉलेज को मिलने वाली सरकारी मदद बंद हो जाएगी क्योंकि दोनों स्कूलों में छात्रों की संख्या तय सीमा से कम हो गई है। दोनों स्कूलों के छात्रों को उनके घर के पास दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। योग्य स्थायी शिक्षकों और कर्मचारियों को मेडको में लेकर दूसरे स्कूलों या जहां ज़रूरत होगी वहां काम दिया जाएगा। न्यूयॉर्क में मौजूद विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कल अपने ब्रिटिश समकक्ष एड मिलिबांड से मुलाकात की। एड मिलिबांड ने एक बार फिर ब्रिटिश सरकार की इस इच्छा को दोहराया कि ऐसा समाधान निकाला जाए जो तीनों पक्षों मॉरिशस यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए स्वीकार्य हो। मॉरिशस की सरकार के मुताबिक शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान न्यूयॉर्क के विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने फिलिस्तीन के मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और दो राज्य समाधान को लागू करने से संबंधित उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मॉरिशस की ओर से बयान दिया। उन्होंने मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए मॉरिशस के समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि ये शांति दो राज्यों के एक दूसरे के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांतिपूर्वक रहने पर आधारित होनी चाहिए। विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कई देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने का भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल दोपहर यूके के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष लॉर्ड न्यूबर्ग से मुलाकात की। दोनों के बीच कानून के शासन, कानूनी सुधार और मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से जुड़े कानून पर बातचीत हुई। लॉर्ड न्यूबर्ग ने कहा कि वे मॉरिशस को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक विवादों के समाधान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देना चाहते हैं। याद रहे कि लॉर्ड न्यूबर्ग जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने 2012 से 2017 तक

0: यूके के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक न्याय के क्षेत्र में भी काफी अनुभव है। उनको सुनते हैं।
1: Mauritius as a place which has a high reputation in terms of integrity and lack of...
2: विश्वास के सिलसिले में मॉरिशस की अच्छी छवि है। लोगों को आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में इस देश का चयन करना चाहिए। लंदन अक्सर आर्बिट्रेशन करता है, लेकिन सदस्यों ने सहमति जताई कि मॉरिशस में आर्बिट्रेशन हो। अफ्रीकी देशों से मांग करता हूं कि वो व्यापारिक आर्बिट्रेशन के लिए मॉरिशस का चयन करें।
1: But the parties in their contract have agreed that the arbitration will be conducted in Mauritius. What I would hope in due course is that the parties based in Africa on the mainland would agree not merely that the arbitration is conducted in Mauritius, but that it is conducted under the auspices of a Mauritius arbitration center.
0: देखने में बिल्कुल आम लगने वाली कुछ खाने की चीज़ों के अंदर खतरनाक नशीले पदार्थ छिपे हो सकते हैं। अधिकारियों ने रोज़मर्रा के खाने की चीज़ों में नशीले पदार्थ छिपाने के एक नए तरीके को लेकर चेतावनी दी है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी चिंतित है, खासकर कम उम्र के लोगों को होने वाले खतरों को देखते हुए। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में गीता सुनारान के साथ।
3: ऊपर से देखने पर ये साधारण जेली कैंडी जैसी लगती हैं, लेकिन इनके जरिए एक नए तरह के ड्रग तस्करी के मामले को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। आजसू के अधिकारियों की सतर्कता से तस्करों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। पुलिस प्रेस ऑफिसर DASP सुहेल लिडियाराम कहते हैं, पिछले साल आजसू ने फ्रांस से आने वाले एक व्यक्ति को विमान से उतरने पर गिरफ्तार किया था। कई सामान जैसे खाद्य पदार्थ, गमीज, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उनके पास से जब्त किए गए थे। आजसू की जांच के बाद पदार्थों को फोरेंसिक लैबोरेटरी FSL भेजा गया और नतीजों से पुष्टि हुई कि इन सिगरेट्स और गमीज में सिंथेटिक ड्रग्स पाए गए हैं और गांजा भी। स्थानीय तौर पर क्यूपिप के आजसू ने एक व्यक्ति को कुकीज के साथ गिरफ्तार किया था जिनमें ये पदार्थ थे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता भी कम नहीं है। कैंडी के रूप में ड्रग्स का सेवन गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा कर सकता है, खासकर कम उम्र के बच्चों और युवाओं के लिए। हार्म रिडक्शन यूनिट के डॉक्टर यश मधु कहते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है, दिल से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अगर किसी बच्चे ने इसका सेवन किया है और वो अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। DASP सुहेल लिडियाराम कहते हैं, ऐसे मामले कम हैं, लेकिन जनता का ध्यान आकृष्ट करना बहुत जरूरी है। जांच अभी जारी है, लेकिन परिवारों के लिए संदेश साफ है, अधिकतम सतर्कता बरतना जरूरी है। कैंडी और दूसरी मिठाइयों की सही जगह और स्रोत की अच्छी तरह जांच करना और बच्चों को इस खतरे के प्रति जागरूक करना ही फिलहाल इस अदृश्य खतरे से बचाव का सबसे बेहतर तरीका है।
0: कृषि उद्योग से जुड़ी संस्थाओं के जिम्मेदार अधिकारी कल रिजवी में एक बैठक में जुटे। पहली प्रबंधन बैठक के 8 महीने बाद अब मंत्री अरविंद बुलेल कार्यक्रमों की निगरानी को और ठोस बनाना चाहते हैं। इसके तहत लक्ष्य तय किए जाएंगे, काम की प्रगति को मापा जाएगा और हासिल होने वाले नतीजों पर नजर रखी जाएगी। ये तरीका परफॉर्मेंस बेस्ड बजट 2026-2027 के तहत अपनाया जा रहा है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें समुद्री अर्थव्यवस्था, जलभूमि यानी वेटलैंड्स और वानिकी फॉरेस्ट्री से जुड़े कानूनों की तैयारी, मछली पालन का विकास और समुद्र से जुड़ी नई गतिविधियां शामिल हैं। डॉक्टर अरविंद बुलेल के मुताबिक लागू किए जा सकने वाले शोध से जुड़ी 20 से ज़्यादा परियोजनाओं को निवेश के लायक बनाया जा सकता है। उनके बयान पर सुमेरा अकबर अली को सुनते हैं।
4: Le département qui est responsable conservation, il y a bien assez travaillé. Il y a pourtant qui nous a fait le recrutement qui disait. Et ça,
2: conservation के जिम्मेदार विभाग का कहना है कि उसके पास काफी कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए भर्ती जरूरी है। MCIA का कहना है कि गन्ने की फसल बेहतर होगी, एक बायोमास प्रयोगशाला को कायम करेंगे। समुद्र से पानी को पंप करके होटलों तक सप्लाई करना यानी ओशन थर्मल एनर्जी एक हकीकत बन गई है और तरक्की करेंगे। आने वाले महीनों में ब्लू इकोनॉमी पर हमारा कानून भी लागू होगा।

0: de service cooling. Aujourd'hui, ce qu'on appelle Ocean Thermal Energy Conversion devient une réalité. Beaucoup de développement peut venir et nous, la loi, l'économie, dans les mois à venir, les pour être circulé parce que nous voulons que tout le monde stakeholder participe à nous.
1: बासन रोड कथोबोन में स्पीकन के दौरान एक बिक्री प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके लिए कई अन्य गतिविधियां की जाएंगी, मेडिकल चेकअप, रक्तदान आदि। इस बिक्री प्रदर्शनी में महिला ठेकेदारों को बढ़ावा दिया जाएगा। आरती लोचन को सुनते हैं।
2: सुबह के 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक और रविवार 27 सितंबर को सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक पाल्मा नेबरहुड वेलफेयर एसोसिएशन अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसी पहल का आयोजन कर रहा है जिसमें तीन अलग अलग गतिविधियां हैं। देखा जाए तो तीनों गतिविधियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग लग सकती हैं, लेकिन तीनों गतिविधियों का एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, अपने कम्युनिटी को सपोर्ट, एम्पावर और उनकी देखभाल करना है। तीनों गतिविधियों में स्मॉल एंटरप्रेन्योर का मेला, रक्तदान, स्वास्थ्य जांच शामिल है। हम चाहते हैं कि हमारे एंटरप्रेन्योर केवल ग्राहकों से ही नहीं बल्कि उन संस्थाओं और संगठनों से भी मिले जो उनका मार्गदर्शन और सहायता करें तथा उनके व्यवसाय को विकसित करने में भी मदद करें। इसलिए हमें खुशी है कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस, फारे, एसटीसी और एएमबी जैसी संस्थाएं और अन्य संबंधित लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर समुदाय के साथ जुड़ रहे हैं। आइए और छोटे एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कीजिए। यदि आप रक्तदान करने के योग्य है तो आइए और रक्तदान कीजिए। आइए और अपना बेसिक हेल्थ चेक कराइएगा। अपने परिवार और दोस्तों को साथ लेकर आइएगा।
1: चाइनाटाउन फूड एंड कल्चर फेस्टिवल का 19वां आयोजन इस शनिवार 26 सितंबर और कल रविवार 27 सितंबर को पोर्टवी में होगा। खान पान, संस्कृति और चीनी परंपराओं को समर्पित इस आयोजन में इस साल 18 समूह हिस्सा लेंगे। आयोजन शनिवार को दोपहर 3:30 शुरू होगा, जबकि रविवार को दोपहर 12 से कार्यक्रम शुरू होंगे। दोनों दिनों में कार्यक्रम रात 10 तक चलेंगे। चाइनाटाउन फूड एंड कल्चर फेस्टिवल 2026 के अध्यक्ष सिद्री आचंग के मुताबिक लोगों के लिए कई तरह के कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। मेलाइन डांसिंग, लायन डांस, वुशू और ड्रैगन डांस के साथ साथ संगीत कार्यक्रम और दूसरी मनोरंजन गतिविधियां भी शामिल होंगी। सिद्री आचंग के बयान पेश है।
3: Comme chaque année, dans Chinatown, une traditionnelle mie chinoise, donc nukian, boulettes, des traditionnels gâteaux chinois, bao, gâteaux sésame, etc.
4: हर साल की तरह चाइनाटाउन में पारंपरिक चीनी पकवान होंगे। रिवायती मिठाइयों के अलावा नए पकवान भी होंगे, जैसे कबाब, बिरयानी, आलिम वगैरह। मुर्शन चीनी कलाकारों का भी परफॉर्मेंस होगा। पारंपरिक लायन डांस, मार्शल आर्ट्स देखने को भी मिलेगा। उद्घाटन समारोह सुपहर 3:30 से शुरू होने वाला है और सांस्कृतिक प्रोग्राम 5 से रात के 11 तक होगा। रविवार को दिन के 12 से फेस्टिवल शुरू होगा जो रात के 11 तक जारी रहेगा। सभी फूड स्टॉल्स भी खुले होंगे।
3: Les food stores sont ouverts jusqu'à 11h.
1: विदेश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर बैठक का मुख्य मुद्दा दोनों देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा रहा। चीन का मानना है कि अमेरिका उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है, खासकर व्यापार, टेक्नोलॉजी और ताइवान के मामलों में। ट्रंप ने शी जिनपिंग का भव्य स्वागत किया, लेकिन चीन को अपनी सभी उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। ट्रेड वॉर में संघर्ष विराम को नवंबर से जनवरी तक कुछ महीनों के लिए बढ़ाया गया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ को फिलहाल रोकने पर सहमति जताई, जिससे तनाव को आगे बढ़ने से रोका जा सका। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। कम दबाव वाली हवाओं का असर हमारे स्थानीय मौसम पर

रहा है। पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर बाद के समय देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर। रात के समय भी बादल छाए रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी, खासकर ऊंचे इलाकों पर। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री

0: तो इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुई। इसे आप तक पहुंचाने में हमें अपर्णा, कपिल और सुमेरा का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
0: रॉयरूट कुंगुमामी 66 साल की 66 years old की श्रीमती वीरमती अकू, पैदाइशी नाम नारायण, पैदाइशी नाम नारायण और जो मुकुन सुमादाम नाम से ज़रा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे आज दिन के 12:30 बजे उनके घर रॉयरूट कुंगुमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैफकुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। रामपत लेन क्लियर फोन नंबर एक फिनिक्स में 70 years old के जनाब तैयब अमीर जो धुल नाम से ज़रा जाने जाते थे का अंतकाल हो गया। उनका जनाजा आज दिन के दस बजे उनके मकान रामपत लेन क्लेफो नंबर एक फिनिक्स से निकाल कर दफनाने के लिए फिनिक्स के कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टुडे एट 10 AM। एवेन्यू नाना फागासन वाकवामी 81 साल की 81 years old की श्रीमती बात्मावादी सुलेन पैदाइशी नाम मुनिसोमी और जो पुष्पा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी उनके बेटे श्रीनादा राजा सुलेन के घर एवेन्यू नाना फागासन वाकवा से उठाकर थामा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी और समय के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। शिवाला रोड अमोरी में 59 साल के 59 years old के श्री जनार्दन कालीदीन जो कमलेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर शिवाला रोड अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोरी की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। एवेन्यू बेल सोस पम्पलमुस में 71 साल के 71 years old के श्री धर्मदेव गणेश जो धर्म नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज शाम चार बजे उनकी पत्नी श्रीमती क्लोजिनेट गणेश के घर एवेन्यू बेल सोस पम्पलमुस से उठाकर दफनाने के लिए पम्पलमुस की श्मशान भूमि ली जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। रॉयरूट बुबासा में 60 साल की 60 years old की श्रीमती बिडवंती सितोहल पैदाइशी नाम कुंदन और जो राधा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे रॉयरूट बुबासा के लिए अनशन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबैल की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। टैगोर रोड फोन जुसाक में 72 साल के 72 years old के श्री रामसामी मूर्ति वीरन जो मिसिय नाम से ज़रा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे श्री शिवासामी मूर्ति वीरन के घर टैगोर रोड फोन जुसाक से उठाकर दफनाने के लिए पंडित पापाई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिर एट 2 PM। रॉयरूट कुंगुमामी 66 साल के, वैसे ये शोक समाचार हमने पढ़ लिया है। ओडिसी रोड लाहौजा में 59 साल के 59 years old के श्री विद्यानंद सुकाय की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनकी बेटी श्रीमती

अनुष्का बुलबुल सुका के घर उड़ीसी रोड। लाहौजा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मादाल बिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10:30 AM। ब्लॉक 83 बी आलमा में, ब्लॉक 83 बी आलमा में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्ड के जनाब हामिद रसूल का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके मकान ब्लॉक 83 बी आलमा से निकाल कर दफनाने के लिए आलमा के कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 11 AM। बिसुंदयाल रोड कॉटेज में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंदनी मंगलदासी पैदाइशी नाम कोकिल और जो दानो नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री गुलशन मंगलदासी के घर बिसुंदयाल रोड कॉटेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुजी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। कमायालीन कौंदमास पावे में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुमारी प्रतिमा कौमाया पैदाशी नाम जीवुता और जो गीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके पति श्री सामी कमाया के घर कमाया लेन कौंदमास पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदमास की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। पिछित्रिविया के मुरा फ्यूनरल पार्लर में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिदवंती ओमिया पैदाइशी नाम दौतल और जो सती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे पिछित्रिविया के मुरा फ्यूनरल पार्लर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबाव की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 11 AM। पाउ दो मिल रोड दनियान लेन पॉम्पलमूस में 46 साल के 46 ईयर्स ओल्ड के श्री विशाल ओरादन जो विशाल मिनो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता ओरादन के घर पाउ दो मिल रोड दनियान लेन पॉम्पलमूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ट्रियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत परमभोत्सवम के संदर्भ में कोदो विलेज हॉल में शनिवार 26 सितंबर को शाम 6 बजे से सालाना गोविंद पूजा का आयोजन किया जा रहा है। गोविंदन तिरुविजा के संदर्भ में शनिवार 26 सितंबर को शाम 5 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक बोनाकई टेम्पल एसोसिएशन अरुण मिगू महा मरियामन तिरुकोविल रॉयल रोड बोनाकई में विशेष पूजा सत्र लगाए जा रहे हैं। शनिवार 26 सितंबर को सुबह 10:30 बजे ला निकोलिए जलाशय में गहलोत राजपूत महासभा द्वारा वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। नादिस रोड हाइलैंड्स फिनिक्स हाइलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर द्वारा रविवार 27 सितंबर सुबह 8:30 बजे एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। रविवार 27 सितंबर 2026 सुबह 5 बजे से दिन के 3 बजे तक श्री शिरडी साई महिमा डिवोशनल ग्रुप गंगा तालाव में महाविभूति अभिषेकम और महासरस्वती यज्ञ का आयोजन कर रहा है।

दोबारा नमस्कार आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। फ्रांस जीत गया किंतु किलियान एम्बापे घायल हो गया। इटली का स्क्वाड्रा जूरा अपने ही घर में हार गया और फ्रेंडलीज में टीम इंडिया ने पनामा को रोक के रखा, जबकि आज शनिवार की रात घमासान युद्ध इंग्लैंड और स्पेन के बीच। किंतु सबसे पहले मैनचेस्टर सिटी भारी असमंजस में है, भारी दुविधा में है। कई सालों के बाद मैनचेस्टर सिटी को फाइनेंशियल या वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है, वो भी 115 आरोपों पर। हालांकि क्लब ने अपील करने की घोषणा की है, फिर भी इसका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। प्रीमियर लीग के क्लबों ने तो यहां तक मुआवजों की भी बात की है और रिलेगेशन टाइटल छीनने आदि की भी चर्चा हो रही है। इस बारे में सुनते रहिए। यूएफए नेशंस लीग के प्रथम मैच अपने असली चेहरे दिखाने लगे हैं, यानी आज रात 11:15 महामुकाबला इंग्लैंड और स्पेन के बीच, तो कल शुक्रवार की रात जिनेदीन जिदान का फ्रांस बच गया, किंतु रोबर्टो मांसिनी का इटली डूबता जा रहा है। नतीजे विस्तार से सुनिए। ग्रुप एक में बेल्जियम ने एवजाकर इटली को 2-0 से परास्त किया। गोडेट और लुके बैकियो का एक एक गोल बेल्जियम की ओर से। इटली 0 बेल्जियम 2, टर्की 0 फ्रांस 1। फ्रांस का ये मात्र गोल किलियान एम्बापे ने स्कोर किया खेल के 54th मिनट पर। उसके बाद वो घायल भी हो गया, उसे स्ट्रेचर पर बाहर निकालना पड़ा। नए कोच जिनेदीन जिदान ने कोई भी खतरा मोल लेना स्वीकार नहीं किया, इसलिए एम्बापे को निकाला गया और उसकी चोट काफ़ी गहरी बताई जा रही है। सो फ्रांस की जीत हुई। अंत में इस मैच के 87th मिनट पर कसियर को टर्की की ओर से एक रेड कार्ड भी मिला। सो जिनेदीन जिदान की एंट्री सफल साबित हुई। फ्रांस ने एवजाकर टर्की को 1-0 से परास्त किया। ग्रुप दो में नॉर्दर्न आयरलैंड की जीत हुई जोजा के मैदान पे 1-0 से। आर्मेनिया 2 लेटविया 0, हंगरी 0 यूक्रेन 1, तो मोंटेनेग्रो ने साइप्रस को 2-1 से परास्त किया। ग्रुप चार में पोलैंड 0 बोस्निया 0, स्वीडन 2 रोमेनिया 1। स्वीडन की ओर से अलेक्जेंडर इसाक और विक्टर ग्योकेरेस का एक एक गोल, दोनों प्रीमियर लीग के टॉप स्ट्राइकर हैं। स्वीडन 2 रोमेनिया 1। अब आज रात और कुछ मैच खेले जाएंगे। आज ग्रुप एक में ही स्लोवेनिया का मुकाबला स्कॉटलैंड से, सैन मैरिनो खेलेगा फिनलैंड के विरुद्ध, नॉर्थ मैसेडोनिया वर्सेस स्विट्जरलैंड, अल्बेनिया टक्कर लेगा बेलारूस से। तो ग्रुप तीन में फारोवे आइलैंड्स वर्सेस कजाकिस्तान, चेक रिपब्लिक क्रोएशिया और इंग्लैंड वर्सेस स्पेन। ये मैच आज रात 11:45 10:45 PM के लिए निर्धारित है। वेम्बली स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को फिर से इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि कोल पाल्मर घायल हैं और कोच ने बताया कि वो उसको उसकी वापसी में अभी समय लगेगा। इस कारण आज रात इंग्लैंड वर्सेस स्पेन 11:45 10:45 PM, भूलेगा नहीं, नॉट टू मिस इंग्लैंड वर्सेस स्पेन। इसी में स्लोवेकिया खेलेगा मोल्डोवा के विरुद्ध और ग्रुप चार में बुल्गेरिया का मुकाबला लग्जमबर्ग से, तो आइसलैंड खेलेगा एस्टोनिया के विरुद्ध। इतना सब कुछ यूएफए नेशंस लीग को लेकर। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैचों में कल जो दो मैच खेले गए दोनों ड्रॉ पर ही संपन्न हुए। ऑस्ट्रेलिया 1 ब्राजील 1, रॉयन ने ब्राजील की ओर से इंजरी टाइम में इक्वलाइज किया। ईरान कुंडा का गोल ऑस्ट्रेलिया की ओर से। तो भारत भी 1 पनामा 1, टीम इंडिया ने एक शानदार ड्रॉ हासिल किया पनामा के विरुद्ध। याद रहे कि पनामा ने विश्व कप में भाग लिया था। सो इंडिया की ओर से विलियम्स का एक गोल, तो 68वें मिनट पर वेलेंशिया ने इक्वलाइज किया पनामा की ओर से। आज इन्हीं इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में दो अन्य मैच खेले जाएंगे। एक ही मैच होगा, यूएसए का मुकाबला आज रात पेरू से है। सो बता दें कि कल रविवार को भी यूएफए नेशंस लीग में कई महत्वपूर्ण मुकाबले हैं और अगले दो हफ्तों तक फुटबॉल जगत का सारा ध्यान यूएफए नेशंस लीग पर ही है। बता दें कि नेदरलैंड्स ने अपना मैच ड्रॉ किया था जर्मनी के विरुद्ध, योगन क्लब के जर्मनी के विरुद्ध। तो अगला मैच होगा नेदरलैंड का सर्बिया के खिलाफ। तो जर्मनी खेलेगा कल रात ग्रीस के

0: विरुद्ध। फुटबॉल में इतना सब कुछ, फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में किमी एंटोनेली की वापसी विद क्वालिफाइंग क्रैश। बता दें कि अभी अजरबैजान ग्रां प्री इसी रविवार को कल लगने वाली है, और अभी इसी फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में फिलहाल किमी एंटोनेली पहले स्थान पर है। मर्सिडीज का किमी एंटोनेली 292 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। जॉर्ज रसेल वो भी मर्सिडीज का ही है, उसके पास हैं 211 अंक। तो तीसरे स्थान पर फिरारी का लेविस हैमिल्टन आ रहा है। लेविस हैमिल्टन ने अब तक 191 अंक हासिल किए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर बता दें कि आज और कल सप्ताहांत के दौरान कई महत्वपूर्ण मैच रखे गए हैं। इसी रविवार को कल गनर्स टीम आर्सेनल पॉम्पलेमूस डीसी के सहयोग से शिवसागर राम गुलाम मेमोरियल कप आयोजित कर रही है। आर्सेनल एससी का मुकाबला आर्सेनल वेटरनों से है और पॉम्पलेमूस एससी खेलेगी रोशबॉ बोल्टन सिटी के विरुद्ध। दोनों ही मैच आर्सेनल फुटबॉल ग्राउंड में कल दिन के 2 बजे से शुरू होंगे। और रोशनवा स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए इस वीकेंड 2 मैच खेले जाएंगे इस सप्ताहांत। आज शनिवार की शाम रोशनवा यूनाइटेड वर्सेस रेड स्टार बुनाकई, तो कल रविवार की शाम स्पोर्टिंग बॉयज रिवियर जोरापो का मुकाबला ओलंपिक कप मालेरे से है। और इक्वानियो लेगेसी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल तेरूज रेंजर्स वर्सेस वेल एफसी 4 बजे इक्वायो फुटबॉल ग्राउंड में ये सभी मैच खेले जाएंगे। और आपको बता दें कि इस प्रकार कई और महत्वपूर्ण मुकाबले रखे गए हैं क्षेत्रीय स्तर पर ही, और एक गला फुटबॉल मैच भी है कल रविवार की सुबह, कल रविवार को दिन के दौरान। और आज भी संडे मॉर्निंग स्टार्स का मुकाबला गांबे कोरिंचान से होगा कल शाम 3:30 शामुनी के मैदान में। तो फुटबॉल के बारे में और स्पोर्ट्स खेलों के बारे में इतना सब कुछ इस समय सुबह के 7:05:30। आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: Nous travaillons, nous l'avenir, de Harkadin Ministry of Labour and Industrial Relations, साथ में MBC की मिलजुलल सहयोग से पेश करल जादबा। सेक्टर रिटेल अशांतुफे पुस दिफ्लाक में जुन हर, खोजा थवंजा एगो शॉप असिस्टेंट जे फोन थाले पहर लेबा। अप्लिकाशन खातिन सकबा फोन करे 7708 7708 खांदे पे, या तो फिर कभी भी आप सकबा जाए अशांतुफे जुन पुस दिफ्लाक में हर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 26 सितंबर 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जाज इम्पैक्स लिमिटेड जुन रॉयल रोड मेजिंग कौंदे मास्क में हर, खोजा पंचा कैबिनेट मेकर जिकर 3 बरिस क्लिक्स में यौसबा। अप्लिकेशन खतीन टेलीफोन करिय 7708 7486 पर, या 7250 5100 पर, या कभी भी आप लोग सकब जाए जाज इम्पैक्स लिमिटेड जनरल रोड मेजिन कौंदे मास्क में है। और अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 26 सितंबर 2026। सेक्टर लेजर Centre Équestre de Belmore Limité, General Road Belmore में है, खोजतवंजा लाइव स्टॉक वर्कर जिकर कम से कम 6 महीना के लिए एक्सपीरियंस बा आज स्टेबलमैन। और एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 7708 7843 पर, या आप लोग कभी भी सकबा जाए Centre Équestre de Belmore Limité, General Road Belmore में है। अर्जी भेज के आखिरी तारीख है 26 सितंबर 2026। इधर कोको अप सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोको अप लिमिटेड जनरल रोड बुआ मुरान बेलवी मोरल में है, खोजतवंजा फैक्ट्री हेल्पर जे एस सी लिपहर लेबा। एप्लीकेशन खातिन फोन करिया 7714 14 12 पर, अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 26 सितंबर 2026। सेक्टर लैंडस्केपिंग एंड मेंटेनेंस ग्रीन टेक लैंडस्केपिंग कंपनी लिमिटेड जोन आलामान रोड कारोलिन बिलिया रिवियर सेश में है, खोजतवंजा फील्ड क्रॉप लेबरर जिकर कम से कम 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन खातिन कभी भी आप सक बजा इंटरव्यू खातिन जाए ग्रीन टेक लैंडस्केपिंग कंपनी लिमिटेड आलामान रोड कारोलिन बेलियर वीएसएश, या तो फिर फोन करिए 422 0011 पर। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 28 सितंबर 2026। सेक्टर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री महरीन नेचर लवर लिमिटेड जन B140 क्लेमोशा रोड बेलियर वीएसएश में है, खोजतवंजा ग्रीन वन के मैकेनिक जिकर कम से कम 1 बरिस के एक्सपीरियंस बा एज अ बाइसिकल एंड मोटरसाइकिल।

0: mécanique or application khatir sakba phone kare 5718-6168 par aur arzi bheje ki aakhri tarikh 28 September 2026 dekhila ja Sector Security Services, Hazel Doberman Security Limited, Jun Flak Retail Park, Boulay Rouge Flak mein ha, Khojat Wanja Security Guard, jekar kam se kam 5 par iske liye experience ba. Application khatin phone kariya 5777-7523 ya tovir 58-33-27-47 arzi bheje ke aakhri tarikh 29 September 2026. Sector Leisure Strategic Positioning Group Limited, Jun Montoshino Lane, Lee Street Cube, Meha Kojatavanja, Dealer, J. SCA HSC Liparleba, Attended, J. Form Twali Parleba, or Satmanchana, Waiter or Cleaner, Application Katinapan CV with a career, Karishma at Strategic Positioning dot net per Yatufir call career, 675-3838 per ya 5742-9255 per arzi bheje ki aakhri tarikh 29 September 2026 Sector Agriculture Inochura Limited Jun Mogoyav Kondimask Pavi Meha Khojatwanja Grade 2 ke Agricultural Laborer je kam se kam CPL pahar leba application khatin apan CV bida kariya mail dwara INOTURALTD yani inochurald at gmail.com ya to fir kabhi bhi aap sakba jajai office inochurald mite mau gayav kaunti mask pave arzi bheje ki aakhri tarikh 29 september 2026 aur dekhila ja idhar sector agriculture ANA coco limited jo in garden street tapos de flak me ha khoja thavanja coconut pluck jekar ek bar iske experience ba application khatin na phone kariya 5855-1551 par ya kabhi bhi aap ANA coco limited garden street pus de flak sakba jajai arzi bheje ki aakhri tarikh 29 september 2026 sector transportation pio ecolike supplies limited jun mughal road riviera jurong pa me ha khoja thavanja truck driver jekar kam se kam du bar iske experience ba application khatin phone kariya 5763-1313 par arzi bheje ki aakhri tarikh 30 september 2026 और सेक्टर एग्रीकल्चर में एक बिल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स मॉरिशस लिमिटेड जो रिजर्वोयर रोड कॉन्फुको में है खोजा था फील्ड क्रॉप लेबरर और एप्लीकेशन खातिर कॉल करियो 5706-9999 पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 सेक्टर फाइनेंस चेंज एक्सप्रेस लिमिटेड जो फर्स्ट फ्लोर ट्रैवल हाउस सर विलियम न्यूटन स्ट्रीट पोर्टविस में है खोजा थवंजा टेलर जे एचएससी ले पहर लेबा और खासतौर पे जो लोग एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास में रहेला तो सकबा ई काम के एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन खातिर अपन सीवी विदा करिया देवन एट चेंज एक्सप्रेस डॉट नेट पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 पब्लिक सेक्टर में जो काम बा उह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस खोजतवंजा कम्युनिटी फिजिशियन और एकर खातिन एप्लीकेशन सकबा करे जइया ई वेबसाइट पर https://psc.gov.mu.org/ पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 28 सितंबर 2026 और पब्लिक सेक्टर में ही लोकल गवर्नमेंट सर्विस खोजता असिस्टेंट नर्सरी मैट्रन एकर खातिन जइया ई वेबसाइट पर https://lgsc.gov.mu.org/ पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2026 सेक्टर प्राइवेट हाउस होल्ड जोन वैकेंसी बा उहा हाउसमेट खातिन आज आप लोग नोवेल फ्रांस न्यू ग्रोव ला फ्लोरा या ला रोजा रहेला दशक बजा एप्लीकेशन खातिन रोजबेल के ईआईसी कॉल करे नंबर है 627-4833 और गुडलैंड्स खातिन एप्लीकेशन सकबा करे गुडलैंड्स के ईआईसी में फोन नंबर है 282-5917 या 282-5918 और कुक खातिन वैकेंसी बा रीजन बेलविम आरएल में एप्लीकेशन खातिन ट्रियोलो के ईआईसी कॉल करिए 261-4524 पर या 270-11-22 पर त ई रहल थोर खातिन Nous travaillons, nous l'avenir, John Torkatin, Ministry of Labour and Industrial Relations, साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल.
1: सुबह के 7:12 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं AM2 MBC रेडियो मॉरिशस 719 किलोहर्ट्ज पर. श्रोताओं सभी का स्वागत है और अब प्रस्तुत है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ. ला मारी मोंटे जू फिल अकाशिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 रिक्रेमेशन rue Eraden, rue Cypress, rue Beato.

0: और आसपास में जो गलियां हैं वहाँ के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 27 सितंबर को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और सुयाक और मोसेल मोंगखी के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 27 सितंबर को दिन के 9 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। प्लेन डू जेसी और फ्लाक साथ में मौसेलमों वीओएस प्लेन डू जेसी सिम्स लाक्यू सीडब्ल्यूआर और ईगल क्लिनिक के आसपास के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 27 सितंबर को सुबह के 8:15 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। इसी बीच सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
3: चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह का नजराना, यो मस्त मॉर्निंग शो, जी हाँ, एमबीसी रेडियो मॉरिशस की लहरों पे सुबह के 7:16 हो रहे। कहिए जी दोस्तों, कैसे हैं आप? कहिए जी, कहिए क्या हाल है, कैसा रहा ये सप्ताह? जी हाँ, और कुछ ही दिनों में सितंबर का महीना भी समाप्त हो जाएगा। आज है शनिवार, 26 सितंबर साल 2026। यस, कहिए दोस्तों आज का वीकेंड का क्या प्लान है? आज शायद बहुत से लोग घर पे रहेंगे, कुछ लोग काम पे हैं, कुछ लोग काम पे जाएंगे। कुछ समय में बच्चे जो है आजकल अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। जहाँ NCERT, SC, HSC के एग्ज़ाम्स अभी शुरू हो रही है, और तो बच्चे लोग जो है अपने रिवीजन में लगे हुए हैं, काफ़ी टेंस है। सो नो वरीज, जस्ट चिल, रिलैक्स। अगर रिवीजन आपने अच्छी तरह से की है पूरे साल अगर अच्छी तरह से रिवीजन किए हैं, तो एग्ज़ाम्स भी अच्छी तरह से आप काम करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। वेल, ये है आपका मस्त मॉर्निंग शो, सुबह का नजराना। जी हाँ, जहाँ पर हम लाते हैं ढेर सारे गाने, म्यूज़िक, ढेर सारी बातें होती है। अभी से 9 बजे तक 2 घंटे का म्यूजिकल सफ़र है, और हम जानते हैं कि शनिवार के दिन आप थोड़ा लेज़ी फील करते हैं और थोड़ी देर से जागते हैं। कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। मूड चाहे कैसा भी क्यों ना हो, जब हम रेडियो मोशन पर आते हैं तो आपका मूड एकदम सेट कर देते हैं, है कि नहीं? सो गाइए, मुस्कुराइए, खुश रहिए और प्यार खुशियाँ बांटते रहिए। जिंदगी छोटी ही सही, 4 दिन की जिंदगी कहते हैं ना, पर अगर अपनों का साथ मिल जाए तो क्या बात है। सब कुछ पाना एक जिंदगी में नामुमकिन। कुछ चीज़ हम पाते हैं, कुछ चीज़ अधूरे रह जाते हैं, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जिंदगी में हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। सब कुछ मिलना बहुत मुश्किल है, किसी को भी इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिला है। ऑलराइट, शायद आप लोग सोचते हैं कि वह व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसके पास सब कुछ है। नो नो नो नो नो नो, हर किसी की जिंदगी में किसी न किसी बात की कमी है। जी हाँ, यही जीवन का कटु सत्य है। बस परमात्मा का आशीर्वाद अगर हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, तो हम जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।

0: बस आपके मन में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि हम प्रभु का नाम लेते हैं और उसी के नाम से आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। सुबह का निजाम प्रोग्राम में सभी का हम स्वागत करते हैं, बच्चों को हमारा मीठा मीठा प्यार, बड़े जनों को सादर प्रणाम और हम दोस्तों को हमारा मोहब्बत भरा सलाम। चलिए शुरू करते हैं सुबह का नजाना प्रोग्राम को आज के चिंतन के साथ।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जो शरीर को काबू में रखता हुआ जान पड़ता है, किंतु मन के विकार का पोषण किया करता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी है।

0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
0: झलकियां,
1: झलकियां,
2: रेडियो मॉरिशस।
3: जी हाँ, हमारे रेडियो मॉरिशस के प्रोग्रामों की झलकियां। सो अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम, योर मस्त मॉर्निंग शो, पौने 8 बजे ज्ञान सरोवर हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से। 8 बजे भोजपुरी में समाचार पढ़े जाएंगे, उसके बाद 8:05 पर सुबह का नजराना पार्ट टू, 9 बजे समाचार, 9:03 पर आज की चर्चा पीक टाइम मैगजीन किरण के साथ, दिन के 10 बजे समाचार, फिर दिन के 11 बजे, दिन के 10 बजे होगा समाचार, और समाचारों के बाद उर्दू प्रोग्राम गुलाही अकीदत 10:03 पर, फिर दिन के 11 बजे सिरुवनीरम तमिल कार्यक्रम, दिन के 12:15 बालनंदम तेलुगु प्रोग्राम, दिन के 1 बजे मराठी प्रोग्राम, दिन के 1 बजे बहुरंग कार्यक्रम सीताबाई के साथ मराठी भाषा में कार्यक्रम, दिन के 1:45 गुजराती प्रोग्राम गीत बहार अमिता के साथ, 2:15 आपकी पसंद प्रोग्राम देवीना की पेशकश में, फिर 4 बजे साहित्य दर्पण अंजू जी के साथ, शाम के 5 बजे रोशन से प्रोग्राम खेल खिलाड़ी, शाम के 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन, शाम के 6:30 चाइनीज प्रोग्राम, रात्रि के 7 बजे तमिल प्रोग्राम अंतनाल न्याबागम, रात्रि के 7:30 तेलुगु कार्यक्रम स्वरला विलिका गिरीशालिनी के साथ, रात्रि के 7:50 पर मराठी प्रोग्राम गीत गंगा बापू भाई के साथ, 8:10 पर भजरे प्रभु का नाम अनीता के साथ, 8:40 पर महफिल शब अविनाश के साथ, रात के 9 बजे

0: भोजपुरी डर का रत्ना बदारत की पेशकश में रात के 11 बजे सुनहरे पल और रात के 12 बजे से सुनहरे पल रात के 11 बजे नीतू शाह के साथ और रात के 12 बजे से कल सुबह के 5 बजे तक आप सुनेंगे नॉनस्टॉप फिल्मी तरानी। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप दिन भर रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े रहेंगे। और अब प्रस्तुत है हमारे टीवी प्रोग्रामों की झलकियां।
1: रेडियो मॉरिशस
2: झलकियां
3: रेडियो मॉरिशस।
4: ए शेफ यार, काम काम होता है, लाइफ नहीं।
5: You have this enormous crush on that Prajakta woman, पर तू ते teenager type ही हूँ करना बिसी है।
4: What?
5: Grow up, do something.
6: कधी बोलू यार?
4: ये उड़ा का complicated नस्ता है। Lady friend का shadow होना चाहिए life पे।
6: माला वाटलो तू जानी chef गौरी तो चल ले मस्त।
4: ऐसा कहीं नहीं है।
7: Saturday, 26th of September on MBC 8 at 9 p.m. Marathi Chitrapat, Medium Spicy. MBC TV, Rangeen Programo ka khazana.
8: Simran ne tumhe itni unchai tak pahuncha diya ki jahan main tumhe chhu bhi nahi sakti.
9: Jis tarah Raj ke liye feel karti ho, aise maine kabhi bhi Sameer ke liye feel nahi kiya.
10: Tumhe Aasha se shaadi karni hogi aur har halat mein karni hogi.
9: Jisse main pyar karti ho, aaj wo kisi aur ka hone ja raha hai.
11: Koi mere dil mein hai.
7: 26 सितंबर शनिवार को एनबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कोई मेरे दिल में है 2005 की मूवी प्रियांशु चैटर्जी और दिया मिर्जा पर फिल्माई गई कोई मेरे दिल में है।
11: मुझे उसका ही इंतजार है, कभी लगता है।
7: एनबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियां।
12: अच्छा हुआ मिली, वरना मेरा गेम खराब हो जाता।
13: एक्सक्यूज मी, आपको मेरा नाम किसने बताया?
12: आपका नाम मुझे क्या मालूम, आपका नाम क्या है?
13: अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
12: ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था, अच्छा हुआ मिली। आप भी मिली है क्या?
13: जाइए यहाँ से, एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
12: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
11: कहता है बाबू।
7: रविवार 27 सितंबर को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की मूवी सलमान खान और अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई बाबुल। एमबीसी टीवी, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
13: एक सवाल हमेशा मेरे मन में टिक टिक टिक टिक करता है, ये लोग मछली की तरह तैर कैसे लेते हैं? काश मैं भी तैर पाती।
14: तो अब तुम्हें तैरना भी नहीं आता? तुम्हें तैरना नहीं आता? अच्छा ठीक है, मैं जाके बिल देके आता हूँ, तब तक तुम तैरना सीख लो। मुझे हर बार धोखा नहीं दे सकती।
13: मुझे बहुत डर लग रहा है।
14: 1 2 3
11: क्योंकि
7: सत्ताईस सितंबर रविवार को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म क्योंकि 2005 की मूवी सलमान खान और करीना कपूर पर फिल्माई गई क्योंकि।
0: जी हाँ, सो अभी आप सुन रहे थे हमारे टीवी प्रोग्रामों की झलकियाँ। और चाहे टीवी हो या रेडियो, आप हमारा साथ देते रहे। 2400 घंटे अच्छे अच्छे प्रोग्राम रखे गए हैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए। सुबह के 7:32 चलते चलते आपको बता दें कि आज शनिवार 26 सितंबर को हो रहा है प्रोग्राम जलसा के रात बा, यस द फर्स्ट भोजपुरी लाइव कंसर्ट, 20 बैंक्वेट हॉल ऑसनाल में रात के 7 बजे। जी हाँ, इसमें बहुत सारे सितारे भाग लेंगे, जैसे रंभा राम तोहल, नीरज गुप मधु, किशोर खिमिया, कुणाल हीरीलाल, रोशन सरा सिंह और कृषि मनिक। बहुत सारे डीजेज वहाँ पर होंगे, डीजे नील, स्पाइकी वी, डीजे वकील, डीजे अबी, डीजे एनी। और बेशक टिकट्स जो है प्री सेल टिकट 500 रुपीज़ आज डो प्राइस 700 रुपीज़। अपने टिकट ज़रूर ले सकते हैं, लास्ट टिकट्स कुछ रह गए हैं। सो द फर्स्ट भोजपुरी लाइव कंसर्ट होगा आज बैंक्वेट हॉल ऑसनाल में, और बेशक दैट विल बी ए धमाकेदार परफॉर्मेंस। और अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और हम आपका साथ दे रहे हैं रेडियो

मोशस की लहरों पे, और बेशक गर्मा गर्म चाय हो जाए, गर्मा गर्म कॉफ़ी और कुछ प्यारे प्यारे गाने, तो क्या बात है। और कुछ लोग कहते भाई प्रताप जी अभी गर्मा गर्म कॉफ़ी नहीं ले सकते क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। ऑलराइट, सो यू कैन हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क और समथिंग कोल्ड, समथिंग चिल्ड, व्हाई नॉट। और यहाँ पर प्यारे प्यारे गीतों से हम आपका मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं, आशा करते हैं कि आपका मनोरंजन हो रहा है। चलिए आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना। यस, आर राजकुमार फिल्म से ले गया, नकश अजीज और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में, साड़ी के फॉल से। अब साड़ी के फॉल से गीत कितना अच्छा, कितना प्यारा है। चलिए आप भी इसका जो है सुनते हैं इस गीत को एक साथ, और थोड़ा सा डांस करते हैं। भाई शनिवार है, सो हो जाए थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा डांस। वाओ क्या म्यूजिक है, ए हे, साड़ी के फॉल से।

कभी कह चुकी है अरे सारी की फॉल से क्या बात है। सुबह के 7:40 दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं एमबीसी रेडियो मॉरिशस से प्रोग्राम सुबह का नजराना, और ये प्रोग्राम चलेगा 9 बजे तक। अब दिल की बातें करते हैं। दिल ने दिल से क्या कहा भाई, मौसम तो बड़ा ही प्यारा है और आज शायद बहुत से लोग समुद्र तट जाएंगे, इस गर्मी का मौसम का फायदा उठाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। पर एज यूजुअल बहुत से लोग काम पे है, बोंकुआश कहते हैं सभी लोगों जो काम करे, और जो लोग अभी भी मीठी मीठी नींद से जागे तो हम कहेंगे सुस्वागतम, वेलकम, आप लोगों का हम शानदार स्वागत करते हैं। चलिए आपको सुनवाते एक बहुत ही रोमांटिक सा तराना, शिल्पा शेट्टी, और शिल्पा शेट्टी पर पिक्चर आए, सुनील शेट्टी साथ में है, जी हाँ, में नजर आए थे अक्षय कुमार साहब। ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी फिल्म काफी अच्छी रही बॉक्स ऑफिस पर, फिल्म के गाने एकदम ही सुपरहिट, नंबर वन गाना यस इस एल्बम में, दिल ने ये कहा है दिल से। दिल क्या कह रहा है, एक दिल से, चलिए एक साथ।

म्यूजिक लवर्स, इसी गीत के साथ ही सुबह का नजराना, योर मस्त मॉर्निंग शो, इस प्रोग्राम का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। याद रहे 7:45 बजे आप सुनेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सर्वर कार्यक्रम। उसके बाद सुबह 8 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी सुबह के 8:10 पर इसी चैनल पर विद योर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना प्रोग्राम का दूसरा भाग। कुछ डेडिकेशन भी होंगे उसमें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्रेम से AM2 MBC रेडियो मॉरिशस।

0: ज्ञान सरोवर हिंदी संगठन अथवा हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा प्रस्तुत इस शनिवारीय कार्यक्रम में आप सभी प्रिय श्रोताओं को हमारा हार्दिक अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम में हम एक समसामयिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोगों को विदित ही होगा कि गत बुधवार 23 सितंबर को IGCIC के सभागार में आयुर्वेद दिवस भव्य रूप से मनाया गया। आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु आयुर्वेद ही है और इस विषय पर चर्चा करने हेतु हमने स्टूडियो में डॉक्टर कोमल चंद्र राधा किशुन जी को आमंत्रित किया है। आप एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं और वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सब पहले मैं आपका थोड़ा परिचय संक्षिप्त में दे देना चाहूँगा।
1: जी,
0: आप जो है आर्य सभा के उपमंत्री हैं और वैसे एक उपसमिति है जिसका प्रधानत्व आप संभाल रहे हैं। वो उपसमिति है स्वास्थ्य आयुर्वेद शाकाहार एवं योग उपसमिति। इसके अतिरिक्त आप एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन के चेयरमैन हैं।
1: जी,
0: तो डॉक्टर जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है और हम चलें प्रथम प्रश्न हम लेते हैं।
1: जी,
0: मॉरिशस में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में आर्य सभा का योगदान, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
1: अच्छा, इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। आर्य सभा मॉरिशस तथा आर्य समाज के जो भी मतलब कार्य है मॉरिशस में, हमेशा से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करता आ रहा है। जो स्वामी लोग आते थे भारत से, आचार्य लोग आते थे और हमारे पंडितगण भी हर रविवार को जो साप्ताहिक सत्संग होता है उसमें अवश्य आयुर्वेद और योग के बारे में कुछ चर्चा करते आ रहे हैं। वैसे जो देखेंगे 1921 में से मॉरिशस में लगातार आयुर्वेदिक चिकित्सकों का आना हुआ और इसमें आर्य सभा से जुड़े हुए जैसे पंडित राम लखन शर्मा, पंडित हरिकृष्ण

0: कृष्ण विशारद, रामलोचन नथु, प्रोफेसर बिसुंदया, देवलाल सोब्रन, वैद आपादु, ये सब आर्य समाज से जुड़े हुए थे
1: जी।
0: और ये एक बहुत ही मार्के की बात है कि मॉरिशस में जो 11 मॉरिशन मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सक हुए हैं, 8 उसमें से मतलब आर्य समाज से जुड़े हैं और आर्य समाज परिवार से आते हैं।

0: दिए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर देखिएगा, आर्य समाज का तो एक नियम ही है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, मतलब वेद उसका प्रचार करना। और अब आयुर्वेद तो वेद से अलग नहीं है, अथर्ववेद के अंतर्गत वो आता है, तो मैं सोचता हूँ स्वाभाविक है,
1: ये स्वाभाविक है कि मतलब आर्य समाज जो हमारे यहाँ पर आर्य सभा मॉरिशस है, जो पूरे आर्य समाज मूवमेंट को चलाता है,
0: जी
1: तो इसका ये दायित्व तो है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करें। और इसमें हम बहुत दिनों से कार्य करते हैं, पर ये जो बहुत सूक्ष्म रूप से अवेयरनेस होता है जो लोगों को दिखता नहीं, पर इसका असर इतना है कि जो ग्राउंड लेवल में है लोगों को आयुर्वेद के बारे में पता है, और जो बताते हैं सत्संग में कुछ ना कुछ लोग अपने जीवन में उतारते हैं।
0: बिल्कुल हाँ। और फिर अभी डॉक्टर जी आप बताएंगे, मतलब अभी जिले के स्तर पर आपकी उप समिति ने कौन अच्छा, सी योजना बनाई है?
1: अच्छा, ऐसा है कि आर्य सभा मॉरिशस के अंतर्गत एक स्वास्थ्य आयुर्वेद शाकाहार और योग उप समिति है
0: जी।
1: और इस उप समिति हर साल योग दिवस मनाता है। हम लोगों ने मतलब इस उप समिति ने 2 MOU तय किए हैं, एक MOU योग के लिए अभ्यास योग के द्वारा, दूसरा एक है आयु सिद्धांत ट्रेनिंग जो मेधा योग पीठ के द्वारा साथ हम मिलकर काम करने जा रहे हैं। और ये जो अभ्यास योग है पिछले 2 सालों से हमारे जो 2 पाठशालाएं हैं, प्राथमिक पाठशालाएं, वहाँ पर योग के सत्र वो योग दिवस के अवसर पर लगाते हैं। और हम अपने जितने सदस्य हैं उनको योग के जहाँ जहाँ पर ये कक्षाएं होती है उनको कहते हैं कि वो फॉलो करें। और कुछ कुछ हमारे समाजों में योग की कक्षा चल रही है। आने वाले दिनों में हम लोगों का ये योजना है कि हम ये आयु सिद्धांत, जिस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, वो हम हर ज़िले के स्तर पर पहुँचाएँगे। पिछले साल हम लोगों ने एक ऑनलाइन अवेयरनेस क्लास किया था जिसका नाम था आयुष अमृतम।
0: अच्छा।
1: उसको बहुत सफलता मिली है। और इस साल भी हम दिवाली के बाद इसको इसका सेकंड एडिशन कर रहे हैं। आयुष अमृतम में ये बताते हैं कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, योग अभ्यास तथा क्या क्या स्वास्थ्य वर्धक नियम है उसको हम सिखाते हैं। ये ऑनलाइन क्लास होता है और ये फ्री ऑफ चार्ज होता है, जो भी इसको मतलब इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लासेस जो होता है हिंदी और अंग्रेज़ी के माध्यम से होता है।
0: बहुत अच्छा। हाँ, इससे जो है ज़्यादा लोग इसमें भाग ले सकते हैं। डॉक्टर जी, ये वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है, इसको कार्य रूप देने, इसको चरितार्थ करने के लिए, मतलब आर्य सभा या आपकी संस्था क्या कर रही
1: है? मेरी संस्था नहीं, मतलब आर्य सभा जो है, आर्य समाज का ये है वसुधैव कुटुंबकम। और आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है जो सभी को साथ लेकर चलता है। आयुर्वेद में ऊंच नीच नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है, मतलब जो कहते हैं ना संकुचित विचार नहीं होता है। आयुर्वेद सभी को उदार चित्त बनाता है, जिसके मतलब चरित्र चित्त जो है मन उदार हो, सबको साथ लेकर चलता है और सभी को अपना परिवार मानता है। आयुर्वेद जो है ये पूरा इंटीग्रेट करता है, सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इंटीग्रेट कर लेता है, चाहे वो एलोपैथिक हो या कुछ भी हो, सबको साथ लेकर चलता है और चाहता है कि हमारे जीवन में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे और हम सब स्वस्थ रहें, जिससे हमारे देश की उन्नति हो, देश में कल्याण हो और पूरे जो राष्ट्र है वो एकदम आर्य राष्ट्र बने।
0: ठीक है। ये डॉक्टर जी, आजकल जो है हम देख रहे हैं हमारे बच्चे एग्जामिनेशन मूड में है, उस मोड में है, या यूं मोड कहेंगे, तो आप उनको क्या मतलब परामर्श देंगे अपने जो जैसे अब एग्ज़ाम के लिए कुछ?
1: हाँ, ये बहुत एक अच्छा
0: तैयारी तो हो चुकी
1: हाँ,
0: है।
1: ये अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। ख़ासतौर हमें चाहिए कि बच्चों को इस समय ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव होता है, तो इसके लिए बच्चों को मैं यही दूंगा सलाह कि वो ये इनर्जी ड्रिंक जो होते हैं, ये कॉफ़ी चाय का कम इस्तेमाल करें।
0: हाँ।
1: और ये ज़्यादातर अच्छे मतलब भोजन करें,

0: घर में बनाए हुए भोजन करें और पानी का सेवन करें। पानी का सेवन क्यों करें ज़्यादा? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जब आपके रक्त में जाएगा तो आपका ब्रेन संचालन ठीक होगा और आप ज़्यादा तरह से कंसंट्रेट कर सकेंगे। तो इसलिए पानी ज़्यादा पिए। और अगर भूख लगेगी तो ये जो क्या कहते हैं फास्ट फूड, इसको थोड़ा सा दूर रखिए एग्ज़ाम पीरियड में। जैसे ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, किशमिश है, मतलब खजूर है, इन सब का आप सेवन कीजिए, जिससे आपको एनर्जी मिलेगा डायरेक्ट और ब्रेन शांत रहेगा। और बच्चों को ठीक से सोना चाहिए और आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, जितने स्टूडेंट हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन तो करते ही हैं, तो आहार ठीक रहना चाहिए और निद्रा भी कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। ज़्यादा तनाव
1: अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि वो तैयारी के चक्कर में वो लोग रात देर तक वो मतलब
0: हाँ कभी कभी होता है कि सब्जेक्ट वाइज कभी हमें ज़्यादा देर तक पढ़ना पड़ता है, रात्रि भर जागना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रात्रि भर जागना है तो आप चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना लें, क्योंकि इससे आपको परेशानी होगी। आप पानी का सेवन कीजिए और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये लीजिए और हल्का भोजन कीजिए, जिससे आप एकदम आराम से अपना रिवीजन काफ़ी देर तक कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखिए एग्ज़ाम से पहले कम से कम मिनिमम 6 घंटे सोना चाहिए, जिससे आपका ब्रेन जो है वो एकदम ठीक से रेस्ट कर दें और एग्ज़ाम में आप कंसंट्रेट कर सकते हैं।
1: मैं तो सोचता हूँ डॉक्टर जी कि देर तक पढ़ने के बजाय वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो लोग रिवाइज करेंगे तो वो तो दिमाग ठंडा रहता है।
0: ये सबसे उत्तम कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। पर आज के जो हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पसंद नहीं करते हैं, वो देर तक जाकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसीलिए अभी के जो ट्रेंड है उस पर हमें उनको मतलब ठीक से गाइड करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने के लिए एक प्रैक्टिस होती है, ये एकाएक एग्ज़ाम टाइम में नहीं होगा, ये शुरुआत से करना चाहिए, जिससे आपको ये मतलब ठीक लगेगा कि एकदम चून हो जाएंगे उस समय उठकर पढ़ने के लिए।
1: हाँ ठीक है। और जो हमारा मस्तिष्क जो है वो खूब शांत रहता है और उसमें ग्रहण शक्ति जो है
0: ग्रहण शक्ति ज़्यादा होती है, मस्तिष्क शांत होता है और उस समय वातावरण भी शांत होता है, जिससे बाहर के आवाज़, बाहर के जो प्रदूषण है वो सब कम हो जाते हैं। तो इससे आप ज़्यादातर उस पर जो भी पढ़ते हैं ध्यान दे सकते हैं।
1: जी हाँ, आजकल हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर वो एलोपैथिक की जगह वो लोग आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? आप तो इस क्षेत्र में हैं।
0: बहुत अच्छे विचार है कि लोग आयुर्वेद के प्रति उनका रुझान हो गया है।
1: जी हाँ।
0: पर एक चीज़ देखना चाहिए कि आयुर्वेद भी ये जो ऑटोमेडिकेशन है, अपने आप दवा लेना, मतलब सोशल मीडिया में देखकर दवा लेना, वो गलत है। अगर आपको आयुर्वेदिक दवा लेना है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए, उससे प्रॉपर जो है ठीक ढंग का जो सलाह है वो लीजिएगा और आपको सही दवाएं सही मात्रा में किस तरह से इस्तेमाल करें, उसका अनुपान क्या होगा वो आपको प्राप्त होगा। ना कि आप अपने जो पड़ोसी हैं, चाची हैं या सासू माँ हैं उनका सुनकर आप दवा लेंगे, वो नुकसान होगा।
1: आपने तो बहुत विस्तारपूर्वक हमें ये अपने विचार दिए हैं। अंत में डॉक्टर जी आप बताइए, मतलब हमारी मॉरिशन जनता को क्या सलाह देंगे?
0: सलाह यही देंगे कि स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के बताए हुए दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन कीजिए, आहार विहार सात्विक आहार विहार कीजिए और जो है क्या कहते हैं आप अपने घर में बैठकर संध्या ज़्यादातर जो है वो कीजिएगा। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी है सभी लोगों के लिए कि अपने मन को शांत रखें और ज़्यादा क्रोध ना करें।
1: ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी जो है धनतेरस मनाने जा रहे हैं, तो इस मौके पर आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्वंतरी
0: नहीं, धन्वंतरी दिवस के बारे में वो तो दिवाली से पहले होता है।
1: जी हाँ।
0: अभी तो आपने बुधवार को 23 तारीख को आयुर्वेदा दिवस मनाया गया।
1: हाँ।
0: और धनतेरस जो है वो एक पर्व है,
1: शायद 18 अक्टूबर को मनाया।
0: नहीं, वो बहुत बाद में है।
1: बहुत बाद में। अच्छा अच्छा ठीक है। डॉक्टर जी आप स्टूडियो में आए, इतना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निकट भविष्य में इसी तरह के एक कार्यक्रम लेकर हम फिर से आप श्रोताओं की सेवा में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
1: इबकत मॉरिशस में फजर के ठीक 8 बजे बाती. सबको के नमस्ते. भोजपुरी में समाचार सुना जा. लाइव स्टॉक जानवर या मवेशी के आयात इंपोर्ट के परमिट पर नवा फैसला लेवल गलबा. फरवरी महीना में दक्षिण अफ्रीका के बाद मॉरिशस अब नमीबिया से भी इंपोर्ट करे होला परमिट सस्पेंड कर दे लेबा. हई फैसला डिवीजन दे सर्विस वेटरिनेर लेलन जा. ई कदम खरास क्षेत्र के कार्लसबर्ग में एगो कमर्शियल फर्म में फुट एंड माउथ बीमारी के एगो मामला के पुष्टि होला के बाद उठावल गल. बीमारी के जन संदिग्ध लक्षण बाते उमें 11 जानवर में से 10 गो के 23 सितंबर के जन परीक्षण करल गल उमें पॉजिटिव पावल गल. इकातिन ई फैसला लेवल गलबा. अब खाली केनिया ही उ अकेला देश है रह गलबा जहां से डिवीजन डे सर्विस वेटरिनेर जीवित मवेशी के आयात के अनुमति देलेबा. तो अब ई नवा फैसला लेवल गलबा. मंत्रिमंडल की बैठक में कल ई बात के जायजा लेवल गल कि 21 सितंबर 2026 के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से फोन पर बातचीत कर लन जा. वो मॉरिशस और अमेरिका के संगे मिलके 22 मई 2025 के जन शागुस द्वीप समूह समझौता हो रहा उकर मंजूरी दिलाई के सहयोग के भरोसा दिलन जा. मंत्रिमंडल ई बात भी नोट कर लन जा कि 22 सितंबर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के संगे बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति इस समझौता के विरोध दोहरा लेन जा. बैठक के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सब पक्ष से ऐसन समाधान ढूंढे के बात दोहरा लेन जन सब के हक में होई. ब्रिटिश अधिकारी के मुताबिक चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के प्रभुसत्ता संप्रभुता पर कोनो सवाल नहीं उठावल जात बा. ई अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसला और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 73/295 /295 के भी समर्थन प्राप्त बाते. मंत्रिमंडल ई भी बोलन कि मॉरिशस कब्बो जेगोगाशा में सैन्य अड्डा के लगातार संचालन पर सवाल नहीं उठाई लेबा. मई 2025 के समझौता ई अड्डा के लंबा समय लेक सुरक्षित और प्रभावी संचालन के गारंटी देवेला. जनवरी 2027 दिमिल वेंसेट से सेंट बार्थोलोम्यू कॉलेज और रॉयल होलोवे कॉलेज के जन सरकारी मदद मिलेला वो बंद कर देवल जाए. काहे कि हई दोनों स्कूल में छात्र के संख्या तय सीमा से कमती बाते. दोनों स्कूल के छात्र के उन लोगों के उनकर घर के भीरी दूसर स्कूल में भेजल जाए और जितना योग्य परमानेंट स्थाई शिक्षक हवन जा और कर्मचारी हवन जा लोग के मेटको कंपनी में लेके दूसर स्कूल में भेजल जाए जहां पर वो लोग के जरूरत होई. न्यूयॉर्क में मौजूद विदेश मंत्री धनंजय रामफल काल अपन ब्रिटिश समकक्ष एड मिलिबान से मुलाकात कर लन जा. एड मिलिबान एक बार फिर फिनो से ब्रिटिश सरकार के हई इच्छा के दोहरलन कि ऐसन समाधान निकाले के चाहेला जन तीनों पक्षों खातिन स्वीकार बाते. यानी कि मॉरिशस यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट के. मॉरिशस के सरकार के मुताबिक चागो

द्वीप समूह पर मॉरिशस के सोवरेनिटी या संप्रभुता के लेके कोनो सवाल नहीं उठावल जात बा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वां सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री धनंजय रामफल फिलिस्तीन के मुद्दा के शांतिपूर्ण समाधान और दुनो और दुगो राज्य समाधान के लागू करला के संबंधित उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मॉरिशस देने से अपन बयान भी दिलन जा। हिन्ने मॉरिशस में छोटा एवं मध्यम उद्योग के बढ़ावा दे खातिन आज फजर के 9 बजे से और कालो दिमास के फजर के 9 बजे से सांझ के रात के 9 बजे लेक बासें रोज काथरबोन में एगो एसएमई मेला आयोजित करल जादबा, जिनमें ढेर कार्यक्रम रखल गलबा। उमें बिक्री आदि होई है। गतिविधि में मेडिकल चेकअप, रक्तदान आयोजन करल गलबा और ढेर बिक्री सामान आदि आज फजर के 9 बजे से रात के 9 बजे लेक, फिर कालहो दिमास के बासिया रोड काथरबोन में नेहरू शिक्षा भवन के भेरी है पीएमए मेला है एसएमई मेला आयोजित करल जातबा। विदेश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर बैठक के मुख्य मुद्दा दोनों देश के बीच जन प्रतिस्पर्धा बाते, जन कॉम्पिटिशन बाते ओकरा बढ़ाई पर बात करल गलबा करल गल। चीन बोलत बाकी अमेरिका ओकर बढ़ता प्रभाव के रोके के कोशिश करत बा, खास करके व्यापार, टेक्नोलॉजी और ताइवान के मामला में। और फुटबॉल में कल यूएफए नेशंस लीग के मैच जारी रखल गल। इमें ज़िनेदीन ज़िदान के फ्रांस के जीत होल 1-0 से। ज़िदान के पहलका मैच वर्ल्ड कप फ्रांस के स्क्वाड के साथ, ओकर जीत होल 1-0 से टर्की के विरुद्ध। जबकि रोबर्टो मांसिनी के का इटली, ओकर इटली हार गल 2-0 से बेल्जियम के विरुद्ध। आज रात 10:45 पर इंग्लैंड और स्पेन के बीच एगो महामुकाबला हो यही यूएफए नेशंस लीग में। इ बखत फजर के 8:05 और 55 सेकंड होलबान के भोजपुरी के समाचार जब पर समाप्त हो गल। हम संगे जुड़ल रहिए।

0: उसे झनकार सी है दिल के तार में तब से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह के 8:17 हो रहे, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, देवी और सज्जनों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमन स्वीकार हो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मॉरिशस। और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और आप हमें देख भी रहे हैं, जी हाँ, रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर। सो सुबह का नजाना पार्ट टू, जी हाँ, जहाँ पर हम लाए हैं चंद तराने। इन गीतों पर आप अपनों के नाम जोड़ सकते हैं। यू कैन SMS ऑन आवर टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस या फ़ोन कर सकते हैं 4028085 पर भी। और बेशक अभी सुबह के 8:17 है, 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस म्यूजिकल सफ़र को फिल्म रोजा के गीत के साथ। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, बहुत ही प्यारा सा गाना है। और ये गीत हम चलाएंगे रेहाना हसनानी के नाम, आप फिनिक्स से हैं। सो आपने गीत मांगा है ये गीत रीता जी के नाम, जो रहती है मोताबा। रीता और रेणुका ये दो बहनें हैं। सो रेहाना इन दो बहनों को याद कर रही है। रीता और रेणुका, ये गीत आपके नाम रेहाना हसनानी की ओर से। और यही गाना जाएगा संजय बिहारी के नाम, उनकी पत्नी सुरेखा, बेटी रिंकू, दामाद, बेटा कुशल, बहू और उनके बच्चों के नाम और सब बिहारी परिवार के लिए। यह गीत राधा सी बालक जी के नाम, हेलो राधा जी। यह गीत आपके बेटे प्रशांत, बहू और फिर देविका रामगतिया। यह गीत आपके नाम भी चंपा जी। यह गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे। दिल है छोटा सा, छोटा

Tisyasha. And Bina Padu, namaste. Ye geet aapke naam bhi aap TikTok par hai samay. Hello, Sasha. Virkriti Chamra Sadhya Kavita, Pradeep Gurbi, Kavita Hirua, Fir Vishwani, Vishwas Jagat, hello, Lisby, Lady, Usha, जहाँ ये लोग हमारा साथ दे रहे हैं टिकटॉक पेज पर, थैंक यू जी हमें देखने के लिए और हमें सुनने के लिए. रामा सुमाना, अस्मिन भूकर, नंदिता, आकाश चेतन, हेलो भाई आकाश, कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं और आपका साथ दे रहे हैं MBC रेडियो मोशर्स की लहरों पे. रामा सुमाना, यह गीत आपके नाम भी जाएगा और यही गीत लोंग चिबुग राजा स्टीव संजीव दिनू, फिर श्याम मंगल, प्रवीण भैरव और राजमन्ना जी खासम खास आपके नाम, होरीलाल दिनू मोहतावा से है, हेलो सबा पाडू परिवार रोजबेल से है, हमारा साथ देने के शुक्रिया. चलिए एक साथ सुनते प्यारा सा गाना, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा.

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी रोजा। सुबह के 8:25, अगला गाना आओगे जब तुम, फ्रॉम द मूवी जब वी मेट। सुबिया रामनोरज जी क्यूपिप से है, जहाँ हमारा साथ दे रहे और उन्हें हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। थैंक यू सुबिया रामनोरज जी। ये गीत खासम खास नित्या दिया श्रुति और ओगयो के नाम, और सुबिया नाम रामनोरज जी बहुत प्यार से हमें सुन रहे हैं। थैंक यू दोस्त हमें सुनने के लिए। और इस समय बहुत से लोग हमें टिकटॉक पेज पर भी देख रहे हैं। जी हाँ, सो टिकटॉक पर कैसे आप देख सकते हैं, सो आपको क्या करना है, आपको केवल रेडियो मॉरिशस का पेज खोलना है और टिकटॉक डालना है, सो आप हमें देख पाएंगे। ऑलराइट, सो अगला गाना जो है खासम खास हम चलाएंगे सुबी रामनोरथ के नाम, नित्या दिया श्रुति और ओरियो के नाम। सो भाई सुधीर नाम रामनोरज जी, बहुत बहुत प्यार के साथ ये गीत आपके नाम और आपके पूरे परिवार के लिए। और जितने भी लोग मुझे टिकटॉक पर देख रहे हैं और रेडियो पर सुन रहे हैं, ये गीत आपके नाम भी।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, 24 घंटे 365 दिन साल में हमारा साथ देते रहिए ऑन एमबीसी रेडियो मॉरिशस। जी हाँ, एक ही नंबर है 819 किलोहर्ट्ज़। आप हमें रेडियो पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, और टाइप कीजिए लिसन रेडियो मॉरिशस लाइव। और साथ में आप हमें टिकटॉक पर भी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ समय पहले उस्ताद रशीद खान की आवाज़ में आप सुन रहे थे आओगे जब तुम, फ्रॉम द मूवी जब वी मेट। सुबीर रामनूरत हमारे खास दोस्त है, और बेशक उन्होंने यह गीत, उन्हें गीत बहुत पसंद आया, माई प्लेजर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आपने इस गीत को एंजॉय किया। यूं ही खुश रहिए सुबीर, और प्यार खुशियां बांटते रहिए, जिंदगी इसी का नाम है। और कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में सब कुछ पाना नामुमकिन है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बट कुछ ना कुछ तो पा लेते हैं। रोटी कपड़ा मकान सभी को चाहिए, पर इंसान को चाहिए जीने के लिए ढेर सारा प्यार। थोड़ा सा प्यार हुआ है।

थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। जी हाँ, अब अगला गाना आएगा मैंने दिल तुझको दिया फिल्म का गाना थोड़ा सा प्यार हुआ है। और ये गीत हम चलाएंगे शान के नाम, फिर यही गीत जाएगा आनंदा के नाम। हाय आनंदा, तस्लीमा यह गीत आपके नाम भी। सूजी हमारा साथ दे रही है देवन नदी वाला फ्रॉम वैंकूवर कनाडा। और काटू सावित्री, हाय सावित्री। और वेदना काठोबोन से है परशुराम रत्नु। फिर यह गीत जाएगा आनंदा प्रादा के नाम। फिर पूनम फ्रॉम पॉजिटिव लक, उनके हबीब विशाल और उसके सभी बच्चों के नाम भी। नीतीश यादव, यह गीत आपके नाम भी। प्रभु सिंह, हेलो। वीरा नंद टकोरी, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर यह गीत जाएगा कुशवाहा जी के नाम। यही गाना हम चलाएंगे यादना के नाम भी, बहुत बहुत प्यार के साथ। नंदा श्याम, हेलो। फिर वादना, जी हाँ वादना, उनकी भाभी मिरेला का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू मिरेला, लॉट्स ऑफ लव। माधवी डूमर जी, यह गीत आपके नाम भी। उर्मिला जोधा, हेलो। और नंदा श्याम की ओर से उनकी बेटी दीना श्याम के नाम भी। राजा लामा, हेलो, यह गीत आपके नाम भी। केयान और सियान, अकील में भी और माधवी धूमर, सब धूमर परिवार के नाम। हाय अनुषी। फिर ललिता चरण, ओके। आकाश चेतन, ये गीत आपके नाम भी। ओके, वादना जी को हमारी आवाज़ बहुत पसंद है, थैंक यू सो सो मच। यादना काटोबोन से संध्या एंड लीला फैमिली फ्रॉम बुसोंश। ऑलराइट, और जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं आपको लाइन नहीं मिल रही है या होता है एक ही नंबर है काजा उदय विजय ओबित सिंह, तो आप SMS कर सकते हैं हमारी रेडियो मॉरिशस की TikTok पेज पर। और यही प्यारा सा गाना हम चलाएंगे उन सभी लोगों के नाम जो अभी भी मीठी मीठी नींद से जागे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। थोड़ा सा प्यार हुआ है और कितना प्यार बाकी है। चलिए एक साथ सुनते हैं।

सुबह का नजरान प्रोग्राम लाइव ऑन टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस एंड लाइव ऑन रेडियो मॉरिशस 719 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह 11:40। जी हाँ, गर्मी का मौसम तो शुरू हो गया है और रात को भी काफ़ी गर्मी हुई भाई। बहुत से लोगों ने तो अपना एसी भी ऑन कर दिया कई दिनों से। अब पंखा का भी इस्तेमाल हो रहा है, एसी का भी, और बेशक इस गर्मी का सामना करने की सब तो चाहिए, हाँ कि नहीं। यहाँ पर हमें आपका साथ दे रहे हैं, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए, रेडियो मॉरिशस चुनने के लिए। और अगला गीत दया दया दया रे, दया दया दया रे, फिल्म का नाम दिल का रिश्ता, पिक्चर आइज ऑन द ब्यूटीफुल द गॉर्जियस द वन एंड ओनली द इंडियन डीवा ऐश्वर्या राय बच्चन। जी हाँ, ये गाना बहुत ही प्यारा सा गाना है और यह गीत हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललिता चरण मॉडल भी ऐसे, ललिता चरण गाना हो जाए, उनके पति धनराज और बेटे के नाम भी इंदिरा, या गाना राजेश उगर जी के नाम, सब उगर परिवार के नाम। ऑलराइट, फिर आकाश चेतन, आज उनकी मामा का जन्मदिन है, मामा का नाम है प्रीति, सो कृष आकाश उर्वशी विष्णी विनेश केहान नव्या और सब मनसुख परिवार की ओर से मामा प्रीति को ढेर सारा प्यार। ऑलराइट, और यही जो गाना है दया दया दया रे, यस ये गाना हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम। यस, ग्रैंड रिट्रीट से है यामिमी और उनके बेटे आयान, उनके आयान का बर्थडे है, ढेर सारा प्यार और सब जुकन परिवार लोकनाथ परिवार के नाम। और यही गाना हम चला रहे हैं, यस मोदाल बेक अनीता लाल जी और सब ईटू परिवार के नाम। और यही गाना हम चलाएंगे अनीता जी जो फिगो फ्लाक से है, उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए अगला गाना। और यही गीत मिनुष्का के नाम, हाय मिनुष्का, नंदा श्याम, रीता और रेणुका जी मोहताबा से हमारा साथ दे रही है, थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए। रमन शिवा जी, हाँ आपके नाम भी यह गीत जाएगा। यही गीत चलाएंगे सेंटो बैसेस के सभी टीचिंग नॉन

टीचिंग स्टाफ के नाम, वहाँ के सभी स्टूडेंट्स, रेक्टर ने के नाम भी, स्पेशली इन सब लोगों के नाम, डीना, टीना, प्रतिमा, केत, रोशनी, अपाया और वीरापेन, रोसाई, सरजू, गंगू, केत के नाम भी। तो चलिए एक साथ सुनते ही प्यारा सा गाना, दया दया दया रे, दया दया दया रे। एंजॉय कीजिए इस गीत को, बहुत ही प्यारा सा गाना, प्यारी सी आवाज अलका जी की है।

एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर आज सौ उन्नीस ग्रह पर सुबह 11:50 हो रहे। अपाया जी ने गीत मांगा है खुशीना के लिए बहुत प्यार के साथ, और अपाया खुशीना से बहुत प्यार करते हैं अपनी जान से भी ज़्यादा। खुशीना अपाया आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो आपके लिए चांद सितारे सब कुछ तोड़ कर आपके दामन में ला सकते हैं, इतनी मोहब्बत वो करते हैं आपसे, इतना प्यार करते हैं कि क्या बताएं। सो खुशीना ढेर सारा प्यार अपाया की ओर से। अपाया कहते हैं कि आप उनके दिल की धड़कन हैं। क्या बात है, क्या बात है। सो अपाया और कृष्णा का ये प्यार यूं ही कायम रहे, और ये गीत आप दोनों के नाम मेड फॉर ईच अदर लव बर्ड्स, प्रियतमा ओ मेरी प्रियतमा, जी हाँ फिल्म का नाम है प्रेम कैदी। सो अपाया जी ये गीत आपके नाम फॉर योर लवली फ्रेंड क्रिस्टीना। हियर वी गो।

प्यार का अंजाम द लॉस्ट सॉन्ग ऑफ द प्रोग्राम. जी हाँ, आशा जानू आपको तेज, उनकी मामा कुमारी शुभम, शुभम के होने वाले फियांसे दीदी आरती, जीजा जी और सब जानू परिवार के नाम ये गीत. और इसी गीत के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे. सुबह का नज़ार प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है. बहुत से लोगों ने हमें टिकटॉक पर देखा, बहुत बहुत धन्यवाद. रेडियो पर सुनने के लिए, टिकटॉक पर देखने के लिए बहुत धन्यवाद. आपके फ़ोन कॉल्स और SMS के लिए शुक्रिया. सुबह के 6 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो सो मच. हमारी आपकी मुलाकात होगी कल संडे की शाम को 3 से 4 बजे रेडियो मनोरंजन पर. प्रोग्राम होगा ऐसा भी होता है. टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम मी और जय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार. याद है 9 बजे के समाचारों के बाद आप सुनेंगे पीक टाइम मैगजीन आज की चर्चा. प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार. लव यू ऑल. हैव ए लवली सैटरडे. बॉन वीकेंड. नमस्ते.

0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: इस समय ठीक 9 बजे हैं और समय हुआ है संक्षिप्त समाचारों का। फ्लैश न्यूज के साथ उपस्थित हो चुकी हैं स्टूडियो में टीना बुदना। नमस्कार टीना।
2: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। पिछले फरवरी में दक्षिण अफ्रीका के बाद अब मॉरिशस ने नामीबिया से मवेशियों के आयात के परमिट निलंबित कर दिए हैं। ये फैसला डिवीजन दे सर्विस वेटरिनेर DVS ने लिया है। ये कदम करास क्षेत्र के करासबर्ग में एक कमर्शियल फार्म में फुट एंड माउथ बीमारी के एक मामले की पुष्टि होने के बाद उठाया गया। बीमारी के संदिग्ध लक्षण वाले 11 मवेशियों में से 10 के 23 सितंबर को किए गए परीक्षण पॉजिटिव आए। मंत्रिमंडल ने ये जायजा लिया है कि 21 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने मॉरिशस और अमेरिका के साथ मिलकर 22 मई 2025 को हुए शागस द्वीप समूह समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए सहयोग का भरोसा दिया। मंत्रिमंडल ने यह भी नोट किया कि 22 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने इस समझौते का विरोध दोहराया। बैठक के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सभी पक्षों को मंजूर होने वाला समाधान तलाशने की प्रतिबद्धता जताई। और न्यूयॉर्क में मौजूद विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कल अपने ब्रिटिश समकक्ष एड मिलिबान से मुलाकात की। एड मिलिबान ने एक बार फिर ब्रिटिश सरकार की इस इच्छा को दोहराया कि ऐसा समाधान निकाला जाए जो तीनों पक्षों मॉरिशस यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए स्वीकार्य हो। मॉरिशस की सरकार के मुताबिक शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। और चाइना टाउन फूड एंड कल्चर फेस्टिवल का 19वां आयोजन इस शनिवार 26 सितंबर को और कल रविवार 27 सितंबर को पोटरी में होगा। खान पान संस्कृति और चीनी परंपराओं को समर्पित इस आयोजन में इस साल 11 समूह हिस्सा लेंगे। आयोजन शनिवार को सुपहर 3:30 बजे शुरू होगा जबकि रविवार को दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे। आज की चर्चा प्रोग्राम 9 बजे की इन समाचारों के बाद रेडियो मॉरिशस पर आज SMEs फेयर पर आधारित होगा जो कैथोबोन में आयोजित किया गया है। और आज और कल के लिए किरण जान की ये कार्यक्रम वैसे आज और कल के लिए आधारित है। और आज किरण जानकी के मेहमान होंगे विनीत जगेसर और अनिश कुमार जो आयोजक समिति के प्रतिनिधि हैं। विदेश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर बैठक का मुख्य मुद्दा दोनों देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा रहा। चीन का मानना है कि अमेरिका उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है, खासकर व्यापार, टेक्नोलॉजी और ताइवान के मामलों में। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।

0: आज की चर्चा।
1: नमस्कार, आज की चर्चा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा में हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है एसएमईज फेयर सालों पीएमयू। आज और कल एक फेयर, एक सालों पीएमयू का आयोजन हुआ है कैथोबोन में, और इस फेयर के अंतर्गत, इस मेले के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां हैं, किन के द्वारा यह आयोजित हुआ है, आपको इससे कौन कौन सी सुविधाएं होगी, क्या लाभ मिलेगा आपको, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस फेयर के आयोजक समिति के दो प्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं, और आप हैं विनीत जगेसर जी। विनीत जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: और साथ में है अनीश कुमार जी। नमस्कार अनीश जी। आप दोनों का आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो सालों पीएमयू एसएमईज फेयर आयोजित हुआ है आज और कल के लिए, इसका समय क्या है, किस समय से ये शुरू हो रहा है, कहाँ पर ये लग रहा है, और इसमें किस किस का मतलब कि कंट्रीब्यूशन है, किन किन संगठनों ने इसमें साथ दिया है, कौन कौन से ऐसे छोटे मध्यम उद्योग हैं जो आज और कल एकत्र हो रहे हैं।
2: सबसे पहले मैं आपका और सभी दर्शकगण और श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं। हमारा जो पीएमई फेयर है आज शुरू हो रहा है 9 बजे, सो सितंबर 26, और 9 बजे रात तक चलेगा, और फिर कल संडे 9 बजे से लेकर 6 बजे तक।
1: कहाँ?
2: बासंगोद कैथोबोन।
1: अच्छा,
2: तो ये जो हमारा एक्टिविटी है दो तीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है। तो मेन है हमारा पालमा नेबरहुड वेलफेयर एसोसिएशन, जिनका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और 108 रेज जो अनिश जी यहाँ पे है वो उनकी सेक्रेटरी है, और साथ में ही है नेहरू शिक्षा भवन जिसने हमें जैसे लॉजिस्टिक्स एंड वेन्यू दिया है, और एक फेडरेशन भी है हिंदू एकता संघ ऑफ कैथोबोन जो हमारे जैसे एम्पावर करते हैं जैसे रिलीजियस एंड कल्चरल आइटम्स ऑन द कंट्री। और जो पीएमई एक्सपो सेल आज जो लग रहा है वो हमारा आयोजित किया है, और जैसे सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक,
1: और रात के 9 बजे तक आज और कल दोनों,
2: कल 6 बजे तक शाम के।
1: अच्छा।
2: और हमारी एंट्री इसमें बिल्कुल फ्री है सबके लिए।
1: ओके, मतलब टिकट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है।
2: टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे पास बहुत डिफरेंट एक्सपोजेंस हैं, जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट सर्विसेज जो बाद में हम डिटेल्स दे सकते हैं आपको। तो हम करेंगे जैसे रिक्वेस्ट सबको जो पास में रहते हैं, जो दूर में जो भी रहते हैं, जो आना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और जब एक मेले का आयोजन होता है, एक फेयर, एक सालों का आयोजन होता है, तो उसमें आने वाले जो जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए कई गतिविधियों का साथ साथ आयोजन होता है। तो इस फेयर में और कौन सी गतिविधियाँ शामिल हैं?
3: इस फेयर में और होगा रक्तदान होगा, मेडिकल ब्लड डोनेशन होगा, सिर्फ आज के लिए ब्लड डोनेशन होगा, और मेडिकल कैंप होगा टॉन्सिल, आँख के लिए, डायबिटीज के लिए, ये सब होगा।
1: मतलब चेक, फ्री हेल्थ
3: फ्री चेकअप, फ्री चेकअप।
1: ओके,
3: मेडिकल कैंप जैसे।
1: जी हाँ।
3: एक
1: और इसमें सभी भाग ले सकते हैं,
3: सभी ला सकते हैं
1: जी। और जब हम सालों पीएमयू एसएमईज की बात करते हैं, तो जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, वो जो पैदावार जिन सामानों का पैदावार करते हैं उसकी बिक्री होती है, तो इस फेयर में मतलब कि ये सिर्फ लोकल हैं या इसमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी होंगे, मतलब कि हमें इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, कौन कौन से सामान इसमें प्रस्तुत किए जाएंगे और किन द्वारा?
2: तो पहली बात तो हमारे सब जो एक्सपोजेंट है वो मॉरिशन लोकल हैं।
1: अच्छा।
2: उनमें हैं जैसे आर्टिजनल, जैसे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स, और घर में जो बनाते हैं जैसे

0: housewives जो होती है जो small and medium enterprise जैसे entrepreneur तो हमने सबको opportunity दी है कि आके यहाँ पे अपना products को public के सामने लाएं
1: जी हाँ
0: तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास 60 exposants हैं और कल रात तक हमको all phone calls आ रहे थे कि और अगर जगह है हम आ सकते हैं तो हमको रिफ्यूज करना पड़ा क्योंकि जगह भी
1: देखनी चाहिए अगर नहीं है
0: 60 ऑलरेडी सो इनमें हमारा बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स है अनिश जी भी बाद में दे सकते हैं जैसे टेक्सटाइल जैसे फूड प्रोडक्ट्स जैसे होगा जैसे एक्सेसरीज ज्वेलरी और अभी दिवाली आ रही है तो उसमें भी जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स कपड़ों का बच्चों का जैसे वुमेन सबका प्रोडक्ट्स होगा उसमें
1: ज़रूर तो अनिश जी आप हमें कुछ ज़्यादा जानकारी देंगे क्योंकि जब ऐसा एक कोई मेला लगता है तो हमें पता है कि किसी न किसी मौके को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन होता है अभी आपने दिवाली की चर्चा की अभी नवरात्रि भी आने वाली है तो हमें आप ज़रा विस्तार से बताएं कि मतलब कि अगर जनता को वहाँ जाना हो तो उन्हें कौन कौन से पैदावार मिलेंगे और किन किन अवसरों के लिए
2: सबसे पहले केदारनाथ पूजा सब आ रहे हैं वो नवरात्रि के लिए सारे प्रोडक्ट रिलेटेड ब्रिंग करेंगे
1: जी हाँ
2: और लोकल में बासाई रोड में एक पूजा शॉप है जो बिलो फैमिली के लिए हैं वो भी आएंगे वो दिवाली और नवरात्रि के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट ला रहे हैं
1: जी
2: और दिवाली स्पेशल के लिए एक हमारा संयोजक हैं वो उसका नाम मिठास है मिठास
1: जी
2: वो लड्डू लाएंगे बातात लाएंगे स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल सिर्फ उनके लिए
1: अच्छा
2: वे लोगों को स्वाद टेस्ट करेंगे और वो ऑर्डर लेंगे
1: अच्छा
2: ये सिर्फ इसके लिए
1: अच्छा मतलब कि आपके टेस्टिंग के लिए वो सामान लाएंगे लेकिन आप ऑर्डर करेंगे क्योंकि मैं अभी सोच रही थी कि अभी से ही दिवाली के लिए लड्डू कैसे खरीद सकते हैं तो टेस्टिंग करने के बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं दिवाली के लिए
2: दिवाली बॉक्स हो गए और दिया होगा
1: अच्छा और सजावट के सामान और फिर
2: दिया वो जो जानते हैं वो DIY वो सब पेंट करते और लोगों को बेचेंगे
1: जी हाँ और फिर दिवाली और नवरात्रि के अलावा और कौन कौन से सामान होंगे
2: एंड ऑफ ईयर के लिए वो चादर हो गए रिडो होगा
1: घर के सामान
2: किचन के सामान स्पेशल होगा और मेडिकल के लिए एक हेड मैसेंजर
1: मैसेजर
2: वो स्पेशल होगा ये बहुत डिस्काउंट ये लगभग 800 बेचते नॉर्मल डिस्काउंट में 300 के लिए होगा
1: अच्छा मतलब कि जो पैदावार यहाँ पर बेचे जाएंगे उनमें काफ़ी हद तक डिस्काउंट लाया जा रहा है ऐसे दाम में बेचे जाएंगे जो कि आपको आमतौर पर बाजार पर नहीं मिलेगा
2: हाँ स्पेशल और होगा वो जो सोलर पैनल
1: जी हाँ
2: और सोलर वाटर इस पर भी डिस्काउंट होगा और सरकार के ग्रांट
1: के हिसाब से
2: ही
1: जी
2: यही होगा
1: ओके तो जैसा कि आप सुन रहे हैं अभी नवरात्रि आ रही हैं दिवाली भी आ रही हैं और इसके बाद नववर्ष का स्वागत किया जाएगा जिसके लिए हम घर के सामान भी ख़रीदते हैं तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए छोटे और मध्यम उद्योगों को सहायता देते हुए आप यहां से अपनी ख़रीदारी डिस्काउंटेड रेट में कर सकेंगे और इस फेयर का आयोजन कथोबोन में किया जा रहा है गुदबास है और यह आज सुबह 9 बजे से खुल चुका है रात के 9 बजे तक और कल भी 9 बजे से ये शुरू होगा और शाम के 6 बजे तक ये चलेगा तो इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए और जैसा कि हमारे दो मेहमान अनीश और विनीत जी कह रहे हैं कि इसके साथ साथ आज एक ब्लड डोनेशन का भी आयोजन हुआ है और फ्री हेल्थ चेक भी हो रहा है तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए ख़ास तौर पर अगर आप कथोबोन के आस पास में हो तो और इस प्रोग्राम में अभी हम विस्तार से आपको और जानकारियाँ देंगे फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है PMEs यानी SMEs द्वारा आयोजित एक मेला, एक फेयर, एक सालों, और यह कैथोबोन में लग रहा है आज और कल। और इसके आयोजक समिति के दो प्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं, विनीत जगेसर जी और अनीश कुमार जी, जो कि हमें इस फेयर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। विनीत जी, आप हमें बताइए कि इस फेयर में मतलब कि जो व्यक्ति आएगा उसको क्यों आना चाहिए, और आप मतलब सिर्फ अपने आस पड़ोस के लोगों को देख रहे हैं या पूरे मॉरिशस को, और इस फेयर में जो भी मतलब कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी इसमें अपने सामान प्रदर्शित कर रहे हैं, वो पूरे मॉरिशस से आए हुए हैं या सिर्फ कैथोबोन इलाके से ही हैं वे?
2: नहीं, मैं आपको बोल सकता हूँ कि फर्स्टली जो ऑल जो एक्सपोजेंट हैं वो सिर्फ कैथोबोन बासा के नहीं हैं। हमको जैसे एप्लीकेशन मिला है ऑल ओवर मॉरिशस से, और एक बड़ी अच्छी बात ये है कि जो लोग कंज्यूमर्स बन के आएंगे वो भी सिर्फ बासा के नहीं हैं। हमको हमने एक वीक से हम जैसे सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर रहे हैं, और हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे कौन सा प्रोडक्ट है, क्या नहीं है। तो मैं, अगर आप परमिट करते हैं, मैं एक लिस्ट देता हूं आपको कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकता है वहां पे। तो हमने बोला था इंडियन वेयर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी जैसे कैंकारी प्रोडक्ट्स, अच्छा। जैसे इक्विपमेंट्स और जैसे पूजा आइटम्स, अगरबत्ती, पूजा सामान, कुर्ता, गिफ्ट शॉप, हमारे होम डेको। तो आजकल जैसे एंड ऑफ ईयर आ रहा है तो रिनोवेशन जैसे घर में चलता है, तो ये सब मिलेगा। रेडीमेड गारमेंट्स, बेडशीट्स, घर बेडरूम का या सालों जो लिविंग रूम का जो आइटम्स है, और उसमें हमारा कोई एक्सपोजेंट वो भी है जैसे जो लाइक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है, मेनवेयर, पूजा सामान, स्पाइसेस, स्वीट्स, जैसे अगर हमको स्कूल बैग्स चाहिए या ऑफिस बैग्स चाहिए तो यहाँ पर भी ये सप्लायर्स हमारे पास हैं। और अनीश ने अर्लियर बोला था कि मेडिकल फील्ड से जैसे जैसे हेड मसाज और जैसे स्पेशल ऑइंटमेंट्स, स्पेशल तेल, मिठास, और बहुत सारे लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे वहाँ पे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो लोकल SME है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, हमको उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि और प्रोडक्शन करें, क्योंकि जो SME है हमारे ना, हमारी इकोनॉमी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे जैसे अगर मैं फिगर्स बोल सकता हूँ, जैसे हमारी GDP जो होती है उसमें 40% कंट्रीब्यूशन है, और हो सकता है आपको और सरप्राइज होगा अगर मैं बोलूँगा कि 56% ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट जो
1: SMEs से आते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज।
2: तो अगर एक कंट्री को एक जैसे अपना प्रोग्रेस करना है तो इकोनॉमिकली
1: उसको लोकल सामान का कंज्यूम कंसम्पशन करना,
2: प्रमोट SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर।
1: और जब COVID-19 चला था तब ये बहुत ये नारा काफ़ी मशहूर हुआ था, ईट लोकल, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वहाँ पर अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो वो पैसे देश से बाहर जाते हैं, लेकिन अगर आप लोकल पैदावारों का सेवन करते हैं तो वह धन राशि जो है वो आपके ही देश में रहता है, और इस तरह से जैसा कि आपने कहा आपका GDP वो स्टेबलाइज रहता है और आपका देश वो समृद्धि की ओर बढ़ता है। इसीलिए हर तरीके से ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने देश के लोगों ही द्वारा जो पैदावार प्रस्तुत किए जाते हैं, जो पैदा किए जाते हैं, आप उनका ही उपभोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रमोट करें, और

0: अभी आपने एक बहुत विस्तृत लिस्ट प्रस्तुत किया जो कि हर एक इससे लाभ उठा सकता है, और आपने खाने पीने के सामान पर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी। क्या SMEs में हम देखते हैं कि अचार वगैरह बहुत ज़्यादा इसका पैदावार होता है, तो खाने पीने के कौन कौन से सामान यहाँ पर प्रदर्शित होंगे?
1: तो मैं सबको बोल सकता हूँ जो भी आ रहा है कि वीकेंड में किचन घर में खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक फूड कोना होगा।
0: अच्छा,
1: तो ऑल फूड आइटम्स जैसे होता है, तो जैसे किड्स कोना वगैरह भी होगा, तो आके बेनिफिट लें सब फैसिलिटीज़ का।
2: इसमें स्पेशल पिज्ज़ा होगा, रोटी होगी, दाल पूरी होगा, स्पेशल पानी पूरी।
0: अच्छा,
2: स्पेशल पानी पूरी,
0: मॉरिशन पानी पूरी
2: मॉरिशन स्टाइल में
0: जी।
2: बिरयानी होगा, वेज और नॉन वेज दोनों होगा
0: जी। हाँ,
2: जो नमकीन चाहते हैं वो पसंद करते हैं, जैसे आम, जनाना, कॉफी जो कहते हैं,
0: कॉफी
2: बहुत चटकार से होगा।
0: अच्छा, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके पीछे आपने कहा कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने एप्लीकेशंस भेजे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जो आयोजक समिति है इसके पीछे कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स हैं आपके कमेटी में, और उनकी विशेषता के बारे में आप हमें ज़रा बताइए।
1: तो ये काफ़ी जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक NGO ये प्रिपेयर करने में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो हम बासाएँ पालमा में हम ऐसे काम करते हैं जैसे कोलाबोरेटिव काम। ओके, तो मैं
0: सबके सहयोग
1: तो डिफरेंट NGOs, तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पालमा नेबरहुड वेलफेयर एसोसिएशन, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और फॉर एग्जांपल भाई अनिश वो 108 रेज के सेक्रेटरी हैं, तो हम काफ़ी दूर से पूरे साल साथ में काम करते हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं।
0: तो किस तरह की गतिविधियाँ आप आयोजित
1: तो
0: करते हैं?
1: हमारा सेट एक्टिविटीज़ है एवरी ईयर, जैसे हम शुरुआत करते हैं कावेदी शुरू होता है तो सेवा करते हैं, फिर महाशिवरात्रि आती है, अभी अभी में गणेश चतुर्थी का जो हुआ तो हमने भी पार्टिसिपेट करके सेवा की है, फूड डोनेशंस देते हैं हम। और अभी जैसे अब ब्लड डोनेशन ये पालमा नेबरहुड का हम मिनिमम दो बार एक साल में ज़रूर करते हैं, हमारा ये सेट एक्टिविटी है। एक बार होता है मार्च में, एक बार होता है अराउंड दिस सितंबर पीरियड। तो पालमा नेबरहुड हम अगर आप मेरे को थोड़ा डिटेल्स दे सकता हूँ, पालमा नेबरहुड वॉच जैसे वो नाम ही बोलते हैं नेबरहुड वॉच, हमारा ऑब्जेक्टिव हमने शुरू किया था कि हमारे जो नेबरहुड हैं उसके सिक्योरिटी, उसमें सेंसिटाइजेशन, और हम गवर्नमेंट जैसे अथॉरिटीज़ से काफ़ी काम करते हैं, जैसे हम ब्रिज करते हैं बिटवीन हैबिटेंट्स एंड अथॉरिटीज़ लाइक म्यूनिसपालिटी, लाइक पुलिस स्टेशन। तो अगर कुछ जैसे क्वेरीज हो या कुछ डिलेंस जैसे बोलते हैं हम क्रियोल में,
0: या कोई समस्या हो,
1: जो कुछ समस्या हो, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें जो इनहैबिटेंट्स है वो अपना जो भी क्वेरी डालते हैं, फिर हम लिएजन करते हैं जैसे पुलिस के स्टेशन के साथ या म्यूनिसपालिटी के साथ। तो हमने जब पालमा नेबरहुड शुरू किया था तो नेबरहुड वॉच से शुरू किया था, फिर ग्रेजुअली हम जैसे कम्युनिटी वर्क, सोशल
0: डाइवर्सिफाई होते गए।
1: फिर मैं पर्सनली हमारा पालमा नेबरहुड में अभी अनिश 108 रेज का भी थोड़ा डिटेल्स देंगे, पालमा नेबरहुड में हम 8 कोऑर्डिनेटर्स हैं, और हमारा ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में आज 200 हाउसहोल्ड्स हैं। तो हम काफ़ी सोशल वर्क, काफ़ी कम्युनिटी वर्क करते हैं, और मैं जो वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे पोस्ट में हूँ, तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एम्पावरमेंट में। तो मैं प्रोफेशन से एक अकाउंटेंट हूँ, और हाल ही में मैंने अभी एक जैसे इन कनेक्शन कॉम्प्लीमेंटरी टू माय रोल इन पालमा नेबरहुड, मैंने अभी एक लास्ट वीक एक लॉन्चिंग की है एक बुक की, तो इस बुक के द्वारा मैं एम्पावरमेंट करता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो फाइनेंशियल लिटरेसी, हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, और हम इवन लाइक कोर्सेज करते हैं जैसे यूथ के लिए, जैसे हो सकता है कम्युनिकेशन के ऊपर, हो सकता है जैसे पर्सनल डेवलपमेंट, हाउ टू राइट अ CV, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, तो ये सब हम अपने रिसोर्सेज से जस्ट जितना है हमारे पास हम हेल्प करते हैं लोगों को कम्युनिटी वर्क।
0: और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में आप
1: तो
0: जरा बताते चले।
1: हाँ,
2: और थोड़ा मैं बता सकता हूँ।
0: जरूर।
2: हम जो सावित्रीज हैं, हर त्योहार और नेचुरल कैलामिटीज के

0: वक्त पर हम भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है,
1: खाना
0: जैसे इस्कॉन के लिए फूड फॉर लाइफ, इससे इंस्पायर होकर हर त्यौहार जो आता है और स्पेशल कोविड में हम लोगों को जैसे राशों कहते हैं घर घर तक पहुंचाते थे, ये हमारा स्पेशल है
1: जी। और फिर
2: और हमारा और दूसरे एनजीओज हैं साथ में जो देते हैं। हमारा एक और पार्टनर है नेहरू शिक्षा भवन, तो बासन रोड में आज जो एक्टिविटी है
1: वो
2: तो
1: वहीं पर हो रहा है।
2: हाँ, वहीं पे हो रहा है। और उन लोगों ने हमको जैसे लॉजिस्टिक्स दिया, जैसे उसकी जहाँ पे ब्लड डोनेशन रक्तदान जो हो रहा है आज उनके प्रीमाइस में हो रहा है।
1: अच्छा।
0: और जब हम सुशा कल्चर कर रहे हैं हमें एहसास हुआ कि हर तीन घर में एक बिजनेस है, एक एंटरप्रेन्योर है। वो टिकटॉक और फेसबुक में अपना प्रमोशन बेचते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग उस सामान को जैसे बेडशीट को मोबाइल में देकर और
1: खरीदते नहीं चलता है, हाँ, कि डिलीवरी चलती है।
0: जैसे मैं लड्डू की बात कर रहा हूँ, दिवाली के समय पर हम देखेंगे, लेकिन अगर आज आप इस प्रोडक्ट चखेंगे, बेडशीट को क्वालिटी देखेंगे, तो ये
1: इससे आपको पता चलेगा कि इनका इनकी पैदावार कैसी है,
0: कैसे ही
1: है। जी हाँ। और फिर ये एक प्लेटफॉर्म भी है कि उन लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया पर अपने सामान बेच रहे हैं, और सभी लोग तो सोशल मीडिया पर नहीं होते
0: नहीं है। हमारे दादी लोग वो सोशल मीडिया से वो देखते हैं, फेसबुक है,
1: लेकिन खरीदारी नहीं
0: कर सकते हैं
1: जी। तो यहाँ एक मौका है उन लोगों के आने का। बहुत अच्छा।
0: बहुत फ्रोजन प्रोडक्ट हो।
1: अच्छा।
0: घर पर जैसे कि आप समोसा है, स्प्रिंग रोल है, जैसे टिका है,
1: यस,
0: और उसका चिप्स हो, वो चिप्स है कनावा चिप्स, बनाना चिप्स, कसावा चिप्स, कसावा और बनाना चिप्स, ये सब वहाँ पर।
1: अच्छा।
0: आप टेस्ट कर सकते हैं
1: और ये डिस्काउंटेड प्राइस में होगा।
2: डिस्काउंटेड प्राइस में। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है एनवायरनमेंट
1: जी।
2: तो हम जैसे पालमा नेबरहुड में एवरी ईयर एनवायरनमेंट डे करते हैं, तो फिर हम म्यूनिसपैलिटी के हेल्प से हमारा जो लोकेलिटी है सब लोग आके हेल्प करते हैं कि साफ साफ करो।
1: जी हाँ।
2: और ये पीएमई फेयर में हम देखेंगे कि 16 पैनल 16 वाटर हीटर सप्लायर भी आया हुआ है।
1: अच्छा।
2: तो ये हम प्रमोट करते हैं क्योंकि ये 16 एनर्जी यूज़ करके हम एनवायरनमेंट को भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि ये दुनिया भर में रिसेशन का दौर चल रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन बहुत भारी पड़ रहा है, तो फिर इस 16 एनर्जी 16 वाटर हीटर के बारे में किस किस तरह से DBM भी इसमें शामिल हो रहा है, अभी हम थोड़ी देर में इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा में आज जैसा कि आपको पता चल गया, हम SMEs फेयर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कैथोबोन में चल रहा है आज और कल। आज सुबह 9 बजे से ये शुरू हो चुका है, रात्रि के 9 बजे तक ये चलेगा और कल भी ये 9 से 6 बजे तक चलने वाला है। और इसमें सामानों की बिक्री तो होगी ही, लेकिन ये सामान छोटे और मध्यम उद्योग जो कि मॉरिशस के हैं उनके द्वारा पैदा किए गए हैं। और साथ ही साथ कई अन्य गतिविधियां चल रही हैं, जैसे कि आज ब्लड डोनेशन है और फिर ब्लड डोनेशन के अलावा कई और गतिविधियां चलाई जाएंगी। और अभी विनीत जी आप बता रहे थे कि इसमें 16 वाटर हीटर भी इसकी बिक्री होगी और इसके लिए DBM द्वारा जो ग्रांट, जो फैसिलिटीज़, जो सुविधाएं उपलब्ध हैं इस पर भी जानकारियां दी जाएंगी, तो ज़रा इसके बारे में हमें बताइए।
2: तो आज हमारे बीच एक्सपोजों DBM भी आया हुआ है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस। तो इसमें नॉट ओनली अबाउट ग्रांट्स बट ऑल्सो जो PME जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको फाइनेंसिंग चाहिए, जैसे माइक्रो लेंडिंग,
1: जी हाँ,
2: तो वहाँ पे एक स्टॉल है। तो वो लोग वहाँ पे सब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे लोन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है,
1: मतलब कि अगर आप भी ऐसा एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद होंगे आज, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इन सभी पर जानकारी देने के लिए DBM वहाँ पर उपस्थित होगा।
2: न्यू और एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर के लिए भी वहाँ पे
1: अच्छा
2: इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
3: और DBM के साथ एक स्पॉट फाइनेंस भी होगा, वो एक गिड है जो होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर गलती करता है, कैसे कैश को जनरेट करते, को हैंडल करते,
1: क्योंकि उसको पता नहीं होता,
3: पता नहीं होता। जैसे मैं भी लास्ट ईयर करता हूँ, तो कैश को कैसे हैंडल करते हैं, इसका एक गिड होगा स्मॉल फाइनेंस।
1: अच्छा।
3: और इसके अलावा बच्चों के लिए स्पेशल रविवार को 2 बजे मैजिक शो होगा और बच्चों के लिए आइसक्रीम भी डिस्काउंटेड रेट में, ये स्पेशल।
1: वो भी मतलब कि फेमेजो होगा आइसक्रीम भी?
3: हाँ, फेमेजो है, जैसे कुल्फी मलाई है,
1: जी हाँ,
3: ऐसे भी कुछ सामाजिक होगा।
1: अच्छा।
3: और एक आप जो पेट लवर होगा वो MSO आ रहे हैं अपने कुत्ते को अडॉप्ट करने के लिए।
1: अच्छा, मतलब कि अगर आप एक पेट पाना चाहते हैं, अगर एक कुत्ता अडॉप्ट करना चाहते हैं, पप्पी हो या डॉग हो, तो आप वहां जा सकते हैं। MSO अपने पेट्स के साथ आएंगे, अपने पप्पीज़ और डॉग्स के साथ आएंगे और आप वहां पर मेरे ख्याल से आप सिर्फ एक ऐसा फीच करना चाहिए जिससे कि उनका स्टेरिलाइजेशन कवर हो सके और फिर ये फ्री होता है।
3: फ्री होता है और आईडी
1: लाना चाहिए
3: जी। क्योंकि वो DBM और SME MSO वो आईडी मांगते हैं।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया। और विनीत जी आप कुछ जोड़ना चाहेंगे?
2: मैं थोड़ा ब्लड डोनेशन के बारे में, ब्लड दान के लिए थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो पहले जब ब्लड डोनेशन होता था तो बोलते थे गिव ब्लड सेव अ लाइफ, पर आजकल

0: जो ब्लड देता है वो उसके लिए भी, उसके हेल्थ और सेहत के लिए अच्छा होता है। तो हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल, और ब्लड बैंक से हमको काफ़ी रिक्वेस्ट आता है कि जैसे हम एनजीओज हैं जो हम एवरी ईयर जो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ब्लड बैंक हमको एनकरेज करता है कि जैसे करीब इस वक्त जो है एंड ऑफ ईयर इम्पोर्टेंट होता है कि ब्लड बैंक में वो लोग अपना लाइक डोनेशन करके अपना ब्लड बैंक का स्टॉक
1: ज़रूर
0: ऊपर करें। और तो मैं सभी लोगों को बोलूँगा जो हमारे एग्जिस्टिंग ब्लड डोनर्स हैं, जो बासाएँ कैट्रोबोन और दूसरी जगह से भी जो आते हैं, कि वो आए। आज 3 बजे तक होगा ब्लड डोनेशन, और 12 बजे तक हमारा स्क्रीनिंग भी है, जैसे मेडिकल स्क्रीनिंग, बेसिक BMI, जैसे हेल्थ चेक, तो ये सब उसका फैसिलिटी होगा वहाँ पे
1: ज़रूर।
2: और शादी का सीजन आ रहा है
1: जी,
2: अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
1: अभी पितृपक्ष के बाद शादी भी शुरू हो जाएगी,
2: जब नवरात्रि के बाद शादी, शादी का सीजन होता है
1: ज़रूर।
2: तो के डिज़ाइनर भी आ रहे हैं, आपको हल्दी गीत गवाए, माँ बच्चे बाप बच्चे एक कॉमन क्लोवर्स डालते हैं ना
1: जी हाँ, आजकल तो
2: कॉम्बिनेशन
1: जी हाँ थीम रखे जाते हैं और फिर मैचिंग
2: डिजाइनर
1: होता है,
2: आ रहा है, ये स्पेशल होगा।
1: अच्छा,
2: साड़ी को बहुत डिस्काउंट, तो स्त्री वाले औरत जैसे लेडीज बहुत को पसंद आएगा।
1: अच्छा,
2: उनके एक्सेसरी जो
0: ज्वेलरी
2: जानू लासन सब रिलेटेड थिंग्स,
1: ओके,
2: शादी के लिए स्पेशल।
1: बहुत बढ़िया। और फिर अभी आपने जब DBM के बारे में कहा, तो क्या DBM के साथ साथ कोई और इस तरह के मतलब कि कोई और इंस्टीट्यूशन भी इसमें शामिल होगा?
0: हाँ, और इंस्टीट्यूशन है, जैसे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन भी आ रहा है, वहाँ पे वो अपना प्रमोट करेंगे जैसे जो इम्पोर्टेड राइस जो यहाँ पे मार्केट में बेचते हैं और अदर प्रोडक्ट्स। और
1: शायद STC का वहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो जगहियों हैं इसकी मांग अभी काफ़ी बढ़ चुकी है।
0: हाँ, और हो सकता है वो आज एक न्यू ब्रांड राइस का भी लॉन्चिंग करेंगे, तो हमने सुना है, तो अभी हमको कंफर्मेशन नहीं मिला, तो ये भी होगा। और साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फारी, जो एग्रो मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये फारी जैसे जो जो एंटरप्रेन्योर जो घर में बनाते हैं जैसे फूड आइटम्स,
1: जी हाँ,
0: उनको ट्रेनिंग देता है कि अगर अचार बना रहे हो तो कैसे प्रिजर्व करना है।
1: अच्छा,
0: अगर प्लांटेशन कर रहे हो तो कोर्सेज देता है कि क्या, व्हाट इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ यू नो होम गार्डनिंग और हाउ टू प्रिजर्व होम मेड फूड फॉर टू बी सोल्ड।
1: और ये सभी कुछ फ्री होगा?
0: ये सब फ्री है
1: जी,
0: तो आके लाभ लेना चाहिए ये सब का
1: ज़रूर, क्योंकि हमको पता है कि हमारी माएँ हमारी चाचियाँ उनको बहुत पसंद है अचार वगैरह डालना, लेकिन देखते हैं कि जैसे ही इसको तैयार किया फिर 2 दिन बाद ये ख़राब पड़ जाता है, या फिर होम गार्डनिंग के लिए बहुत से उनकी ओर से इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन देखते हैं कि वो बीज अंकुरित होने के बाद ही वो मर जाता है, या फिर जो उनकी उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हो पाती। तो यहाँ पर एक मौका है जहाँ पर फागे आपको, एक तो आप अपनी ख़रीदारी कर पाएंगे, हेल्थ चेक कर पाएंगे, खाने का भी कॉर्नर होगा, और फिर आपको टिप्स भी मिलेगा कि आप होम गार्डनिंग को कैसे सफल बना पाएँ जी। और हम प्रोग्राम की समापन की ओर थोड़ी ही देर में बढ़ेंगे, और इस समापन के पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एक SMEs फेयर का, जो कि आज और कल चल रहा है काठमांडू में, और इसके दो प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, अनीश जी और विनीत जी। विनीत जी, अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं या फिर जो शुरू कर रहे हैं कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, एक छोटा या मध्यम उद्योग, उन्हें ज़रूरत है एक गाइडेंस की, एक मार्गदर्शन की, कि किस तरह से वे अपना निवेश कर सकें अपने बिजनेस में और फिर किस तरह से मुनाफा कमा पाएँ। इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक जो ज्ञान है वो बहुत ज़रूरी होता है, और आप लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में भी यहाँ पर कोई गाइडेंस होगा, ज़रा इसके बारे में हमें बताएं।
2: हाँ, जो एजुकेशन और एम्पावरमेंट है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है गाइडेंस।
1: जी हाँ,
2: तो हमने अपने फेयर में एक स्मार्ट फाइनेंस फॉर एंटरप्रेन्योर कॉन्सेप्ट रखा है। वो क्या है, हम देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपनी बिजनेस में, अपनी लॉजिस्टिक्स में, अपने ऑपरेशंस में बहुत इंटेलिजेंट है।
1: जी,
2: पर स्टैटिस्टिक्स ये भी बोलता है कि हमारे एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियल लिटरेसी में थोड़ा सा
1: कमजोर।
2: हाँ, तो ये एक वीक पॉइंट है।
1: जी,
2: सिंपल थिंग्स होती है, कैश फ्लो मैनेजमेंट, जैसे देखो अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एक स्मॉल एंड मीडियम

0: बिजनेस कैसे शुरू करना चाहिए, एक कंपनी के द्वारा या सोल ट्रेडर के द्वारा, और कैपिटल जैसे कैसे रेज करें। अब अगर आपको इक्विपमेंट फाइनेंस करना है तो कौन से मोड से फाइनेंस करें, एक लीसिंग लोगे, एक लोन लोगे, या आपने पर्सनल कैश से करोगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इंग्लिश में जो बोलते हैं वट एवर गेट्स रिटन गेट्स डन, सो बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनी बिजनेस स्पेशली द स्मॉल एंड मीडियम वंस, उनको अपना जैसे फोकस एंड बजटिंग
1: पहले से कर लेना चाहिए।
0: हाँ, फिर जब एक्चुअली जब टाइम पास होता है, जब अपना परफॉर्मेंस जब आप अप्रेज करते हो, तो आपके पास एक बेंचमार्क होगा कि मैंने जैसे बजटिंग की थी कि मैं 3 महीने में मेरा सेल्स होगा दैट मच ऑफ मनी, पर मैं थोड़ा शॉर्ट फॉल हो गया हूँ, या मैंने अपने बजट से ज़्यादा किया है
1: जी।
0: तो ये सब स्मार्ट फाइनेंस फॉर एंटरप्रेन्योर, वहाँ पे हम एक जैसे गाइडेंस हम देंगे अपने एंटरप्रेन्योर को, ताकि एक बैलेंस हो अपने बिजनेस में और साथ में फाइनेंस मैनेजमेंट के साथ में भी
1: जी। हाँ,
0: तो इसके ये प्लेटफॉर्म के द्वारा जो 2 दिन आ रहे हैं, तो हम वहाँ पे ये सब काउंसल करेंगे, नॉट ओनली फॉर पीपल कमिंग बट ऑल्सो फॉर ऑल द एक्सपोजेंट हु आर देयर।
1: जरूर।
0: सो वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो अस एज एन एसोसिएशन वी आर गोइंग टू हेल्प।
1: क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि कोई एक बिजनेस शुरू करता है बहुत उत्साह के साथ, बहुत उम्मीद के साथ बिजनेस शुरू होता है, चलने लगता है, फिर अचानक देखते हैं कि वो बंद हो गया। तो इसके लिए जैसा कि आपने कहा, फाइनेंशियल जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और हम प्रोग्राम के अंत तक लगभग पहुँच चुके हैं, हमारे पास 2 मिनट है। हम चाहेंगे कि आप हमें आखिर में अपना संदेश दें कि क्यों ज़रूरी है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, क्यों ज़रूरी है हमारे देश की जनता को ऐसे छोटे मध्यम उद्योगों को प्रमोट करना, उनके पास जाकर ख़रीदारी करना, एंटरप्रेन्योर को कैसे हम उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं, ज़रा इसके बारे में बात करते हुए हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे।
0: तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर, जैसे मैंने बोला था कि वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इकोनॉमी में, तो ये प्लेटफॉर्म के द्वारा हम उन लोगों को विजिबिलिटी देते हैं, जैसे अपना प्रोडक्ट्स लाओ, अपना मार्केटिंग करो, और साथ ही साथ अपना बिजनेस बढ़ाओ। क्योंकि हम जब हम एक एंटरप्रेन्योर से कुछ बाय करते हैं, तो हम एक फैमिली को हेल्प कर रहे हैं बिहाइंड, तो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा यही मैसेज है कि SME शुड बी प्रमोटेड एंड मोटिवेटेड।
1: ज़रूर,
2: एंटरप्रेन्योर SME देश के भविष्य हैं। कल्पना कीजिए, हर घर में एक एंटरप्रेन्योर है
1: जी। हाँ।
2: इसका कैश फ्लो कैसा इम्पोर्टेंट होगा बजट के लिए
1: जी।
2: तो हर घर में जैसे तैसे, चाहे वो स्मॉल हो लड्डू से, चाहे मिलियन हो, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए,
1: ताकि जब जहाज़ का आना जाना बंद हो जाए इस दुनिया में, COVID-19 जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तो हमें भूखा ना रहना पड़े, हम फिर भी अपने देश को चला पाएंगे, हम हर घर में खाना होगा और हर एक का हम सहयोग कर पाएंगे। विनीत जी, अनीश जी, आप लोग आज सुबह सुबह अपना फेयर छोड़कर यहाँ पर आए, अपने फेयर के बारे में जानकारी देने के लिए, छोटे मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना। और आप सुनने और देखने वालों को आज के इस प्रोग्राम में आपने ध्यान से हमें सुना और देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: टाइम चेक एग्जैक्टली 10 AM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है टीना. आपको नमस्कार.
1: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. मंत्रिमंडल ने यह जायजा लिया कि 21 सितंबर को प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से फोन पर बातचीत की. उन्होंने मॉरिशस और अमेरिका के साथ मिलकर 22 मई 2025 को हुए शगस्त द्वीप समूह समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए सहयोग का भरोसा दिया. मंत्रिमंडल ने यह भी नोट किया कि 22 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने इस समझौते का विरोध किया. बैठक के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सभी पक्षों को मंजूर होने वाला समाधान तलाशने की प्रतिबद्धता जताई. न्यूयॉर्क में मौजूद विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कल अपने ब्रिटिश समकक्ष एड मिलिबान से मुलाकात की. एड मिलिबान ने एक बार फिर ब्रिटिश सरकार की इस इच्छा को दोहराया कि ऐसा समाधान निकाला जाए जो तीनों पक्षों मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए स्वीकार्य हो. और मॉरिशस की सरकार के मुताबिक शगस्त द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है. जनवरी 2027 से सेंट बार्टोलोम्यूज कॉलेज और रॉयल होलोवे कॉलेज को मिलने वाली सरकारी मदद बंद हो जाएगी क्योंकि दोनों स्कूलों में छात्रों की संख्या तय सीमा से कम हो गई है. दोनों स्कूलों के छात्रों को उनके घर के पास दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा. योग्य स्थायी शिक्षकों और कर्मचारियों को मेडिकल में लेकर दूसरे स्कूलों या जहां ज़रूरत होगी वहां काम दिया जाएगा. बासन रोड का थोबोन में इस सप्ताहांत के दौरान एक बिक्री प्रदर्शनी लगाई जा रही है. उसके लिए कई अन्य गतिविधियां भी की जाएंगी, मेडिकल चेकअप, रक्तदान आदि. और इस बिक्री प्रदर्शनी में महिला ठेकेदारों को बढ़ावा दिया जाएगा. चाइना टाउन फूड एंड कल्चर फेस्टिवल का 19वां आयोजन इस शनिवार 26 सितंबर और कल रविवार 27 सितंबर को पोर्टवी में होगा. खान पान, संस्कृति और चीनी परंपराओं को समर्पित इस आयोजन में इस साल 18 समूह हिस्सा लेंगे. आयोजन शनिवार 8 शनिवार को दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा जबकि कल रविवार को दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे. विदेश में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वां सत्र चल रहा है. यहाँ ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो ग्यूटेरेस का अंतिम महासभा सत्र है. ग्यूटेरेस का कार्यकाल रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक संकट, संघर्ष, महामारी, जलवायु आपदा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अहम दौर से भरा रहा. बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है. वे नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चयन की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. थोड़ी देर में शोक समाचार. रॉय रोड लावांचियामी 88 साल की 88 साल की श्रीमती राधिका मनबोध. श्रीमती राधिका मनबोध पैदाशी नाम बगालू और जो दादी रमावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके घर रॉयरोड लावांचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. गांधी लेन अलीतामारा बॉम्बूमी 70 साल की 70 साल की कुमारी जयश्री नतुबा जो जयश्री नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई. उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके घर गांधी लेन अलीतामारा बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सैम्पिया बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
2: रेडियो मॉरिशस 800 kHz पर ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.

सूरत नबा मक्की है, हिजरत से पहले इसका नुजूल हुआ और आने पाक की तरतीब के एतबार से इसका नंबर 78 है और नुजूल के एतबार से इसका नंबर 80 है। इसमें 40 आयतें और 2 रुकू हैं। नबा अरबी में खबर को कहते हैं। इस सूरह मुबारका में कयामत की खबर को बयान किया गया, इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरह नबा है। क्योंकि मक्की सूरत है और ये हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि मक्की सूरतों में कयामत की होलनाकियों, जन्नत और जहन्नम का जिक्र ज्यादा है, क्योंकि ये चीजें दिल को नरम करने वाली हैं। और जब इब्तदाई इस्लाम में काफिरों की सख्तियां थीं तो काफिरों के दिलों को नरम करने के लिए इन चीजों की होलनाकियों का जिक्र किया गया, जहन्नम और कयामत की होलनाकियों का, मौत की होलनाकियों का। और आज भी जिन लोगों के दिलों पर सख्ती है, ये सूरतें उनके दिलों की सख्ती को दूर करने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत ज्यादा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अम्मा यतसाअलूना, किस चीज के बारे में वो आपस में सवाल कर रहे हैं। अनिन नबाइल अज़ीम, एक बड़ी खबर के बारे में। अल्लदी हुम फीही मुख्तलिफूना, वो कयामत की खबर जिसके बारे में वो मुख्तलिफ हैं। काफिरों ने जब ये सुना कि मरने के बाद दोबारा उठना है तो ये सारे जमा हो गए और एक दूसरे से सवालात करने लगे कि जरा सोचें, हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी, फिर दोबारा कैसे जिंदा होंगे। तो किसी ने कहा कि आप हड्डियों की बात करते हैं, बास तो ऐसे होंगे कि जो मट्टी में मिल जाएंगे मट्टी बन जाएंगे। तो किसी ने कहा कोई जल जाएगा, फिर किसी ने कहा किसी को शेर और दरिंदा खा गया। इस तरह वो सवालात कर करके आपस में ही वो कयामत का इनकार कर रहे थे। कल्ला सयालमूना, यकीनन अन करीब वो कयामत को जान लेंगे। सुम कल्ला सयालमूना, फिर यकीनन अन करीब वो जान लेंगे। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को बिछोना ना बनाया। अब अल्लाह ताला की कुदरत का जिक्र है और ये बताया जा रहा है जो रब इस पर कादिर है कि वो इतनी इतनी नेमतें दे, वो तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। वल जिबाल औतादा, और क्या हमने पहाड़ों को मेखे न बनाया, कीले न बनाया। जैसे किसी के अंदर कील गाड़ी जाती है तो आपने देखा होगा कील का कुछ हिस्सा अंदर होता है और थोड़ा सा हिस्सा जिसे हम सर कहते हैं, हेड कहते हैं, वो कील का बाहर होता है। इसी तरह ये समझिए, जिस कदर पहाड़ ऊपर हैं तो ये ऊपर का हिस्सा भी इनका है और जमीन के अंदर भी पहाड़ों की जड़ें हैं। वखलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया, मर्द और औरत की शक्ल में पैदा किया। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बनाया। अगर नींद न होती तो तुम चंद दिनों की मेहनत के बाद हमेशा के लिए बेकार हो जाते। वजअलना लैल लिबासा, और हमने रात को पर्दा पोश बनाया कि रात छा जाती है और उस वक्त वो माहौल है कि चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, रात का माहौल सुकून का माहौल है, उसमें नींद अच्छी आती है।

जहन्नम उन लोगों का ठिकाना है। लाबिसीन फीहा अहकाबा, वो इस जहन्नम में मुद्दतों रहेंगे। अगर ईमान पर खात्मा हुआ लेकिन गुनागार है तो मुद्दतों रहेगा, और अगर कुफर पर खात्मा हुआ तो हमेशा जहन्नम में रहना होगा। ला यज़ूकून फीहा बर्दं वला शराबा, वो जहन्नम में ना तो ठंडक का मजा लेंगे और ना ही किसी पीने वाली चीज का वो मजा लेंगे। इल्ला हमीमं व गस्साका, जहन्नम में तो भड़कती हुई आग है, तो हमीमा गर्म खोलता हुआ पानी है, व गस्साका और गर्म खोलता हुआ जहन्नमियों का पीप पीने को दिया जाएगा। जज़ाउं विफाका, जैसी करनी वैसी भरनी है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने यहां पर तर्जमा किया, जैसे को तैसा बदला। जज़ाउं विफाकन, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, बेशक ये वो लोग थे कि जो हिसाब की उम्मीद न रखते थे। कभी इन्होंने इस तरह सोचा ही नहीं कि हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर हिसाब देना है। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, खूब हमारी आयतों को उन्होंने झुटलाया। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और हमने हर चीज को किताब में लिख रखा है। नामाए आमाल में इनकी हर सोच, हर ख्याल, हर गुफ्तगू, हर अमल लिखा हुआ है। फज़ूकू, बस उनसे फरमाया जाएगा अब जहन्नम का मजा चखो। फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, बस हम तुम पर सिर्फ और सिर्फ अजाब में इजाफा करेंगे। कुरान पाक का उस्लूब है कि जहां जहन्नमियों का जिक्र हो वहां जन्नतियों का जिक्र किया जाता है, और दर्श दिया जाता है कि दोनों में से जो राह तुम्हें इख्तियार करनी है वो इख्तियार करो। इन लिल मुत्तकीन मफाजा, देखिए यहां पर मुत्तकीन के अल्फाज हैं, और मुत्तकी की तारीफ आप सुन चुके। मुत्तकी कहते हैं अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह के अजाब से डरने वाला, और अल्लाह के अजाब से डरने वाला वो होता है जो गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर ले और एक पाकीजा और अच्छी जिंदगी गुजारे। इन लिल मुत्तकीन मफाजा, बेशक मुत्तकियों के लिए कामयाबी की जगह है वो जन्नत है। हदाइक व अनाबन, जन्नत में बागात हैं और अंगूर हैं। व कवाइब अतराबा, जन्नती औरतें और हूरे हैं जो जवान हैं और हम उम्र हैं। व कसन दिहाकन, और छलकते हुए जाम हैं जो शराब तहूर के जाम है। ला यस्मऊन फीहा लगवं वला किज़्ज़ाबा, जन्नत में वो कोई बेहूदा बात न सुनेंगे और ना ही कोई झुटलाना। मोहब्बतें उल्फतें जन्नत में होंगी। जज़ाअम मिन रब्बिक अता'अन हिसाबा, तेरे रब की तरफ से ये निहायत काफी अता है, बेहतरीन सिला है। किसके लिए? लिल मुत्तकीन के अल्फाज हैं। अगर ये चाहिए तो मुत्तकी बन जाइए। ए अल्लाह, तो हम सबको मुत्तकी बना दे। ये अता उस रब की तरफ से है जिसके यहां कोई कमी नहीं है। जब वो सिला देगा, जब वो अता फरमाएगा, तो वो नेमतें देगा। तुम उसकी शान को सोचो जब वो अजीम परवरदिगार फरमाता है अताअन हिसाबा। ये अता बहुत अता होगी। जब रब्बुल आलमीन बहुत अता फरमाएगा तो वो कैसी अता होगी, इसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रब्बिस समावाति वल अर्दी, आसमानों जमीन का रब है। वमा बैनहुमा रहमान, और जो कुछ आसमान और जमीन के दरमियान है उसका भी रब अल्लाह है। अर रहमान, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला मेहरबान है।

يملكون منه خطابا, कोई मालिक नहीं होगा उससे बात करने का, किसी में ताकत न होगी कि कोई उससे कलाम कर सके. यौम यकूम रूह वल मलाइकतु सफा, जिब्रील अमीन और फरिश्ते सब बांध कर खड़े होंगे. ला यतकल्लमूना, कोई उससे कलाम न कर सकेगा. लेकिन आगे फरमाया इल्ला मन अदीन लहुर रहमान, मगर जिसे अल्लाह ताला इजाजत देगा वो कलाम कर लेगा. तो एक भाई ने मुझे बताया कि एक मस्जिद से स्पीकर से, बैरूनी जो बाहर के स्पीकर हैं, वहां से आवाज आ रही थी और कोई तकरीर करने वाला इस तरह तकरीर कर रहा था कि अरे अंबिया हो, औलिया हो, फरिश्ते हो, सब कांप रहे होंगे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक. यौम यकूमु रूह वल मलाइकतु सफ्फा ला यतकल्लमूना, वो कलाम नहीं कर सकेंगे, वो कलाम नहीं कर सकेंगे. उन्होंने कहा पूरी तकरीर में वो इस आयत पर जोर देते रहे. उस भाई ने बताया मैंने खड़े रहकर ये सुना कि आगे वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, लेकिन अफसोस इन्होंने आधी आयत पढ़ी, क्योंकि आगे पढ़े तो इनका अकीदा, जो गलत अकीदा है, वो टूट जाता है. खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं. अल्लामा इकबाल ने ऐसे लोगों के मुतालिक कहा, अरे कुरान ने जब कह दिया इल्ला मन अदीन लहुर रहमान, शफात वही कर सकेगा जिसे अल्लाह का इज्न होगा. तो औलिया और अंबिया को अल्लाह ताला इज्न अता फरमाएगा, और शफात का इज्न किसे दिया जाएगा? वकाला सवाबन, ये वो होगा जिसने जिंदगी में दुरुस्त बात कही होगी. तो हर मुत्तकी शख्स को अल्लाह ताला शफात का इज्न देगा. हाफिज भी शफात करेंगे, शोहदा भी करेंगे, हाजी भी करेंगे, आलिम भी करेंगे, नेक शख्स भी शफात करेंगे, लेकिन शफात कुबरा का दरवाजा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खोलेंगे. तो कुरान पाक के जरिए अकायद बनाए जाएं, ये नहीं कि अपना अकीदा पहले बना लिया जाए फिर कुरान की आयतों को तोड़ मोड़ कर उस अकीदे की तायीद की जाए. तो ये कुरान के माना को बदलना है. ज़ालिकल यौमुल हक, यही फैसले का दिन है, हक दिन है, सच्चा दिन है. इतनी बातें बता दी गई है लोगों, ए कुरान पढ़ने वालों, ए कुरान बयान करने वालों, तुम्हारे लिए दो राहें हैं, या तो जहन्नम की राह पकड़ो या अपने रब की मार्फत की राह पकड़ो. फमन शाअत्तखज़ इला रब्बिही मआबन, बस जो कोई चाहे वो अपने रब की तरफ ठिकाना हासिल कर ले और रब का कुर्ब पाले और नेकियों भरी जिंदगी गुजारे. इन्ना अंजरनाकुम अज़ाबन करीबन, बेशक हम तुम्हें उस अजाब से डराते हैं जो करीब आने वाला है. यौम यन्ज़ुरुल मरउ, उस दिन आदमी ये देखेगा, मा क़द्दमत यदाहु, जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेजा. हर नेकी और बुराई उसके सामने होगी. वयकूलुल काफिरु या लैतनी कुंतु तुआबा, और काफिर कहेगा उस दिन, हाय मेरी बर्बादी, काश कि मैं मट्टी हो जाऊं. मुफस्सिरीन ने फरमाया कल बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला जानवरों को भी पैदा फरमाएगा, लेकिन वो इंसाफ कायम करने के लिए पैदा किए जाएंगे. एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को सींग मारे होंगे, तो अब ये दोनों उठेंगे तो मामला बरक्स होगा. जिसके सींग थे उसके सींग नहीं होंगे, और जिसके सींग नहीं थे अल्लाह ताला उसे सींग देगा और फरमाएगा अपना बदला ले लो. वो सींग मारकर बदला ले लेगी, फिर ये दोनों मर जाएंगी बकरियां और मट्टी हो जाएंगी. उस वक्त काफिर ये तमन्ना करेगा कि काश मैं भी मर कर मट्टी हो जाऊं. अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत की रुसवाई और शर्मिंदगी से महफूज फरमाए.

आज़म हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बसआदत जिलान नामी इलाके में हुई। आप ऐसे दौर में दुनिया में तशरीफ़ लाए जब उम्मत को इल्म, तक़वा और रूहानी रहनुमाई की सख्त ज़रूरत थी। आपकी ज़िंदगी का आगाज़ ही पाकिजगी, दयानत और अल्लाह ताला की मोहब्बत से हुआ। बचपन ही से आपके अंदर इल्म हासिल करने, हक़ को पहचानने और अपनी ज़िंदगी को दीन के लिए वक्फ़ करने का जज्बा नुमाया रहा। यही वो बचपन था जिसने आगे चलकर एक ऐसी शख्सियत को जन्म दिया जिसे दुनिया गौसे आज़म, महबूब सुबहानी और पीरानी पीर के अलकाब से याद करती है।

इल्म की प्यास आपको जीलान से बगदाद ले आई, ये सफ़र सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ़ एक तालिब इल्म का सफ़र नहीं था,

बल्कि एक ऐसी रूह का सफ़र था जो मारिफत इलाही की तलाश में थी। रिवायत में आता है कि सफ़र के दौरान डाकुओं ने काफिले को रोक लिया और जब आपसे पूछा गया कि आपके पास क्या है तो आपने सच्चाई के साथ बताया कि मेरे पास 40 दीनार हैं। आपकी सच्चाई ने डाकुओं के दिल बदल दिए। ये वाकया हमें बताता है कि सच्चाई सिर्फ एक अखलाक नहीं, दिलों को बदल देने वाली क़ुव्वत भी है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से सबसे पहले नोत्र डाम के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 27 सितंबर 2024 को सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ में सुयाक और मोसलमों घिघी के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 27 सितंबर 2024 को सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन असुविधाओं के लिए सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर शुरू हो जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे चंद विज्ञप्तियाँ सेंट्रल

जहां सवार डुब चुके हैं। हेलो टू ऑल, नमस्कार, सादर प्रणाम और साथ में गुड आफ्टरनून और प्यारा सा आदाब। आप सुन रहे हैं MBC रेडियो मॉरिशस और वक्त है आपके अपने फेवरेट म्यूजिकल प्रोग्राम का, आपकी पसंद प्रोग्राम, और मैं हूँ देविना। और आज का ये 2 घंटों का जो कार्यक्रम है ना, फुल ऑन म्यूजिक, मस्ती, मेमोरीज और साथ में मेलोडीज से भरा सफर है सिर्फ आपके नाम। आपको तो नंबर पता ही है और कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं 4028085 फोन कॉल्स के लिए, और साथ में मैसेजेस के लिए 5251705 5201705। दोस्तों, सैटरडे का मूड हो और म्यूजिक ना हो तो ऐसे चाय में चीनी ना हो।

और अगर आप चाय ले रहे हैं ना तो आप एंजॉय कीजिएगा हमारा ये शो और साथ में चाय की चुस्की, और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अपनी फेवरेट चेयर पर आराम से बैठ जाइए और दिल को कह दीजिए आज टेंशन नहीं, सिर्फ म्यूजिक चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पसंद प्रोग्राम, और ये है हमारी पसंद का गाना कभी अलविदा ना कहना, और साथ में ये गाना जाएगा हमारी जो प्यारी सी पीए है ना, यहाँ पर हमारे साथ हैं, और उर्सा उसके नाम, ये गाना साथ में हमारी जो सहेली है सीताबाई, ये गाना आपके लिए। Thank you.

कैसे हैं आप? बस आपके हमारे जो लिसनर्स हैं कि फॉल्स आ रहे हैं, हम ले रहे हैं और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, सो हम बारी बारी से आपके कॉल्स लेंगे ही ज़रूर। और हम जानते हैं बस आप लोग गाना नहीं मांगना चाहते, हमारे साथ भी गपशप करना चाहते हैं, हम भी गपशप करेंगे आपके साथ। और आज है सैटरडे का दिन 26 सितंबर 26 सितंबर 2026 को, और हो चला है 2:26 और बहुत समय बाकी है अभी के लिए आपका साथ देने के लिए, बस आपकी पसंद प्रोग्राम आप सबों के लिए। क्या हो रहा है आज सैटरडे? और कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में बस हल्की सी जो हल्का सा बादल है, और कुछ इलाकों में हल्की धूप है। जब आप जहां भी हो बस हमारा साथ दीजिएगा। बी हैप्पी मेरे दोस्त, एंजॉय लाइफ। और जो अगला गाना है जो ना, वो रफ़ी साहब की आवाज़ में और साथ में है लता जी, और फिल्म है सम्राट चंद्रगुप्त। और इस गीत की मांग की है सैपिया की आफेज जी, कह रही है मन अनुपमा सीरियल देख रही है, साथ में रेडियो सुन रही है। ये हुई ना बात, क्योंकि कान हमारे साथ और आंखें जो हैं टीवी के साथ। बस जो भी हो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, और आप

या क्या म्यूजिक है आपने पहचान ही लिया होगा, फिल्म है रॉकी। और इस गाने को और लोग पसंद करते हैं, खास तौर पर सैपिया के रविन जी। हेलो रविन जी, हमेशा सुनते हैं हमें रविन, और वे कह रहे हैं हमारे सभी प्रोग्राम सुनते हैं, थैंक यू सो मच दिल से। और ये गाना जाएगा आपकी बहन जो है माला और साथ में मीता। आ देखे ज़रा किस में कितना है दम। फिल्म है रॉकी और आवाज़ें होंगी आशा भोसले जी की, किशोर दा और साथ में और दी बर्मन साहब की।

मत जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मस्ताने आए। किसे खबर चले कहाँ, किसे खबर

जी हत जाओ दीवाना है हत ये मत बस हमारे साथ देते रहे यहाँ पर रेडियो मॉरिशस पर। और ये गाना जो आपने सुना है ना फिल्म सिंगापुर से लिया गया था। और दिल से प्यार भरा नमस्कार आपको गीता जी, आप की ये फरमाइश थी। और ये जाता है स्पेशली खास तौर पर पति रोहित के लिए, तीन बेटों के लिए, तीन बहू हैं साथ में, जो प्यारे प्यारे नाती हैं ना आदित्य, आरव और तनिष। तनिष जो 7 महीने का होने वाला है, और साथ में जो प्यारी सी परी है जानवी, उनके लिए, और साथ में हमारी पूरी टीम के लिए, पूरी MBC टीम के लिए थैंक यू सो मच वो गीता जी। और एंजॉय योर वीकेंड। अगला गाना दीपी ने की है शीला जी, हमेशा हम उन्हें कहते हैं शीला की जवानी, और वे कहती हैं मैं हूँ देवानंद की बेटी देवी।

हाँ जी, तो बस मैं हूँ देवीना, आपका साथ दे रही हूँ 4 बजे तक आपकी पसंद प्रोग्राम में। और पहला गाना हम नहीं ढूंढ पाए, मगर जो बहू वाला गाना है ना, मूवी का गाना है, तो ठंडी हवा हवाओं में गीता दत्त की आवाज़ में साथ में है तलत महमूद साहब। तो बस ये गाना आपके लिए खास तौर पर शीला जी।

ये गाना में बग के विश्वानंद जी के लिए साथ में है उनकी जो उनके साथ हैं सुहंती जी, राजीव, अमित, शीतल, आशु, कृषिका, विशाल, स्वीति, हरवेश, उनके खास दोस्त विष्णु कटाधर, साथ में उनकी जो बहन है बिंदु काली चंद। और ये गाना हमें ले जाएगा 3 बजे के समाचार की ओर।

0: सुनते समाचार आस्था जी के साथ, नमस्कार।
1: नमस्कार। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मॉरिशस ने छोटे टापू देशों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार और नई तकनीकों पर बात की। उन्होंने फिलिस्तीन, शागस और ट्रोमलिन का मुद्दा भी उठाया। अपनी आगामी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल से मिलेंगे। बातचीत में शागस समझौते पुष्टि से जुड़े हाल के घटनाक्रम पर चर्चा होने वाली है। ये जानकारी कल कैबिनेट के फैसलों में दी गई। प्रधानमंत्री ने 21 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से फोन पर बात की थी। शागस समझौते पर 22 मई 2025 को हस्ताक्षर हुए। इसकी पुष्टि के लिए ब्रिटिश संसद में एक बिल पारित होना था। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को लेकर आपत्ति जताई है। न्यूयॉर्क में ब्रिटिश विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद धनंजय रामफल ने कहा कि ब्रिटेन, मॉरिशस और अमेरिका तीनों के लिए स्वीकार्य समाधान तलाशने की इच्छा ब्रिटिश सरकार ने दोहराई है। मॉरिशस सरकार के अनुसार शागस पर मॉरिशस की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं है। अब पशुओं के आयात से जुड़ी ये खबर। नामीबिया में फुट एंड माउथ डिजीज का मामला सामने आने के बाद मॉरिशस ने वहां से मवेशियों का आयात रोक दिया है। कार्लसबर्ग के एक व्यावसायिक फार्म में जिन 11 मवेशियों में बीमारी के लक्षण दिखे थे, उनमें से 10 की जांच 23 सितंबर को पॉजिटिव आई है। दक्षिण अफ्रीका के बाद नामीबिया दूसरा देश है जहाँ से मवेशियों के आयात के परमिट निलंबित किए गए हैं। फिलहाल केन्या ही ऐसा देश है जहाँ से मवेशियों के आयात को पशु चिकित्सा सेवाओं की मंजूरी है। पोर्टलुई में 19वां चाइना टाउन एंड कल्चर फेस्टिवल आज से शुरू हुआ है। 2 दिन के इस आयोजन में चीनी खान पान, संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। आयोजकों के अनुसार इस साल 18 ग्रुप भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में ड्रैगन डांस, संगीत और दूसरी प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। यूक्रेन रोड रोजिल में 83 साल

0: Ramaki, 83 years old ki Mrs. Kalindi Ramisar. Mrs. Kalindi Ramisar ki mrityu ho gayi hai. Paidaish naam Amrit. लोग उन्हें मीनू के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज शाम के चार बजे उन्हें के मकान रोजल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाया जाएगा. क्रिमेशन टुडे एट 4 PM. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस.

0: जतिन बजकर 3 मिनट हुए हैं। सैटरडे का दिन है 26 सितंबर और सीबी की ओर से कम्युनिके सुनिएगा। सीबी अपने ग्राहकों के को सूचित करता है कि जरूरी मरम्मत कार्य के चलते कल जो है रविवार 27 सितंबर 2026 को इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सैंतक्वा के इलाकों में आले पेलावाल, इजोडो बुके, सेंट मारी, एम्पोंटेर, लाकोनू और साथ में सैंतक्वा रोड, जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएगा बिजली की सप्लाई फिर से जारी की जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो बस ये था सीबी की ओर से कम्युनिके। हम अपना जो कार्यक्रम है इसको जारी रखते हैं। आपकी पसंद प्रोग्राम
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

जहाँ मोहब्बत है मोहब्बत है ये तो खींच लाती है हमको आपकी ओर। हम देख रहे हैं मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं, सो चलाने की पूरी कोशिश करेंगे आपके पसंद के गानों को, नहीं तो किसी गाने में नाम जोड़ देंगे आपका, मगर डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। बस अभी के लिए ये है, सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगाती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। ये बस इस प्यारे जो इस प्यारे लव्स है ना, ये इट्स फ्रॉम ए ब्यूटिफुल सॉन्ग, और ये जो गाना है रफ़ी साहब की आवाज़ में है सावन के महीने में, और ये गाना जाएगा ख़ास तौर पर नंदलाल जी की मांग पर, वाकवा से है, सभी दोस्तों के लिए, सभी लिसनर्स के लिए। नंदलाल जी, एन्जॉय दिस वन फॉर यू।

जा मस्त मगन जियो, वरना चिंता, जैसे कहते हैं ना, चिंता जो है चिता तक ले जाती है, मस्त मगन होके बिंदास जियो। और जिंदगी को बिना प्यार कैसे कोई निभाए, कैसे कोई चलाए, कैसे कोई जिए, बस ये गाना सुनते जाइए। जी हाँ, मॉडल अरबिया की जो है अनीता जी, प्यारे से अनीता जी नमस्कार। करुणा के लिए, अमृता, फॉर वर्षा, सभी दोस्तों के लिए, सभी परिवार के लिए, हाँ मैंने भी प्यार किया है मूवी का गाना कुमार सानू साहब की आवाज़ में, साथ में है सारिका। तो बस इस गाने को आप एंजॉय कीजिएगा, प्यार बांटिए, प्यार मिलेगा। आपके पसंद प्रोग्राम देवीना के संग 4 बजे तक।

जहाँ 3:20 हुए हैं और एक अब वक्त है एक प्यारी सी डेडिकेशन का। अगर आपके दिल में कोई खास शख्स हैं, कोई दोस्त हैं, कोई फैमिली मेंबर हैं, कोई पुरानी याद, तो ये गाना उनके नाम कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो गाना है बहुत ही खास है। नितिन मुकेश साहब की आवाज़ में, साथ में लता जी, फिल्म क्रांति। कभी कभी एक गाना वो कह देता है जो हम खुद कह नहीं पाते, कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं सिर्फ एक मेलोडी से कह दी जाती हैं। और ये जो गाना है ना, इसमें बहुत दर्द है, बहुत प्यार है, जिंदगी की ना टूटे लरी। और इस गाने की मांग की है हमेशा की तरह प्यारी प्यारी सी आवाज़ में रिवे जोंपो की, माला जी अफसोस वो कुछ बीमार हैं, माला जी टेक केयर, गेट वेल सून। और ये गाना जाएगा केविन, किरण, कनील, कविश, कबीर, साथ में है सत्यम और शिव के लिए।

जहाँ जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, और ये गाना जो है सबसे पहले हम आप ये जो गाना है ना मौसी जो है माला जयवंती जी और उनकी जो बेटी है रीमा पुतोदोविला से है, और ये गाना उन्होंने मांग की है। मुश्किल समय है, उन्होंने अपने जीजा जी सुनील गामकुलिया को खोया है, सो बस उनकी याद में और ख़ासतौर पर उनकी जो बहन है सुनीता और उनका उनके जो निफ्यू हैं आकाश जिन्होंने अपने पापा को खोया है, सो आप सबों को बों कुराज, ईश्वर आप सभी को शक्ति दें इस मुश्किल समय में, उन की आत्मा को शांति दें, और बस आप लोग हताश मत होइए, ज़िंदगी बहुत लंबी है, अपनों का साथ जब हो एक दूसरे का साथ दीजिएगा। तो ये गाना आपके लिए जो है माला जी।

जहाँ इस गाने में हम नाम जोड़ते हैं, यहाँ पर जो है शहनाज फ्रॉम बकवा और उनकी जो प्यारी सी मम्मी है उनकी याद में, शहनाज जी बॉन कुराज, ये गाना आप

0: आशा जी साथ में रफी साहब की आवाज़ों में ये गाना जाएगा, सुदेवी जी अवाक्वा। गुड आफ्टरनून आपको भी, और एंजॉइंग योर प्रोग्राम एज यूजुअल। ये जो है ट्रियोले की दीदी ललिता, कुशल फैमिली, दीदी सुनीता, देवीना, माला, बिंदु, मलेंगा के अनुषा, किरण एंड और रामरतन, कुवारो, रघुबर, जालू फैमिली, ये गाना आपके लिए। और फिल्म है हाँ जी काला पानी।
1: छोड़ो हाथ छोड़ो,
2: देखो दिल न तोड़ो,
1: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
2: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
1: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

हाँ जी समझे कि आप लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए। हाँ जी आपके पसंद प्रोग्राम तो आपके लिए ही है, बस प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी समय की कमी हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं हमारा फ़ोन नहीं ले बैठा हुआ। नहीं, ये प्रॉब्लम है कि सभी के फ़ोन आते हैं, एक एक करके फ़ोन लेते हैं, तब तक आपके फ़ोन कट जाते हैं। तो बस कोशिश करते रहें और हमेशा हम आपका साथ देते ही रहते हैं और गाने चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपके पसंद प्रोग्राम देविना के संग आज है, और वैसे जैसे आज की सैटरडे है, सैटरडे आफ्टरनून का अपना ही चार्म होता है ना, ना मंडे की जल्दी है ना वीकेंड का प्रेशर, बस एक रिलैक्स मूड, एक कप चाय और आपकी पसंद। तो मॉरिशस के किसी कोने में भी हो प्यारे लिसनर्स, आयरलैंड के हर घर तक हमारी आवाज़ अगर पहुंच रही है तो आप सभी को हमारा सलाम है। और आफ्टर मॉरिशस अगर आप लोग किसी और दूसरे देश में हैं और हमारा साथ दे रहे हैं तो आपको ढेर सारा प्यार हमारी ओर से, और हमारा साथ देते रहे ऐसे ही एमबीसी रेडियो मॉरिशस। और अब एक अलग सा मूड बनाते हैं, और ये जो गाना है नदीम का गाया हुआ है, आपको पता है नदीम श्रवण वाला जो दिव्य संगीतकार है, जोड़ी संगीतकार है, इसमें नदीम ने एक एल्बम निकाला था और इसी एल्बम में एक प्यारा सा गाना है, प्यार हुआ था कॉलेज में। और इस गाने को बहुत दिनों से सुनना चाह रही थी हमारी जो श्यामा रघुनंदन जी हैं गौगुप से, और इस गीत की मांग उन्होंने की है। तो श्यामा जी सराखों पर आपका जो रिक्वेस्ट है, तो उनके जो भाई साहब हैं जयप्रकाश के लिए, भाभी हैं नम्रता, केशव, युधिष, साथ में उनकी सहेलियां हैं वीना रामफल, विश्वानी दुखी, नंदिनी ओकलू, और साथ में उनकी जो प्यारी सी बहन है वैजयंतीमाला जी, वो बेल्जियम से आई हुई है मॉरिशस। तो एन्जॉय योर हॉलीडेज डियर, एंड ये गाना हमारे लिए भी खास तौर पर। थैंक यू सो मच।

इसे कहते हैं मन भावन गाना, और ये गाना जो है ना, इसे ये ले गया हमें कॉलेज के दिन, यूनिवर्सिटी के दिन, जब ऐसे ऐसे जो कारनामे हुआ करते थे और सचमुच प्यार हुआ करता था, चिट्ठियों द्वारा। मैसेजेस तो नहीं थे उस समय, मगर किसी न किसी के हाथ कुछ न कुछ पैगाम भेज ही दिया करते थे। बस ये था वो ज़माना, और आज है ये ज़माना। और आज है सैटरडे 26th of September, और आज जब उसे हम लोग मना रहे हैं पूर्णिमा, तो ऐसे में ये जो गाना है नमस्ते जी, ये हैं फिको फ्लक्स से अनीता जी, और आज पूर्णिमा है, तो ये गाना हम दिल दे चुके सनम वाला जो मूवी है उससे, ये चांद छुपा बादल में। हाँ जी, रोमांटिक मूड में आ गए हैं। तो सभी फ्रेंड्स फैमिली और हमारे लिए भी थैंक यू सो मच, हमारी रेडियो टीम के लिए थैंक यू अनीता जी।

जो आप सुन रहे हैं आपके पसंद प्रोग्राम और मैं हूँ देविना आपका म्यूजिकल कंपेनियन। दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सबके पास हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रॉब्लम के बारे में सोचना नहीं होता। कभी म्यूजिक लगाइए, थोड़ा मुस्कुराइए और दिल से कहिए, जो होगा दिखा जाएगा। फिलहाल तो

गाना बजने दो और जिंदगी दो पल की है, बस क्या हो कल पता नहीं। ये गाना जाएगा, अगला गाना जो है फ्रॉम द मूवी काइट्स, और खास तौर पर हमारे रोमांटिक बाबू जो हैं, रोमांटिक जो हमारे हरीश बाबू हैं बुबासे से, ये गाना आपके लिए खास तौर पर और आपके खास दोस्त के लिए।

जिंदगी दो पल की, हर पल आप जी लें। और ऐसे में उदय जी हैं रिवे जी पर से, हमसे बात की है। उदय जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। और हालांकि आप समझ गए कि इस समय हम कोई और गाना नहीं ले पाएंगे, कोई और रिक्वेस्ट, इसलिए इस गाने में आपका नाम जोड़ देते हैं। और जिंदगी दो पल की कभी ना कभी मुलाकात होगी ही, नहीं तो बात होगी ही फ़ोन पर। सो अगला गाना जो है ये होगी किशोरदा की आवाज़ में, चोर मचाए शोर। जी हाँ, शुभा और पॉम्पली मुसिस, ये गाना आपके लिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: जी हाँ, सीबी की ओर से कम्युनिके सुनिएगा। सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्य के चलते प्लेन दे जैसिनी, फ्लाक और साथ में मौसलमान बीओएस प्लेन दे जैसिनी, सिम्स, लाक्यूर, सीडब्ल्यूए और साथ पास में है ईगल क्लिनिक के आसपास में जो है कल रविवार 27 सितंबर 2026 को सवेरे से के 8:15 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्य चलने वाला है और मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई में फिर से जारी कर दी जाएगी। ये था सीबी की ओर से एक कम्युनिके आप सभी के लिए और सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: जी हाँ, ये रहा आपकी पसंद प्रोग्राम का अंतिम गाना और आपने साथ दिया इतने प्यार से, हम आपको दिल से धन्यवाद कहते हैं और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी में म्यूज़िक का सुर हमेशा बनाए रखिए। MBC रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े रहिए और मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। कल मिलते हैं 12 बजे से 3 बजे तक और RM Free रेडियो मनोरंजन पर। प्रोग्राम होगा सुहाना सफ़र और हमारे बाद आ रही है अंजू जी लेकर साहित्य दर्पण। तो फिर मिलते हैं, बाय। आपका जो सैटरडे हो शुभ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सहित हो जाएं जब दो मन, साहित्य का तब हो सृजन, संवेदनाओं को दे आधार, साहित्य जोड़े दिलों के तार। साहित्य दर्पण श्रीमती अंजू गर्भरन की प्रस्तुति में
2: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आप सुन ही चुके हैं, साहित्य दर्पण। आज हमारे साथ जो अतिथि आए हैं उनकी ये तीसरी पुस्तक मॉरिशस में लोकार्पित हुई है। पिछली जो पहली पुस्तक थी वे 20 सितंबर 2025 को डोडो और अन्य कहानियाँ, फिर 23 सितंबर को एक और लोकार्पण हुआ हाल ही में बुधवार को, कैस्ट्रेल और अन्य कहानियाँ। और जो जिस पुस्तक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विश्व हिंदी सचिवालय में 8 सितंबर को इसका विमोचन हुआ, जो कि है सोलिटेयर और अन्य कहानियाँ। श्रोताओं अब आप जान ही गए होंगे क्योंकि ये इस कार्यक्रम में पहले भी आ चुके हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में इनकी कहानियाँ, नाटक पर चर्चा, हिंदी दिवस पर चर्चा, इनको आप अनेकों अनेकों बार मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग के किसी न किसी चैनल पर सुनते ही रहते हैं। जानी मानी हस्ती, ICCR हिंदी पीठ, महात्मा गांधी संस्थान में कार्यरत है और ये है डॉक्टर राजशेखर जी। गुरुजी आपका हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
3: आपका हार्दिक आभार मैम, और प्रिय श्रोतागण आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मैं।
2: अभी हमारे साथ टेक्निकल सहयोग दे रहे हैं आप तक ये कार्यक्रम पहुँचाने में। और जिस पुस्तक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, मैंने उसका नाम तो आपको बताया ही, सोलिटेयर और अन्य कहानियाँ। इस पुस्तक में 58 पृष्ठ हैं, 6 कहानियाँ हैं। 6 कहानियों के नाम बताऊँ तो पहली कहानी है सोलिटेयर, दूसरी है उड़ने वाली लोमड़ी, तीसरी है गिरमिटिया, उसके बाद डोमिनो, उसके बाद है सपनों की उड़ान और अंतिम छठी कहानी जो इस पुस्तक में है, अष्टभुजा धारी। तो ये 6 कहानियाँ हैं जिस पर आज हम छोटी छोटी चर्चा करेंगे, पर इन 6 कहानियों को अत्यंत रोचक

0: ज्ञान से भरपूर, प्रकृति के सौंदर्य, मानवीय संवेदना, कठोर सत्य एवं बच्चों के लिए अनेक जानकारियों से भरपूर बाल साहित्य संग्रह, जो कि मॉरिशस में बहुत कम लोग लिखते हैं। बाल साहित्य की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जड़ भाषा की हो, पकड़ किसी भी अन्य विषय की हो, वो कहानियों के माध्यम से ही होती है। जो प्रलेख प्रकाशन से नई दिल्ली से छपी है, और इस पुस्तक में की साज सज्जा भी प्रलेख स्टूडियो द्वारा ही हुई है। पूरी पुस्तक में ग्लेज्ड पेपर अर्थात चिकने कागज़ का प्रयोग किया गया, इसलिए वे बहुत ही उसकी तस्वीरें भी बहुत आकृष्ट बनती हैं, और साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए तस्वीरों के कारण और आकर्षित करती हैं। कहानियों में रोड्रिग्स, मोगिस और अन्य जगह प्राकृतिक सांस्कृतिक पहलुओं पर भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। मैं कहाँ बताने जाऊँगी, साक्षात हमारे सामने गुरुजी बैठे हुए हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। पर मैं आपको इस पुस्तक के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि मॉरिशस के पाठकों तक आपने इतनी सारी जानकारियाँ पहुँचाने का एक भगीरथ प्रयास किया है, क्योंकि बच्चों के लिए सामग्री ढूँढना, उनको जैसे कि कहा जाता है रात में कहानियाँ सुनाना, तो वही 5-6 कहानियाँ जो प्रचलित हैं, एक कौवे की है, कछुए की है, वही है। पर आपने इन 6 कहानियों के माध्यम से बहुत आकृष्ट और बहुत सुंदर सामग्री हमारे पाठकों तक पहुँचाई है, जो कि वे अभिभावक हों तो वे अपने बच्चों तक पहुँचा सकते हैं, या पुस्तक को खरीदकर अपने बच्चों को भेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि पुस्तक से अच्छी भेंट कोई नहीं हो सकती है। गुरुजी, अब मैं जानना चाहूँगी कि सोलिटेयर कहानी जो आपने चुनी, सबसे प्रथम कहानी है इस पुस्तक में, तो मुझे लगता है कि आप रोड्रिग्स गए, वहाँ पर आपने बहुत सारी जानकारियाँ देखी भी हैं और जानकारियाँ एकत्रित भी की हैं, तभी आपने ऐसी सुंदर रचना हमारे पाठकों के लिए तैयार की। क्या कहते हैं, आपकी रोड्रिग यात्रा का कमाल है या कुछ अन्य मतलब खोजपूर्ण कार्य आपने लाइब्रेरी से एकत्रित किए, या कि आजकल तो गूगल चाचा हर जगह उपस्थित हैं, वहाँ से ली गई?
1: जी माँ, आपका बहुत आभार मैम कि आपने जो है मुझे इस कार्यक्रम में दोबारा मौका दिया है,
0: ये हमारा सौभाग्य है
1: जी। और पुनः जो है अपने पाठकों से, दर्शकों से, और जो श्रोतागण हैं जो हमें लगातार सुनते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, उनसे जुड़ने का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। में मनुष्य जो होता है वह बहुत ही खोजी प्रवृत्ति का होता
0: जी।
1: है ना, और इसी कारण से कई बार हमें यह लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो जो बच्चे होते हैं वे भी खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि उन बच्चों के सामने ऐसी सूचनाएं होनी चाहिए जिसके में वे रुचि लें।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वे पंचतंत्र और हितोपदेश के समय के बच्चे नहीं हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आज के बच्चे मोबाइल युग और आप देखेंगे कि गैजेट्स की दुनिया में, और तो आप तो AI की बात हो रही है
0: जी, बिल्कुल।
1: उस समय जब ऐसे बच्चों के लिए जब हम कहानी लिखते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम कहानी में कौन सी घटनाओं को लाएं, कौन से कथानक उनको प्रस्तुत करें, यह एक चुनौती है। जैसा कि आपने कहा,
0: रोचक बन पाए
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि मॉरिशस हो या रोड्रिग्स हो
0: जी,
1: यह अपने आप में रोचकता से भरा हुआ सुंदर टापू है, देश है, इतनी कहानियां हैं और इतने विचित्र विचित्र जीव हैं जो पूरे विश्व में अलग प्रजाति,
0: बिल्कुल,
1: जो विलुप्त हो गए और जो अभी विद्यमान हैं,
0: आज एक्सटिंक्ट शब्द का पर्यायवाची मानते हैं दो को
1: जी, बिल्कुल।
0: तो इसी प्रकार यहाँ पर कितनी चीजें हैं जो कि हम अपने बच्चों को अभी तक नहीं उनकी पहचान करवा पाए हैं। आपने ये सुंदर प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए
1: तो मैं

0: बाल साहित्य की रचना क्यों जरूरी है, सबसे पहले मैं इस पर बात करना चाहूंगा।
1: अवश्य
0: जी, बाल साहित्य बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास में एक दर्पण की तरह कार्य करता है, जो उनकी कल्पनाशीलता को असीम आकाश प्रदान करता है। जब बच्चे कहानियों के माध्यम से जुड़ते हैं तो जटिल और पर्यावरणीय, वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक विषय उनके लिए अत्यंत सहज और बोधगम्य हो जाते हैं। और यही कारण है कि जब मैं बच्चों के लिए कहानी लिखता हूँ तो हमेशा यह ध्यान रखता हूँ कि वे कहानियाँ केवल मनोरंजन तक सीमित ना रहे, बल्कि प्रकृति, विलुप्त होती प्रजातियाँ और अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति भी बच्चे संवेदनशील बन सकें। कहानियों के पात्र जो हों वो बच्चों के अंदर करुणा, साहस और सृजनात्मक सोच बढ़ाएं। जब एक बच्चा किसी कहानी के माध्यम से किसी जीव की पीड़ा या पर्यावरण के संकट को महसूस करता है तो उसके भीतर एक जिम्मेदार नागरिक का जन्म होता है। इसलिए बाल साहित्य बच्चों की संवेदनाओं को परिष्कृत कर उन्हें बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित भी करता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जरूरी है कि बच्चे जिस परिवेश में पैदा हुए हैं उस परिवेश में बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जिसको कहानी के अंदर उन सूचनाओं को लाना चाहिए। जी, जब मैं यहाँ पर आया पहली बार
1: जी,
0: तो मैं भी छोटे बच्चों की तरह मैं आश्चर्य में पड़ गया। अरे, डोडो होते थे, सोलिटियर होते थे और बड़े बड़े तोते होते थे, वो छोड़ दीजिए, समुद्री गाय होते थे, लेदर बैग कछुए होते थे, कहाँ गए वे सब।
1: बिल्कुल
0: अद्भुत। और जो हैं उड़ने वाली लोमड़ी जिसको बादुर बोलते हैं
1: जी,
0: फ्रूट बैट्स, और इतना ही नहीं केस्ट्रेल, इतनी सुंदर सुंदर जो हैं जीव जंतु हमारे आसपास हैं। फिर
1: पिंक पिजन है
0: जी। फिर मैं जब गया, जब यहाँ क्रोकोडाइल पार्क गया तो वहाँ पर मुझे एक कछुआ मिला जिसका नाम है डोमिनो, 100 साल का, सबसे वृद्ध कछुआ वही है। जब मैं सोलिटियर गया तो मुझे वहाँ एक कछुआ मिला, लियो, 90 साल का है। तो जब इस तरह की सूचनाएं मुझे मिलती हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे चरित्र को अपनी कहानी में जरूर लाए,
1: अवश्य लाए। बिल्कुल।
0: जब मैंने गुलाबी कबूतर के बारे में सुना और यहाँ बच्चों से जब मैंने बात की तो उन्हें पता ही नहीं था। एक समय था कि जब गुलाबी कबूतर 10 की भी संख्या में नहीं थे।
1: बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ द्वारा उनको संरक्षित
0: जी 1990 के आसपास, और अब उन्हें संरक्षित किया गया। तो मेरा उद्देश्य होता है कि जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति है और साथ ही साथ जो विरासत है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि ग्रिमिटिया समाज के बारे में, ग्रिमिटिया का क्या इतिहास रहा है, इन सभी के बारे में उनको पता ही नहीं है।
1: ग्रिमिटिया शब्द ही कैसे बना
0: जी,
1: उन्हें जानकारी नहीं
0: जी,
1: है।
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: तो आप देखेंगे कि जो भाषा है वह केवल संवाद या साहित्य का माध्यम ही नहीं होता, बल्कि यह किसी भी समाज की अस्मिता हुई, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की संवाहक होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो हिंदी भाषा में केवल भावनात्मक और मार्मिक अभिव्यक्तियां ही नहीं की जा सकती, बल्कि आधुनिक विज्ञान, पर्यावरण है, अंतरिक्ष और तकनीकी विकास को भी बयां करने की असीम क्षमता है। यानी हिंदी भाषा जो है ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का भी एक माध्यम है, कोई भी भाषा हो, जैसे फ्रेंच है, अंग्रेजी है या और भी जो भारतीय भाषाएं हैं, किसी भी भाषा में हम ये चीज़ हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब आप सोलिटियर कहानी के बारे में आपने पूछा।

0: अच्छा,
1: जी
0: अब मैं उस पर आना चाहूँगा कि जब मैं रॉड्रिक्स गया तो मुझे एक अंदर से जिज्ञासा हुई कि देखें कि यहाँ पर क्या क्या है। रॉड्रिक्स एक छोटा सा द्वीप है और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही स्वच्छ, शांत और बहुत ही सुंदर आइलैंड है, टापू है। अब कल जैसे हम कल्पना में सोचते हैं कि इस तरह की कोई जगह हो सकती है,
1: बिल्कुल,
0: तो वैसी ही जगह जो है रॉड्रिक्स है।
1: अगर आप इंटरनेट काट दे वहां पर आप एक अलग ही दुनिया में हैं।
0: अलग ही दुनिया, जैसे लगता है कि थम्स आ गया है।
1: बिल्कुल
0: तो जब मैं वहाँ पर गया और समुद्र में आप देखेंगे कि नीले रंग और हरे रंग के जो ये समुद्र हैं, उसमें कितने कलर हैं, कितने
1: बिल्कुल,
0: रंग हैं,
1: बहुत
0: रंग के
1: से
0: कितने शेड हैं। कहते हैं कि आँखें जब बहुत दूर तक, क्षितिज तक देख पाती हैं, तो हमें हृदय में जो महसूस होता है उसकी हम कल्पना नहीं कर
1: कल्पना
0: सकते।
1: नहीं कर सकते। वो आप
0: अद्भुत।
1: तस्वीरें खींच भी लाए पर जो अनुभव आपने वहां साक्षात किया है वो अलग ही अनुभव है।
0: बिल्कुल। इतना ही नहीं, जैसे लगता है कि रॉड्रिक्स आइलैंड में जो आपका वो लेगुआ रिजर्व पार्क है, जब आप वहाँ जाएंगे, लगभग 10,000 कछुए हैं।
1: जी
0: कछुए की 3 प्रजाति आपको देखने को मिलती। और जब आप गुफा में प्रवेश करेंगे, यदि आप बड़े जब प्रवेश करते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है और रोमांच से हम भर जाते हैं कि कैसी दुनिया है कि एक एक बूंद से जो है लाइम के जो वो पूरी प्रतिमा जो बनती है, सैकड़ों साल लगते हैं
1: बिल्कुल
0: उस आकृति को बनने में। अद्भुत है प्रकृति का जो ये सौंदर्य है, अद्भुत है। तो जब मैं गया और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर थे जो बता रहे थे सब कुछ, देखा कि मैंने सोचा कि ये तो बच्चों के लिए अद्भुत जो है ये कहानी का एक प्लॉट है, कथानक है।
1: कथानक है।
0: इस प्लॉट पर तो एक कहानी बच्चों के लिए बनती है जिसके द्वारा वे पूरा जान सकें कि सोलिटियर क्यों विलुप्त हुआ, उसके पीछे क्या कारण था।
1: कारण रहा
0: इतनी तो कहानी बहुत ही रोचक बनी है। यदि हमारे श्रोतागण उसे कभी उनको पढ़ने का मौका मिले तभी वो महसूस कर पाएंगे। और मैंने अपने कार्यक्रम में जो है सोलिटियर पर कहानी मैंने प्रस्तुत भी की थी, तो हमारे कई श्रोतागण ने उस कहानी
1: सुन चुके
0: को
1: हैं।
0: सुन चुके हैं। सोलिटियर कहानी हिंद महासागर के सुंदर रॉड्रिक्स द्वीप और वहाँ की विलुप्त हो चुकी प्राकृतिक संपदा और रहस्यमयी दुनिया पर आधारित है। कहानी की शुरुआत जो है एक एमिलिया नामक छोटी बच्ची से होती है जो अपने माता पिता के साथ रॉड्रिक्स द्वीप के प्रसिद्ध फ्रांसवा लेगुआ रिजर्व पार्क में घूमने आई है और वहाँ चूना पत्थर की गुफाओं, जो कावेन पातात जो जगह
1: बिल्कुल
0: है, को देखने के लिए ये पहुँचे हैं। गुफा के भीतर जो गाइड है एलिजाबेथ, पर्यटकों को वहाँ की अनोखी आकृतियों, जिसको कि हम स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट कहते हैं, के साथ साथ एक समय यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले विलुप्त और अनोखे पक्षी जो सोलिटियर है उसके बारे में वह जानकारी देती है। गुफा के घने अंधेरे में एमिलिया एक जादुई दुनिया में प्रवेश करती है। जो भी हमारे श्रोतागण वहाँ गए हैं उनको पता है कि जो गाइड होते हैं वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि अब मैं सब लाइट जो है बंद करने जा रही हूँ, है ना, फिर अब आप उसको महसूस कीजिए। जब सब लाइट
1: बिल्कुल
0: बंद कर देते हैं तो पूरा अंधेरा छा जाता है।
1: जी
0: तो उसी में जब एमिलिया जब अंधेरे के बाद जब आँख खोलती है तो वो देखती है कि कुछ है ही नहीं, वो किसी और दुनिया में पहुँच गई है
1: बिल्कुल
0: और वह दुनिया है सोलिटियर की दुनिया, एक जादुई दुनिया। तो अचानक जो है इस कहानी में कुछ रोचकता पैदा होती है जो

0: बच्चों को कहीं ना कहीं आकर्षित करता है एक जादुई दुनिया में प्रवेश करने के लिए,
1: और बच्चे ऐसी चीजों से ही प्रभावित
0: जी
1: होते
0: जी हाँ। तो कहानी है बच्चों के लिए है, तो उसमें फैंटेसी भी है, कल्पनाएं भी हैं, जादू भी है, ये सब नहीं हो यदि कहानी में ये सारी चीजें नहीं होंगी तो बच्चों को मजा नहीं आएगा। तो मैंने उसको इस तरह से कहानी का रूप जो है दिया है। और जब वहाँ वो जादुई दुनिया में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसे एक लियो नामक विशाल कछुए से मुलाकात होती है। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो लिगुआ थे उन्होंने तो फ्रांसिस लिगुआ उन्होंने तो लिखा ही है कि वहाँ पर अपनी जर्नी में यात्रा वृतांत में कि वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा कछुए उन्होंने देखे थे जो अब नहीं हैं।
1: आप उस दृश्य को खाली सोच कर देखें कि पूरे द्वीप पर 2000 से अधिक कछुए हों।
0: जी जी जी हाँ, उन्होंने जो वर्णन किया है वो फ्रेंच में किताब है, उसको पढ़िएगा तो देखेंगे कि 100 मीटर तक, जैसे कि फुटबॉल का फील्ड होता है मैदान, तो वहाँ तक जो है कछुए की केवल पीठ ही पीठ दिखाई देती है। जब वो रात में आराम कर रहे हैं या शाम में विश्राम कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हैं, तो ऐसा जो है दृश्य कभी रहा है। और वहीं पर जो एमिलिया है उसे एक तोते, जो बहुत बड़ा तोता है, जितना बड़ा मकाऊ पक्षी है उतना ही बड़ा तोता, तोते से जो है उसकी जो है मुलाकात भी होती है। और वहीं पर उसने जो है सोलिटियर पक्षी को भी देखा, और जो सोलिटियर पक्षी हैं वे जोड़े में रहते हैं और एक दूसरे के प्रति बहुत वफादार हैं, जैसे कि मनुष्य वफादारी निभाता है पति पत्नी के रूप में, उसी तरह वह पक्षी भी जो है एक दूसरे के प्रति बहुत ही वफादार हैं और बच्चों का बहुत ही ध्यान रखते हैं। ये सारी जानकारी जो है उसको वहाँ मिलती है। और इतना ही नहीं, जब कहानी आगे बढ़ती है तो कहानी में यह भी चित्रित है कि मनुष्यों की असावधानी के कारण और द्वीप पर लाए गए बाहरी जानवर जैसे बिल्लियाँ या सुअर, और एक समय ऐसा हुआ कि वहाँ पर मनुष्य की लापरवाही से कहते हैं कि जंगल में आग लग गए, और आग लगने के कारण जो यह खूबसूरत पक्षी जो है इस धरती से सदा सदा के लिए विलुप्त हो गया। और गुफा से जब एमिलिया बाहर आती है तो उसके हाथ में एक छोटा सा अंडे के आकार का एक भूरा पत्थर है। तो ये भी बहुत रोचक भरा है, क्योंकि ये जो भूरा पत्थर है यह सोलिटियर के पेट में हुआ करता था, जो उसके पाचन क्रिया में सहायता करता था।
1: जी
0: ठीक है,
1: ईश्वर की बनाई चीज है। पर आप सोच के देखें तो कितनी अचरज की बात लगती है।
0: अचरज की बात लगती है। और वह जो पत्थर है, पहले लोग जो है उससे चाकू जो है तेज करते थे
1: जी,
0: उस पत्थर से, और वो किसके, उस सोलिटियर के
1: पेट में
0: के अंदर रहता था, तो जो उसके पाचन क्रिया में सहायता करता था। तो जब वो आती है ना, जब फिर वो जादुई दुनिया से जब बाहर आती है, तो उसके हाथ में जो है एक सोलिटियर पत्थर है, तो लोगों को एहसास होता है कि अरे तुम्हारे हाथ में ये कैसे आ गया। ठीक है, तो देखेंगे कि फिर जब वह सचमुच उस पार्क में जब थोड़ा और आगे बढ़ती है, तभी जो गाइड कहता है कि ये देखो वो लियो कछुआ है वो आ रहा है, जो 90 साल का है, और यह वही लियो कछुआ है जो उसे ड्रीमलैंड में वो मिला था। तो इस तरह से बच्चों को जो है एक जादुई दुनिया से यथार्थ की वास्तविकता का एहसास कराना और उसे सीख देना कि पर्यावरण संरक्षण, विलुप्त जीवों के प्रति संवेदना और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो यह कहानी उस तरह से संदेश देती है। यदि इस कहानी को हमारे श्रोतागण पढ़ें, बच्चे पढ़ें, तो उसे और भी अच्छे से महसूस कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, आप निरंतर हमारे साथ कहानी का जो

0: मजा है वो हमें दिला रहे हैं श्रोताओं को भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी एक गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी हमारी।
1: नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, आओ चली भागो चली जागो चली, आओ ये कैसे चले लाओ पैसे चले, आहा खड़े हो जाओ तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ सब खड़े, ला ला ला ला ला लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जाओ पहले वो तीन फिर दूसरे तीन, हाँ तुम भी आओ पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो
3: नाव चली, नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
4: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी एक घड़ी एक झाड़ू एक लाड़ू एक संदूक एक बंदूक एक सलवार एक तलवार एक घोड़े की जीन एक ढोलक एक बीन एक घोड़े की नाल एक भीवर का जाल एक लहसुन एक आलू एक तोता एक भालू एक डोरा एक डोरी एक बोरा एक बोरी एक डंडा

0: सलवार एक सलवार एक घोड़े की जीन, एक ढोलक एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक भीवर का जाल, एक लहसुन एक आलू, एक तोता एक भालू, एक डोरा एक डोरी, एक बोरा एक बोरी, एक डंडा एक नाम, एक पक्का एक कच्चा, एक अंडा एक हंडा, एक झंडा एक डंडा, एक बोरी एक बोरा एक डोरी एक डोरा, एक तोता एक भालू, एक लहसुन एक आलू, एक भीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार एक सलवार, एक बंदूक एक बंदूक, एक लाडू एक झाड़ू, एक झड़ी एक घड़ी।
1: मगर नानी क्या कर रही थी?
0: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी।
1: कितनी गहरी?
0: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी गरम मसाला, पेट में ताला, 16:30, 15:15, दूना 30, 45, 64, 75, 96, 97, 95, 98, 20, नंबर 25, गले में रस्सा।
2: जाएं जब दो मन, साहित्य का तब हो सृजन, संवेदनाओं को दे आधार, साहित्य जोड़े दिलों के तार। साहित्य दर्पण, श्रीमती अंजू गर्बरन की प्रस्तुति में।
3: हेलो।
4: हाँ बेटी।
3: नमस्ते नानी, कैसन हव?
4: अच्छा है बेटी, ढोलक के हाल चाल
3: सब अच्छा है? गीतवा सुन ला ना, गीत के माध्यम से कहानी सुनावत
4: बहुत अच्छा बात बतीलन
3: जी।
4: अब छोटा सा कहानी हम बोल देते हैं।
3: बोला
4: नाम पर
3: बोला।
4: एगो लड़का माँ बाप के नहीं रहल, तो लड़का जन्म लेलक, तो लड़का के नाम धरलक छठपाल। जब छठपाल नाम धरलक, लड़का जैसे जैसे बड़ा हो तो लड़का के नमुआ नहीं पसंद लगे। बोले हम दूसरा गांव में चल जाए ना, तो हमार नाम बदल जाए।
3: अच्छा।
4: अब बेचारा घर से निकलल जाते को गांव में जब गए, तो गांव में जैसे उतरल तो देखा था एगो लड़की अंगना बहारा था
3: जी।
4: तो वो जब अंगना बहा तो बता ए बहिन तोहर कौन नाम बा? तो बोला था जे हमार नाम है लक्ष्मी। तो बोले वो लक्ष्मी नाम अच्छा, ओके अच्छा, अब ओके सोच लग गए। तब आर आगे गए तो देखा था एक मुसाफिर रुआ ढूंढा था। तो बोले भाई तोहर कौन नाम बा? तो बोले हमार नाम है धनपाल। तो धन के पाले वाला धनपाल, तो ओके हाइयो ओके हसरत लगल। अब और आगे गए, एक ही में फिनी हो जाइए। और आगे गए तदी तो देखा था बहुत आदमी जमा भइल बा, और चिता पर एक आदमी के दले हवन से जलावे के। तो हुआ आदमी लोग से पूछलक जे भाई लोग इनका कौन नाम रहल? तो बोलन से इनका नाम रहल अमर। अमर नाम सुनलक तो कहते जस्ती अथी लग गए, जस्ती हसरत लग गए। तब घूमल बेचारा, बोले लक्ष्मी के हम बारहन देखा रुआ धुनत धनपाल, अमर के मैजरत देखा भले नाम ठटपाल, भले नाम ठटपाल। खुशी हो गए
3: अपने नाम के जान गए, बहुत अच्छा बहुत था।
4: ओके तो नहीं लगल दूसरा नाम भले के, तो गांव में हवे ना उचित लोकल के।
3: बिल्कुल
4: अच्छा अच्छा चीज देख के बेचारा अपन खड़े घूमल। माँ बाप पूछा था हाँ बेटा, बोलते हाँ बेटा, हाँ माँ, हाँ पापा, अच्छा अच्छा चीज देख ली। रुआ लक्ष्मी के हम बारहन देखा रुआ धुनत धनपाल, अमर के मई जरत देखा भले नाम ठटपाल। आप लोग का नाम धरल बहुत अच्छा बात।
3: बिल्कुल माता पिता जो कार्य कर देते हैं, चाहे वे नाम रखे चाहे वे आपके लिए कुछ करे, बहुत उत्तम होता है। बहुत धन्यवाद नानी, बहुत धन्यवाद, आपने भी अपनी तरफ से एक कहानी हमारे साथ जोड़ी जो कि बच्चों को बहुत आकर्षित करती हैं कहानियाँ जी। गुरु जी हम अब जानना चाहेंगे आपकी चर्चा में कि आपने इसमें और भी कहानियाँ लिखी हैं, एक आज कहानी का और कोई

0: विषय?
1: बिल्कुल मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ
0: जी,
1: कि आप तो मॉरिशस में बहुत दिनों से हैं
0: जी,
1: और मुझसे बड़े भी बड़ी हैं, और आपके पास जीवन का अद्भुत अनुभव भी है
0: अनुभव आपका अधिक है
1: तो मैं आपसे केवल यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और आपके साथ साथ मैं अपने श्रोतागण से भी पूछना चाहता हूँ, किस जंगल में या पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, वे पेड़ पौधे किसने लगाए? मनुष्य ने तो नहीं लगाए,
0: पक्षियों ने
1: लगाए,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: हाँ।
1: और उन कछुओं ने लगाए हैं जो कि विलुप्त हो गए,
0: पक्षियों ने लगाए हैं
1: जी।
0: तो ये प्रकृति का एक साइकिल है ना,
1: बिल्कुल।
0: अगर आप ध्यान दें तो ये प्रकृति का पूरा एक चक्र है जो कि ईश्वर ने बहुत सोच समझ के यहाँ पर हमें धरती पर इतना सुख देने के लिए, इतनी सुंदरता देने के लिए इतना प्रयास किया, पर हम उस प्रयास को विफल कर देते हैं अपनी कुछ गलतियों के कारण
1: जी। इसी के साथ अब जब देखेंगे कि मान लीजिए कि आज से 400 साल पहले मॉरिशस पर किसका साम्राज्य था? जीव जंतुओं का था,
0: बिल्कुल।
1: हम तो बाद में आए
0: जी,
1: और हम उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, और वे भी हमारे साथ
0: एडजस्ट
1: कर रहे हैं
0: क्योंकि तो वो पहले थे।
1: बिल्कुल। तो इसी पर मैंने एक कहानी लिखी जिसको कि फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं
0: जी,
1: अद्भुत जीव है
0: बिल्कुल
1: पूरे मतलब विश्व में, कि चमगादड़ जो होते हैं वे प्रायः रात में उड़ते हैं, मॉरिशस में देखेंगे कि दिन में उड़ते हैं
0: जी,
1: ठीक है, और वह उनकी दुनिया है, यह पूरी की पूरी जो यह जो स्वर्ग है ना, यह उनकी दुनिया है। तो मुझे लगा कि लोग बहुत नफरत करते हैं और
0: मारते हैं
1: या जो भी कारण, ये तो एक स्वाभाविक है कि वे कहीं ना कहीं फल का नुकसान करते हैं, इसमें तो कुछ हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको खाना है तो नुकसान खाने के क्रम में नुकसान करते हैं, और भी पक्षी जो है फल खाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वही खाते हैं। लेकिन जो ये है कि जैसे कि वे मल करते हैं तो कहते हैं कि बहुत गंदा कर देते हैं, लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वह जो मल है उसी से नए पेड़ पौधे पैदा होते हैं, पेड़ बनते हैं, और उसमें वो जो है एक तरह से खाद है, उर्वरक है प्रकृति के लिए,
0: बिल्कुल,
1: कि वो जहाँ भी मल गिरते हैं उनसे जो है छोटे छोटे पौधों को जो है पोषक तत्व मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये प्रकृति ने निर्मित किया, ये ईश्वर ने बनाया है, ये हमने नहीं बनाया है। तो इसी पर जो है मैंने एक कहानी भी लिखी, उड़ने वाली लोमड़ी, जिसमें मैंने यह दिखाया बच्चों के लिए कि आप उनसे नफरत मत कीजिए, यदि आप कुछ समाधान कर सकते हैं, उनके खाने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, या वे जो जंगल में जो फल खाते थे या पत्तियां खाते थे, क्या वह फल और पत्तियां अभी हैं या नहीं हैं? यदि नहीं है तो हम उसको लगाएं, उनको बसाएं, क्योंकि उनका भी हमारे साथ रहना ज़रूरी है। कल्पना कीजिए कि किसी दिन हम उठें और हमारे सुबह सुबह हम देखें कि चिड़ियों की चहचहाहट नहीं है, तितली नहीं उड़ रहे हैं, वातावरण एकदम शांत है, तो आपको कैसा महसूस होगा?
0: कमी तो बहुत होगी, पर उसके साथ साथ हम प्रकृति से भी कहीं कट जाएंगे।
1: नहीं, कटेंगे ही नहीं, बल्कि सब एक दूसरे पर निर्भर करता है, और इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको बोलते हैं। यदि समाप्त हो जाएंगे तो हम भी समाप्त हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही।
1: जैसे भारत में कहते हैं कि बाघ नहीं होंगे तो जंगल नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे।
0: बिल्कुल।
1: ये जो ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की जो समस्याएं हो रही हैं, तो मैंने इसमें यही इस कहानी में भी दिखाया कि ये जो हैं पहले मॉरिशस के जो हैं स्तनधारी जीव हैं
0: जी,
1: जो यहाँ पर रहते थे, और इनसे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, और बहुत ही अच्छे से इसमें मैंने चित्रित किया है कि एक लड़का है, उसके घर में उसके पिताजी ने लीची के पेड़ पर एक जाल लगाया था, तो उसमें एक चमगादड़ फंस जाता है।

0: फिर कैसे उसको बचाते हैं, बचाने के बाद फिर जो रेस्क्यू टीम है उसको देते हैं। तो बड़ा ही भावुकता के साथ जो है मैंने उसकी समस्या को बताते हुए बच्चों को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया है कि बच्चे संवेदनशील बने। तो इस कहानी का जो है ये उद्देश्य है।
1: बिल्कुल
0: फिर आप देखेंगे कि जो डोमिनो है, तो डोमिनो तो अभी अभी मैंने चर्चा की
1: जी,
0: कि यहाँ जो आपका पार्क है क्रोकोडाइल पार्क,
1: क्रोकोडाइल
0: वहाँ
1: पार्क
0: पर
1: में
0: 100 साल का एक कछुआ वास्तव में। तो
1: है।
0: मुझे लगा कि ऐसे एक कैरेक्टर को, चरित्र को लेकर आना चाहिए। बच्चे तो जाते हैं, देखते हैं, और फिर उसमें मैंने बहुत ही रोचकता के साथ यह दिखाया है कि इन कछुओं के साथ एक, यहाँ मछली पकड़ना आम बात है, कई लोग यहाँ नदी में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो एक बच्चा है जो अपने मामू के साथ, विश्वजीत नाम का, मामू के साथ जो है मछली पकड़ने जाता है और देखता है कि अरे मछली तो मिल ही नहीं रही है। तो वे रात में जो है रस्सी डालकर छोड़ देते हैं, सुबह आते हैं तो देखते हैं उसमें कछुआ फंसा हुआ है। और कछुआ फंसा हुआ है तो उसके मामू बोलते हैं कि भाई इसका जो रस्सी काट दो, रस्सी काट के कछुआ को छोड़ देते हैं और फीस का जो हुक है उसको नहीं निकाल पाते। तब जब वो बच्चा जब सोता है तो रात में जो है वो स्वप्न देखता है कि वही कछुआ उसको याद कर रहा है कि उसको बहुत दर्द हो
1: दर्द
0: रहा
1: हो
0: है
1: रहा है,
0: क्योंकि अभी भी उसके मुंह में वह हुक फंसा हुआ है।
1: फंसा हुआ है।
0: जबकि मामू ने कहा था कि अरे ये तो अपने हुक निकाल लेगा, लेकिन कैसे निकालेगा। तो फिर सुबह जब स्वप्न के बाद वह सुबह अपने मामू से बात करता है, अपने स्वप्न की बात बताता है, तो मामू कहता अच्छा चलो देखते हैं, वहीं चलते हैं। तो देखता है कि वहाँ पर वह कछुआ है। फिर वे लोग उस कछुए को लेकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर उसके मुंह से जो है हुक निकालते हैं। तब उन्हें ये लगता है कि नहीं, जीव के को भी दर्द होता है, उसका भी अपना दर्द है।
1: बिल्कुल
0: और यही कछुआ जो है फिर उसे एक स्वप्न की दुनिया में, एक अलग तरह से फिर उसे समुद्र की यात्रा के द्वारा उसको रॉड्रिक्स ले जाता है। फिर वहाँ की पूरी कहानी और ये सब कुछ उसमें चित्रित है। तो एक वो एक अलग धरातल पर है जहाँ की पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करती है कहानी।
1: बहुत सुंदर, आपने बच्चों को ये भी सिखाया इस कहानी के माध्यम से कि केवल कछुए को देख लिया पर उसके दर्द को भी उसने याद किया, स्वप्न में देखा और उस दर्द से जुड़ पाया, अपनी कहानी बता पाया अपने मामा को कि वो कछुआ अभी भी दर्द में। तो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता और कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जुड़ाव को आपने दर्शाया इस कहानी में।
0: जी
1: बहुत सुंदर कहानी है। चलिए हम एक और गीत सुनते हैं, उसके बाद कहानियों पर चर्चा जारी रहेगी।

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ, बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई।
2: फिर सुन दिला। हेलो हेलो
3: हेलो, नमस्कार अंजू जी।
2: नमस्ते जी, कैसी हैं?
3: मैं ठीक हूँ अंजू।
2: शेर की कहानी सुन रहे थे, आपकी कॉल आई तो हमने कहा हम आपको सुनना चाहेंगे।
3: जी जी जी
2: जी, स्वागत है
3: जी।
2: कहिए।
3: पेड़ की इच्छा
2: जी।
3: एक पेड़ की पत्तियां नुकीली थी, वह पेड़ अपनी पत्तियों को लेकर बहुत दुखी रहता था
2: जी।
3: उसे इस प्रकार की नुकीली पत्तियों बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने जंगल के देवता से मुलायम हरी पत्तियों की मांग की। जंगल के देवता ने उसकी मांग पूरी कर दी और देखते देखते उस पर मुलायम हरी पत्तियों आ गई। अब वह पेड़ बहुत खुश था, लेकिन अगले दिन ही एक गाय आई और मुलायम और हरी पत्तियों देकर उसके मुंह में पानी आ गया। देखते देखते वह सारी पत्तियों चर गई। इससे पेड़ बहुत दुखी हुआ। दुखी होकर उसने जंगल के देवता से इस बार सोने की पत्तियों मांगी। जंगल के देवता ने उस पेड़ की मांग भी पूरी कर दी और देखते ही देखते उस पर सोने की पत्तियां आ गई। पेड़ अब बहुत खुश हैं। लेकिन उसी रात दो डकैत आए और इसकी सारी पत्तियां तोड़कर चलने बने। अब पेड़ को बहुत निराश हुआ। इस बार उसने जंगल के देवता से कांच की पत्तियां मांगी। उसकी यह मांग भी पूरी कर दी गई। लेकिन उसी रात तूफान आया और उसकी सारी कांच पत्तियों टूट गई। बहुत दुखी होकर पेड़ ने जंगल के देवता से फिर से नुकीली पत्तियों कर देने की मांग की। अंततः देवता ने उसकी यह मांग भी पूरी कर दी। वह पेड़ अब अपनी पत्तियों से पूरी तरह संतुष्ट है
2: जी।
3: समाप्त करती हूँ।
2: बहुत सुंदर बसंती जी,
4: बहुत
2: सुंदर
3: जी। जी, थैंक यू वेरी मच।
2: प्रकृति ने जो जैसा बनाया है उसे वैसा ही रहने दें तो हमारे लिए सुखद होगा। अगर हम अपनी सोच के अनुसार अगर कुछ बदलते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत ही होता है जी। बहुत धन्यवाद आपका, आभार प्रकट करते हैं श्रोतागण का, उन्होंने भी एक कहानी इस कार्यक्रम में जोड़ी। और अब हम बढ़ते हैं आपकी तीसरी कहानी जो कि आप चर्चा के लिए
4: गिरमिटिया जी।
2: जी,
4: गिरमिटिया कहानी जो है उसके शीर्षक से ही समझ में आ रहा है
2: बिल्कुल
4: कि जो हमारे पूर्वज थे
2: जी,
4: जो एक गिरमिट के अंत कहते हैं गिरमिट प्रथा के अंतर्गत जो है वे आए थे।

0: एक
1: एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप है
0: गिरमिट
1: शब्द का
0: जी, और लेकिन पूरे विश्व भर में हिंदी में गिरमिटिया शब्द जो है बहुत ही प्रसिद्ध है,
1: प्रचलित है।
0: हाँ
1: जी,
0: तो एक 10 साल की बच्ची है वैष्णवी, और वह पोर्टलुई में अपने पिताजी के साथ बैठी है, कॉफ़ी पी रही है, कुछ गातो खा रही है, और वहीं पर जो पक्षी हैं जैसे फोड़ी चिड़िया है जो लाल रंग की, गोरैया है और बुलबुल है, वे सभी जो है वहाँ पर आ रहे हैं, और आने के साथ जो है वे खा रहे हैं,
1: कुछ चुग रहे हैं,
0: चुग रहे हैं जो वे लोग खा रहे हैं
1: जी।
0: तो वैष्णवी वह पूछती भी है कि पिताजी इनको डर नहीं लगता? पिताजी कहते हैं इनको कभी डर नहीं लगता, जबकि आप भारत में देखेंगे कोई भी चिड़िया आपके पास इतनी आसानी से नहीं आएगी, जबकि मैं मॉरिशस में देखता हूँ कि जहाँ खाएंगे वह भी वहाँ चुगने आ जाती है, और इस लालच में कि कुछ हमें खाने को मिल जाएगा, वे डरती नहीं है। और चूंकि ये चिड़िया डरती नहीं है, तो यही कारण था कि मनुष्य की आवाज़ सुनकर डोडो आ जाते थे
1: जी,
0: मनुष्य की आवाज़ सुनकर सोलिटियर आ जाते थे, इसीलिए वे मनुष्य से भागते नहीं थे, इसी कारण से वे मनुष्य के आसान शिकार बन गए
1: जी।
0: ये जो उनका ये है, तो उसके पिताजी बोलते हैं कि देखो जो जीव जंतु हैं उन्हें भी स्वतंत्रता प्यारी होती है, तो हमें उसे पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। फिर वे बताते हैं कि कैसे हमारे पूर्वज वहाँ से आए, और जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे जैसे सर शिव सागर राम गुलाम थे, तो उन्होंने कैसे अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया, देश को आज़ादी दिलाई, कितने कष्ट जो है उठाने पड़े यहाँ के लोगों को, खेतों से पत्थर हटाते थे, जैसे एयरपोर्ट जाते हैं तो उस रास्ते में पत्थरों के पिरामिड देखने को मिलते हैं, तो कितना ये दिखाता है कि जो भी पूर्वज आए थे वे उन्होंने कितना संघर्ष किया। तो वैष्णवी कहती है कि पिताजी एक बात बताऊं, मेरे विद्यालय में एक कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता है जहां भाषण देना है, और उसमें इसी पर देना है, गिरमिटिया समाज पर क्या है। तो उसके पिताजी कहते हैं अच्छा अच्छी बात है है, तो चलो हम चलते हैं अप्रवासी घाट। तो फिर पिताजी उसको वहाँ ले जाते हैं, फिर वहाँ जाकर वो देखती है जो पद चिन्ह है, फुटप्रिंट है, उसे देखती है, फिर उसके अंदर बहुत सारे वहाँ विक्रम नाम का जो है एक व्यक्ति है जो बताता है कि यह देखिए यहाँ पर टीवी लगे हुए हैं जिस पर आप खुद भी देख सकते हैं, स्क्रीन लगा हुआ है, आप टच स्क्रीन है, आप खुद भी जानकारी ले सकते हैं। वो भी बहुत कुछ बताता है कैसे आए, 1834 में आए, एटलस जहाज़ से आए, किस तरह से आए, 14-15 घंटे काम करते थे, और ढाका नामक जो है तंग झोपड़ियों में उनको रखा जाता था, और जो उनको लाया गया तो कहा जाता था कि इसको नाम दिया गया द ग्रेट एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया
1: जी।
0: फिर
1: मॉरिशस ही पहला देश था
0: जी जी
1: ये एक्सपेरिमेंट
0: हाँ,
1: हुआ।
0: हाँ, फिर अप्रवासी घाट में ये भी दिखाते हैं कि एक झोपड़ी है जिसको कि बैठका है, बैठका में बैठकर जो है रामायण का या गीता या हनुमान चालीसा या भजन कीर्तन जो है गाते थे, या रामायण की कथा सुनाते थे, और सब कुछ जो है 10 साल की बच्ची को जो है इस कहानी के माध्यम से मैंने क्या दिखाया है कि क्या इतिहास रहा है, और सरल वाक्य में और छोटा सा इतिहास जिससे कि बच्चे जान सकें अपने पूर्वजों के त्याग के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, और उन्हें गर्व फील हो कि जो हमारे पूर्वज थे वे बहुत ही साहसी थे, उन्होंने मुसीबत में भी जो है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और
1: अपने उद्देश्य को
0: हाँ,
1: नहीं छोड़ा,
0: हाँ अपनी अस्मिता की रक्षा की, इसलिए हमारा उद्देश्य बनता

0: कि हम उनके संघर्षों को याद रखें और उनका जो सपना रहा है देश को आगे बढ़ाने का, उस सपने को पूरा करें। तो यह कहानी जो है उन उद्देश्यों को जो है भली भांति परिभाषित करती है।
1: बहुत सुंदर आपने बताया हमें ऐसी ऐसी कहानियाँ जिनसे हम प्रेरणा पाते हैं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उनको सकारात्मक रूप देते हैं। बच्चों को यही दिखाने के लिए, बच्चों को यही समझाने के लिए कहानियाँ सबसे अच्छा माध्यम है कि वे सरल शब्दों में सरल विचारों को अपने अंदर ग्रहण कर पाएं और आसानी से उनका मार्गदर्शन हो पाए।
0: जी बिल्कुल
1: जी,
0: उसी तरह से जो इसमें अंतिम कहानी है अष्टभुजाधारी
1: जी
0: ने, जिसकी आठ भुजाएं हैं, ऑक्टोपस
1: जिसे यहाँ पे कहा जाता है। एक फोन कॉल लेते हैं फिर इस कहानी पर चर्चा करेंगे। हेलो
2: हेलो अंजू दीदी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कैसी हैं
2: जी? मैं अच्छी हूँ, मैं हूँ राधा मोहन
1: जी। राधा जी,
2: मेहमान को भी मेरा सादर नमन है।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते। आप कहानी की बात कर रही हैं तो मैं एक श्लोक सुनाऊंगी आपको।
1: अवश्य।
2: उसको हम एक श्लोकी रामायण बोलते हैं
1: जी।
2: उसमें पूरी रामायण की कथा उस एक श्लोक में आ जाती है
1: जी।

0: बहुत सुंदर, बहुत
1: बहुत
0: सुंदर,
1: बढ़िया
0: बहुत
1: पूरी
0: बढ़िया
1: रामायण आ जाके इस
0: जी
1: एक श्लोक की रामायण बोल रहा है, मतलब कि अगर कोई लोग इसे समझें तो ये पूरी रामायण मतलब एक कहानी की तरह एक बच्चे को आप समझा सकते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल। बहुत
1: हाँ
0: बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद राधा जी,
1: बहुत
0: समय
1: धन्यवाद
0: बहुत कम
1: आपको
0: है,
1: जी।
0: आपने
1: हाँ
0: इसमें
1: बहुत
0: भाग
1: बता
0: लिया,
1: रहे जी,
0: इसके लिए बहुत
1: धन्यवाद आप लोगों को भी और शुभ संध्या शुभ रात्रि।
0: आपको भी धन्यवाद। चलिए हम अब इस कहानी अष्टभुजाधारी का सारांश सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल 5 मिनट हैं जिस हमारे कार्यक्रम को आगे ले जाने के
1: जी
0: लिए।
1: जब मैं रॉड्रिक्स गया
0: जी
1: तो वहाँ पर मैंने धूप में जो है ऑक्टोपस को सूखते हुए देखा।
0: जी वहां पर ये प्रचलन है कि
1: जी
0: धूप में सुखाया
1: तो
0: जाता है उसे।
1: मनुष्य जो है इस संसार में जितने भी संसाधन हैं उसका

0: जिससे कि उस जीव के अस्तित्व को ही खतरा हो जाए।
1: परिणाम जानते हैं हम डोडो का।
0: हाँ, डोडो है, सोलिटेयर है, कछुआ है, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो हमने उसमें दिखाया कि जो रॉड्रिक्स में जो इतने सुंदर लेगून्स हैं उसके उसको बनाए रखने में ऑक्टोपस का बहुत बड़ा योगदान होता है
1: जी।
0: तो वहीं की एक छोटी सी लीना नाम की एक लड़की है जो कि एक बार समुद्र किनारे घूम रही है लेगून के आसपास, तो उसे एक छोटा सा ऑक्टोपस मिल जाता है। वह उस ऑक्टोपस को लाती है, पिताजी को बोलती है कि पिताजी इसको मैं अपने घर में रखूंगी। तो पिताजी बोलते हैं नहीं, इसको तो समुद्र में ही रहना चाहिए। बोलती नहीं मैं रखूंगी, तो उसको जो है एक एक्वेरियम में उसके पिताजी रख देते हैं। उसको भी बहुत अच्छा लगता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो उसको खाने के लिए जब केकड़े देते हैं, तो एक बार एक जीवित केकड़े को नहीं वो ऑक्टोपस खाती है। हाँ, वो फीमेल है उसमें जो ऑक्टोपस है, तो वो नहीं खा पाती है। ठीक है, फीमेल करेक्टर है ऑक्टोपस का, तो नहीं खाती, उसे दोस्ती कर लेती है
1: जी।
0: क्योंकि उसको भी कोई चाहिए। फिर इन लोग को महसूस होता है कि क्यों ना हम समुद्र में इसको डाल दें। जब समुद्र में उसको डाला जाता है तो वहाँ देखती है कि बहुत प्रदूषण है और उसको वहाँ अच्छा नहीं लगता। एक दिन वो ऑक्टोपस जो है फिर अपने से चल के फिर वापस उसी एक्वेरियम में आ जाता है,
1: लीना के पास।
0: हाँ, लीना के पास। फिर इन लोगों को लगता है कि अरे ये तो क्यों ऐसे हो रहा है। तो इस कहानी में दिखाया गया है कि जो ऑक्टोपस हैं वे पानी को साफ रखते हैं और जो समुद्र में कचरा होता है उसको उठा उठा कर वो एक जगह बनाते हैं जिसको कि डस्टबिन का ही रूप समझिए, कूड़ेदान का, वहाँ पर वे खुद जमा करते हैं,
1: जमा कर देते हैं,
0: कर देते हैं। हाँ
1: जी,
0: यानी वे भी सफाई पसंद है, यानी कहीं ना कहीं समुद्र को साफ रखने में ऑक्टोपस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हम उसका शिकार इतना ज़्यादा ना करें कि वो विलुप्त हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो चूंकि समुद्र में बहुत गंदगी हो गई है, अब वहाँ के जीव जंतुओं का भी जो है दम घुटता है, तब फिर जब लीना को पता चलता है तो और भी बच्चे आते हैं जो कि समुद्र में गोता लगा सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि पूरा रोड्रिस के लोग जो है एक ग्रुप बनाकर समुद्र की सफाई करते हैं और फिर वो जो ऑक्टोपस है फिर वहाँ पर वो रहने लगती है। और जब एक बार फिर से लीना उसी समुद्र किनारे जाती है तो वह ढेर सारे अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे ऑक्टोपस के साथ लीना से मिलने के लिए आती है।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही रोचक। तो देखिए, प्रकृति अपने नियम स्वयं तय कर लेती है। जीव जंतु जानते हैं किस प्रकार से अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, तो क्यों ना मनुष्य भी ऐसा ही कर पाए, क्यों नहीं हमारे प्रयास होते कि हम अपने घर को नहीं केवल अपने समाज को, अपने पर्यावरण को हर प्रकार से प्रदूषण से बचाए रखें। और इसमें सबसे बड़ा जो कार्य हम कर सकते हैं कि अपने विचारों को स्वच्छ रखें
0: जी।
1: विचार स्वच्छ होंगे तो हर तरफ प्रदूषण कम होगा। स्वच्छ विचार होने चाहिए तो हम अपने बच्चों को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, बाल जो कहानियां हैं, बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन भी कर पाएं, उनका मनोरंजन भी कर पाएं और उनकी जो छोटी सी दुनिया है उसको और अच्छा और सुंदर बना पाएं। ऐसा प्रयास राजशेखर जी ने किया अपनी कहानियों के माध्यम से जो आज हमने चर्चा की। जी गुरु जी।
0: और यह जो मेरा प्रयास है वह बहुत ही छोटा प्रयास है और मैं अपने श्रोतागण से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने आसपास जो पर्यावरण है, जो जलवायु है, जो प्रकृति है, उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्या जो है, आप ठीक है कहानी के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उस समस्याओं से, उन समस्याओं से बच्चों को अवगत कराएं, उसके प्रति संवेदनशील करें और बच्चों को प्रेरित करें कि बच्चे छोटी छोटी कहानी किसी भी भाषा में लिखें, हिंदी में भी लिखें, तो
1: किसी भी भाषा में। हाँ, जो उनको अच्छी लगे
0: जी,
1: जिससे वे जुड़ पाए।
0: जुड़ पाए।
1: हाँ, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी में विचार रखते हैं क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं
0: जी।

0: हिंदी में पढ़ते हैं, इसलिए वो हमारी भाषा हिंदी बन जाती है। चाहे कोई भी बच्चा हो, कोई भी भाषा अपना रहा हो, पर कहानियों से जुड़ना बहुत आवश्यक है।
1: तो हमें और बाल कहानीकार की जरूरत है, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी प्रकृति को बचाने में कामयाब होंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय लेकर निकाल कर हमारे लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, इतनी सुंदर कहानियों से हमें जोड़ा, हमारे श्रोताओं को आपने इतनी सुंदर कहानियों, अपने विचारों को उन तक पहुँचाया, अभी ने हमारा साथ दिया, उनको भी धन्यवाद देंगे। आप सबके लिए ये सप्ताहांत शुभ हो। धन्यवाद, शुभ संध्या,
1: नमस्कार।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा
2: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: घड़ी मिलाते चलिए शाम के 5:02।
4: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
5: खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी

प्यारे प्यारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। आप तो हैं हमारे दोस्त, हमारे मित्र, बहुत ही लाजवाब। आपका स्वागत है प्रोग्राम खेल खिलाड़ी में। 6 बजे तक आपका साथ देगा रोशन। हम जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में आप लोग रेडियो सेट के करीब आ गए होंगे, क्योंकि खेल खिलाड़ी प्रोग्राम जो चलता है, यहाँ एक खेल होता है, प्रश्न की बौछार होती है और आप खिलाड़ी बनते हैं सही जवाब देकर। पहला भाग जो है 5:30 बजे तक सिनेमा दिल से और दूसरा भाग

अग मेरा सवाल तेरा कमाल। तो चलिए प्रश्नों का जो सिलसिला है उसे आरंभ करने से पूर्व हम एक गाने का टुकड़ा चलाते हैं जो आपका उत्साह बढ़ाए। तब तक आप लोग अपने आप को रखिए तैयार, क्योंकि अभी प्रश्नों की होगी बौछार।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: जी हाँ, रुक जाना ये तो जीवन का नाम नहीं है। मुसीबतों से डट के सामना करके आगे बढ़ना, ये है जिंदगी का नाम। खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में पुनः आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और पहला भाग सिनेमा दिल से। और आज का जो विषय है वो है बड़ा ही निराला सा विषय, अनोखी फिल्मी दगर, आयु में अंतर। अब ये कौन सा विषय है आप अपने आप से पूछ रहे होंगे। अनोखी फिल्मी दगर, आयु में अंतर। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें अभिनेता और अभिनेत्री साथ में तो होते हैं परंतु वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में, दोनों की उम्र में, दोनों की आयु में घोर अंतर है। जी हाँ, असल में अभिनेता जो है वो अभिनेत्री से 20 साल से भी ज्यादा बड़े हैं। एक बहुत ही स्पष्ट सा मिसाल जो है वो है लेट देवानंद साहब और तिनामुनिम जी। जी हाँ, आपको याद होगा वो फिल्म देश परदेश जिसमें देवानंद साहब नजर आए थे तिनामुनिम जी के साथ।

आज 26 सितंबर है और आज का दिन है देवानंद साहब का जन्मदिवस। 1923 में वो पैदा हुए थे। अगर वो जिंदा होते तो आज पूरे 103 साल के हो जाते। आपको तो क्या कहें, याद ही होगा 1978 में जो फिल्म रिलीज हुई थी देश परदेश, और उस फिल्म में देव साहब लगभग 55 साल के थे, 55 years, और तीना मुनीम जी मात्र 21 साल की थी, यानी 21 years old, यानी दोनों के बीच में 34 साल का अंतर दोनों की आयु में। तो चलिए देश परदेश वाला गाना हम आपके लिए चलाते तो हैं। पहला प्रश्न आपके लिए, गौर से सुने, तीना मुनीम से भी ज्यादा जवान अनु अग्रवाल के साथ देव जी ने एक मूवी में हीरो के रूप में नजर आए थे। जी हाँ, अनु अग्रवाल, और देव जी जो थे वो अनु से 46 साल यानी 46 साल से भी बड़े थे। और आप ये तो यकीन मानेंगे ही, और एक हिंट आपको दे देते हैं कि उस फिल्म में धर्मपाजी थे, जैकी श्रॉफ यानी जग्गू दादा थे, मधु और शिल्पा शिरोदकर भी नजर आई थी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और कहना है कि उस फिल्म का नाम क्या है जिसमें देवानंद जी ने अनु अग्रवाल जी के साथ काम किया था। 4028085 और पहला गाना देश परदेश से लिया गया।

सबसे प्यारा है अपना देश। ऐसी वाणी बोले जिससे किसी को न पहुंचे ठेस। लता जी और किशोर दा की आवाजों में फिल्म देश परदेश का बहुत ही सुंदर सा गाना देवानंद जी और तीना मुनेम जी पर फिल्माया गया था ये गाना। और सवाल ये था कि देव साहब ने एक फिल्म उन्होंने एक फिल्म की थी जिसमें अनु अग्रवाल जी के साथ रोल निभाया था, उस फिल्म का नाम क्या था? और सही जवाब है द रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ, रिलीज्ड इन 1996 में। और सही जवाब दिया सबसे पहले रेजा भाई फ्रॉम सैपियर, तब जाकर इंदिरा जी ने फोन किया मेबर्ग से, उमा जी रोजबेल से, इंद्रानी जी लिस्कालिये से और क्राविट सेबास्तोपोल से विजय भैया। चलिए इस विषय में अगला प्रश्न आपके लिए रहेगा बड़ा ही आसान सा। एक फिल्म आई थी 1999 में जिसमें द मिलियनियम स्टार यानी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी नजर आए थे। 1999 में आपको पता चल गया कि फिल्म का नाम क्या है। जी हाँ, फिल्म का नाम है सूर्यवंशम, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही जवान अभिनेत्री के साथ काम किया था, डबल रोल में नजर आए थे अमित जी। उस साल में अमित जी को 57 ईयर्स हुए थे, यानी वो 57 साल के थे और अभिनेत्री मात्र 27 साल की थी, यानी अमिताभ बच्चन जी और अभिनेत्री के बीच में 30 सालों का अंतर। तो आप हमें बताइए, ये जो सूर्यवंशम फिल्म है जिसका गाना अब हम थोड़ी देर में चलाएंगे, उसमें जो अभिनेत्री हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ भूमिका निभाई थी, उनका नाम क्या है? 4028085100 पर जल्दी जल्दी बताइए कि अमिताभ बच्चन जी के साथ सूर्यवंशम फिल्म में कौन सी अभिनेत्री नजर आई थी।

अनुराधा पोडवाल जी और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म सूर्यवंशम का रोमांटिक सा गाना केवल आप लोगों के नाम हम करना चाहते हैं। और हमने आपसे सवाल किया था कि सूर्यवंशम में कौन सी जवान अभिनेत्री नजर आई थी अमिताभ बच्चन जी के साथ, और सही जवाब

अब है सौंदर्य। जी हाँ, सौंदर्य। और बदकिस्मती से आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक एयर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी उनके भाई के साथ। और आपको याद दिला दें कि अमिताभ बच्चन जी ने उससे 46 साल छोटी जिया खान के साथ भी वो नजर आए थे फिल्म निशब्द में। क्या आपको याद है 2007 में फिल्म निशब्द आई थी, जिसमें जिया खान थी और अमिताभ बच्चन जी के साथ उन्होंने रोल निभाया था। चलिए सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए फिल्म कल की आवाज से लिए गए एक बहुत ही सुंदर सा गाना चलाते हैं। और इस फिल्म में नजर आए थे धर्मेंद्र साहब और अमृता सिंह जी। और इन दोनों के की आयु में भी बहुत अंतर है, क्योंकि उस साल में धर्मेंद्र जी 57 ईयर्स के थे, यानी 57 साल के थे, और अमृता सिंह जी वो 34 साल की थी जी, यानी 23 साल के बड़े हैं धर्मेंद्र साहब अमृता सिंह जी से। और अमृता सिंह ने तो उसके सुपुत्र सनी देओल जी के साथ भी फिल्म में नजर आई थी, फिल्म बेताब में उसकी पहली फिल्म। तो चलिए कल की आवाज फिल्म से लिया गया ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये जो गाना है इसके म्यूजिक मास्टर हैं कौन। कौन है संगीतकार? 4028085402808085।

0: किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सवार दिया। कुमार सानू और आशा जी की आवाजों में कल की आवाज फिल्म का गाना था, और सवाल था कि इस फिल्म के म्यूजिक मास्टर है कौन। सही जवाब है 90s का जो हिट जोरी थी वो थी नरीम श्रवण की जोरी, और सही जवाब दिया अनीता जी मोदलबिया से, नोटरडाम से रेहाना जी, और धीरज भाई ट्रियोले से वाकवा से शोभा जी, और भावना जी वाकवा से, और विजय भाई क्लावित सेबास्तोपोल से। चलिए पहला भाग तो समाप्त हो गया सिनेमा दिल से, और हम बढ़ते हैं अब दूसरे भाग की ओर, यानी मेरा सवाल तेरा कमाल 5:30।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी।

जी हाँ, म्यूजिक लवर्स, खेलकूद प्रेमियों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मित्रों, खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में पुनः आप लोगों का हम यहाँ पर शानदार स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस AM2 की लहरों पर। और इस सेगमेंट को नाम दिया गया है मेरा सवाल तेरा कमाल, जहां पर फुटबॉल, स्पोर्ट्स और सामान्य ज्ञान पर प्रश्न हम करेंगे और आप लोग बहुत प्यार से जवाब देंगे। तो चलिए हम हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे फुटबॉल के साथ, और वो भी इंग्लिश प्रीमियर लीग। और याद रहे कि आज जो है कोई इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस निर्धारित नहीं किए गए हैं 2 सप्ताह के बाद, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक है और यूरोपियन नेशंस लीग के मैचेस चल रहे हैं इन दिनों। परंतु इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्या हो रहा है, चलिए आपको हम बताते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग टेबल की ओर नजर डालते हैं तो पहले स्थान पर मैनचेस्टर सिटी विद 15 पॉइंट्स, और जब सिटी की टीम पहले स्थान पर आसन ग्रहण करती है तो वो तस से मस नहीं होती है। परंतु क्या इस बार आर्सेनल, जो दूसरे स्थान पर है 12 अंक लिए, क्या वो उस सिटी को नीचे उतर पाएगी या नहीं ये टीम? तीसरे स्थान पर ब्राइटन है, ब्राइटन विद 10 पॉइंट्स, और चौथे स्थान पर न तो लिवरपूल, न तो मैनचेस्टर यूनाइटेड, ना ही चेल्सी, ना ही टोटेनहम हॉटस्पर। जो टीम चौथे स्थान पर है 9 अंक लिए, वो है ब्रेंटफोर्ड। और ब्रेंटफोर्ड जो है बड़ा बढ़िया तरीके से अभी खेल रही है ये टीम। लिवरपूल छठे स्थान पर है, लेकिन उनके पास भी 9 अंक है, लेकिन गोल एवरेज के डिफरेंस पर वो लीड्स और ब्रेंटफोर्ड से नीचे है, एवर्टन से थोड़ा ऊपर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है फुलहाम के साथ ड्रॉ करके वो 12 स्थान पर विराजमान है, और अंतिम स्थान पर कौन है? कोवेंट्री सिटी नहीं,

कोवेंट्री सिटी तो थोड़ा ऊपर चला गया है टोटेनहम हॉटस्पर। जी हाँ, वुड यू बिलीव, टोटेनहम हॉटस्पर वो लास्ट प्लेस में है अभी। बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहा है ये टीम, ये टोटेनहम हॉटस्पर के जो खिलाड़ी हैं। पता नहीं कौन सी प्रार्थना इन लोगों को करनी पड़ेगी ताकि ये वहां से निकल पाए। और टॉप स्कोरर के रूप में एज यूजुअल अर्लिंग हैलैंड, मैनचेस्टर सिटी का खिलाड़ी, 5 गोलों के साथ पहले स्थान पर, लेकिन 1 गोल पीछे पीछे आ रहा है लिवरपूल का अलेक्जेंडर आइसक। और अलेक्जेंडर आइसक ने स्वीडन के लिए भी गोल स्कोर किया है। चलिए यूईएफए नेशंस लीग के बारे में बात करें तो नॉर्वे की जीत हुई डेनमार्क के खिलाफ, और नॉर्वे के लिए 2 गोल्स बने अर्लिंग हैलैंड की ओर से। पोर्टुगल जो है वो वेल्स के खिलाफ जीत हुई पोर्टुगल की, और इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 साल होते हुए भी अपने देश के लिए अभी तक खेल रहा है, और वहाँ पर लियोनेल मेसी इंटरनेशनल फोरम से उन्होंने अवकाश ले ली है। और बेल्जियम की भी जीत हुई एवे मैच, जाकर इटली को उन्होंने हराया। और होम हार इटली के लिए क्या करें, फ्रांस की भी जीत हुई टर्की के खिलाफ, और स्वीडन की जीत हुई रोमेनिया के खिलाफ। फ्रांस के लिए एम्बापे ने गोल स्कोर किया और घायल भी हो गया, और स्वीडन के लिए आइसक ने गोल किया। लिवरपूल का आइसक और आर्सेनल का ग्योकरेस दोनों ने गोल स्कोर किए स्वीडन के लिए। और नेदरलैंड्स और जर्मनी के बीच में जो मैच था वो ड्रॉ पर समाप्त हुआ, 1-1। कोडी गाकपो जो लिवरपूल में खेलता है उन्होंने 1 गोल स्कोर किया नेदरलैंड्स के लिए, और जर्मनी के लिए फेलिक्स निमिचा ने गोल किया। और आज का जो धुएंदार धमाकेदार मैच है यूरोपियन नेशंस लीग में वो है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्पेन, वर्ल्ड चैंपियन स्पेन वर्सेस इंग्लैंड। तो चलिए आप हमें बताइए कि कौन सी 3 टीमें हैं जो अब तक उन्होंने ये यूईएफए नेशंस लीग जीता है, कौन से 3 देश हैं जो अब तक उन्होंने ये कप जीता है यूईएफए नेशंस लीग, जिसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। तो हमें बताइए, केवल 3 देशों की जीत हुई है अब तक ये कप, केवल 3 देशों के नाम हैं, उन 3 देशों के नाम आपको बताना पड़ेगा। 4-0-2-8-0-8-5 अगर आप जान गए तो आपका दिल बिल्कुल बेचारा नहीं होगा।

जी हाँ, सवाल था UEFA नेशंस लीग के बारे में, और हमने आपसे बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा था कि अब तक केवल 3 देशों की जीत हुई है, केवल 3 देशों ने ये कप जीता है, और वे कौन से देश है? सही जवाब है पोर्टुगल 2 बार, 1 बार फ्रांस और 1 बार स्पेन। इस बार किसकी जीत होगी ये तो दिखने वाली बात है। और सही जवाब दिया कौन? रेजा भाई फ्रॉम सेपिया। जब फुटबॉल की बात होती है तो रेजा भाई प्रेजेंट। साथ ही साथ इंदिरा जी मोडालबिया से, मौलाशो से दिला भाई, धीरज भाई ट्रियोले से, क्लबेट सेबास्तोपोल से विजय भाई, नीला जी फ्रॉम वाक्वा और वाक्वा से ही शोभा जी। चलिए, आज 26 सितंबर है, और 26 सितंबर जो है वो है यूरोपियन डे ऑफ लैंग्वेजेस। ये दिवस मनाया जाता है, यानी यूरोपीय भाषा जो है उसका एक स्पेशल विशेष दिवस आज है 26 और सितंबर को। और यूरोपीय जो भाषाओं में इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, पोर्टुगीज है, स्पैनिश है, तो आप हमें बताइए उन 2 यूरोपीय भाषाओं के नाम जिसमें खेल और खिलाड़ी को ऐसे बोला जाता है। जब हम खेल और खिलाड़ी को इंग्लिश में कहेंगे तो हम कहेंगे उसे गेम एंड प्लेयर, और फ्रेंच में कहेंगे je et joueur। जी हाँ, गेम एंड प्लेयर जो है वो इंग्लिश में है। अब आपको हमें बताना पड़ेगा कि खेल और खिलाड़ी को किस यूरोपीय भाषा में हम ऐसे कहते हैं, स्पील उंड स्पील, और किस यूरोपीय भाषा में हम खेल और खिलाड़ी को ऐसा कहते हैं, स्पील उंड स्पील। किस यूरोपीय भाषा में खेल और खिलाड़ी को ऐसे कहा जाता है, स्पील उंड स्पील? 402-808-5-402-80-85 पर जवाब दें आप लोग।

तराशा प्यार से जिसे। हम भी इस प्रोग्राम को बड़े प्यार से आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। और सवाल था कि स्पीयर उंड स्पीयर ये किस यूरोपीय भाषा में खेल और खिलाड़ी को कहा जाता है। आज है यूरोपियन डे ऑफ लैंग्वेजेस, यूरोपीय भाषा दिवस। और सही जवाब है जर्मन, ना ही पोलिश, ना ही स्पैनिश, ना ही डच, ये है जर्मन लैंग्वेज। और सही जवाब दिया उदय भाई रिवाजुपस से, संध्या जी पोइंतोपिमो से, रेजा भाई असैपिया से, मोराशो से, दिला भाई और इंदिरा जी मोदालबिया से। स्पैनिश में खेल को कहते हैं युएगो और एंड और को कहते हैं ई जो वाई है और खिलाड़ी को कहते हैं युगाडो। अगर मेल खिलाड़ी है तो युगाडो, अगर फीमेल खिलाड़ी है तो युगाडोरा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज है चौथा शनिवार इस सितंबर महीने का और चौथे शनिवार को मनाया जाता है विश्व रैबिट दिवस यानी वर्ल्ड रैबिट डे। चलिए मैथमेटिक्स का एक बड़ा ही आसान सा प्रश्न हमारे दोस्तों के लिए, और हम तो जानते हैं कि आप मैथमेटिक्स को बेहद ही पसंद करते हैं क्योंकि जो मेंटल कैलकुलेशन होता है वो आपके दिमाग को शार्प बना देता है। आप तो शार्प हैं और स्मार्ट भी हैं। हम एक नंबर ढूंढ रहे हैं जो बड़ा ही आसान सा नंबर है। उस नंबर को आप ले लें और आप किसी भी और संख्या से उसे मल्टीप्लाई करें तो जवाब एक ही होगा। कौन सा वो नंबर है जो किसी भी नंबर को आप ले लें, कोई भी नंबर हो, उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब एक ही होगा। बताइए कि वो कौन सा नंबर है। 402-808-5-402-80-85 पर जवाब दें। और ये जो प्रोग्राम है वो है हिट हिट।

जी हाँ, हिट हिट, और आप लोग हैं फिट फिट, क्योंकि इस प्रश्नों का सही जवाब जो आप दे रहे हैं। सवाल किया था मैंने कि वो कौन सी संख्या है, कौन सा नंबर है वो, जो उस नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको एक ही जवाब आएगा, और वो है शून्य, यानी जीरो। बिल्कुल जीरो टाइम्स एनी नंबर, एक ही जवाब आएगा आपके लिए, जीरो। और सही जवाब दिया, जीरो से हीरो बन गए हरीश भाई फ्रॉम बुबासन, और सुरेखा जी फ्रॉम मिनिल, और देवी जी फ्रॉम हाइलैंड्स, और बॉम्बू से लक्ष्मी बहन। चलिए एक अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए, और हम बढ़ेंगे हमारे जो सोलर सिस्टम है जिसमें 8 planets हैं, 8 ग्रह हैं। थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, आपको कलम और कागज लेना है और लिखना है कि अर्थ जो है, धरती माता, अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न और यूरानिस में मैं हमेशा आता हूँ, लेकिन कभी नहीं आता हूँ वीनस और नेपच्यून में। वो क्या है जो अर्थ में है, मार्स में है, मर्क्यूरी में है, जुपिटर में है, सैटर्न में है, यूरानिस में है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं है वीनस और नेपच्यून में। क्या है वो, ये कौन सी पहेली है, कैसी पहेली है, ये आपको ढूंढना है ये जवाब। कैसी पहेली है, आपको इसका जवाब ढूंढना है। Never in Venus, Neptune, but yes, in Earth, Mars, Mercury, Jupiter, Saturn and Uranus. 4-0-2-8-0-5-4-2-80-85 पर आप लोग प्लीज जवाब दे दें हमें।

जी हाँ, अपने जहाँ के हम तो है बादशाह। वक्त, ये जो फिल्म थी अक्षय कुमार जी के साथ, अमिताभ बच्चन जी नजर आए थे बेटे और बाप के रोल में, और हमने सवाल किया था कि जो है मार्स, अर्थ, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न और यूरानस में, वो कभी नहीं आता है वीनस और नेपच्यून में, और सही जवाब है लेटर आर। जी बिल्कुल, जैसे आर से रोशन, वैसे ही ये सही जवाब है लेटर आर। और सही जवाब दिया ऋषि भाई बॉशेगी से, सुरेखा जी मेनिल से, उमा जी रोजबेल से, और पोएटोपीमो से संध्या जी। और इसी के साथ संपन्न होता है आज का बड़ा ही दिलचस्प सा प्रोग्राम, खेल खिलाड़ी, निराला खेल, और आप लोग हैं पक्के खिलाड़ी जिन पर ये दुनिया है फिदा सारी। तो चलिए हम आपसे अनुमति लेने, आपसे हम अनुमति लेंगे अभी, जो आपके हैं पास वही आपके लिए है खास। जिंदगी में इच्छाओं के पीछे पीछे भागते आप कभी कभी अपना आप को भूल जाते हैं यार। अपने जीवन को आप सार्थक बनाएं, अपने आप को समझकर और अपना ध्यान रखकर व्यायाम करें, और अपने आप को तनाव से रखें दूर। जिंदगी में आप कभी नहीं होंगे मजबूर। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि आप लोगों को।

0: खेल खिलाड़ी वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
1: गुलाई गुलाई गो हा गुलाई गो गुलाई गुलाई गो हा गुलाई गो

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जोर देकर कहा कि शागोस पर मॉरिशस की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की मांग की और फ्रांसी मित्रता की भावना के तहत द ट्रॉमलिन विवाद को सुलझाने में सहयोग देने का भी आह्वान किया। बच्चों को प्रभावित करने वाली बुराइयों से निपटने के लिए फिनिक्स के रोटरी क्लब ने आज कैट्रोबोन में राइस प्लस कार्यक्रम पायलट आधार पर शुरू किया। 3 साल का ये प्रोग्राम स्कूली माहौल में ड्रग्स की समस्या के समाधान के लिए रचनात्मकता का उपयोग करता है। भारत और लाइबेरिया ने न्यूयॉर्क में 25 देशों के साथ मिलकर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफेयरर्स की शुरुआत की। ये पहल रणनीतिक समुद्री मार्गों पर जहाजों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर नाविकों की सुरक्षा, आपसी सहयोग और संयुक्त राष्ट्र के समक्ष समुद्री व्यापार के मुद्दे उठाने के लिए बनाई गई है। थाईलैंड की मौसम एजेंसी द्वारा आंधी तूफान का पूर्वानुमान जताने के बाद मूसलाधार बारिश के कारण बड़े पैमाने पर आई बाढ़ के चलते बैंकॉक को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नमस्कार, मॉरिशस गणराज्य की शागोस पर संप्रभुता बातचीत से परे हैं। विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कल रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से अपने संबोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया। उन्होंने इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान का आह्वान किया। मॉरिशस के कूटनीतिक प्रमुख ने दोनों देशों के बीच मित्रता की भावना के तहत ट्रॉमलिन पर विवाद को सुलझाने के लिए फ्रांस से भी रचनात्मक तरीके से जुड़ने का आह्वान किया है, सुनिए।
2: I now give the floor to His Excellency Ramphul, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade of Mauritius.
3: न्यूयॉर्क में मॉरिशन विदेश मंत्री ने अपने भाषण के अधिकतर भाग को शागोस मामले के लिए समर्पित किया। मंत्री रितेश रामफल ने एक बार फिर से द्वीप समूह पर मॉरिशस की प्रभुसत्ता दोहराई।
4: Mr. President, I now come to an issue which for Mauritius is non-negotiable.
3: विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कहा, हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जिसके लिए कोई समझौता बातचीत नहीं हो सकती। ये शागोस टापुओं पर हमारी प्रभुसत्ता से संबंधित है। शागोस अर्शपेलागो संबंधित समझौते पर मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम ने 2025 के मई महीने में हस्ताक्षर किए थे। ये राष्ट्र संघ न्यायिक संस्था पर बहुपक्षीय विश्वास का जीता जाता सबूत है कि विवाद का शांतिपूर्ण समझौता हो सकता है। साथ ही हमारे देश की डिकोलोनाइजेशन प्रक्रिया की समाप्ति और शागोस मूल के मॉरिशन वासियों के अधिकारों का पुनः स्थापित किए जाने की बात भी शामिल है। ये विश्वास की बात है पड़ोसियों के बीच इलाके में, और ये भरोसा तब मजबूत होता है जब रूल ऑफ लॉ, कानून शासन का सम्मान हो। राष्ट्रसंघ महासभा के सुझावों, लॉ ऑफ सी अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसलों और ICJ सलाहकारी राय का पालन भी हो। शागोस आर्किपेलागो पर आधिकारिक दायित्व है। हमें विश्वास है कि जिन राष्ट्रों ने न्यू पोस्ट वॉर लीगल ऑर्डर की नींव रखी वे फिर से वचनबद्ध होंगे और बिना देरी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह सम्मानित करने और इसका पालन करने के लिए अन्याय को सुधारेंगे।

0: विदेश मंत्री ने राष्ट्र संघ सदन में एक अन्य टापू की प्रभुसत्ता का उल्लेख किया, थोमले टापू। उन्होंने कहा, थोमले टापू मॉरिशस गणराज्य का एक अभिन्न हिस्सा है। हमने निरंतर रूप से इस टापू पर मॉरिशन संप्रभुता बनाई रखी। एक बार फिर से फ्रांस से हमारे दोनों देशों के बीच व्याप्त मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक तरीके से थोमले टापू संबंधी विवाद को सुलझाने की मांग करते हैं।
1: Du règlement du différend relatif à l'île de Tromelin dans l'esprit d'amitié qui caractérise les relations entre nos deux pays.
0: इसके अलावा मंत्री रितेश रामफल ने नई वैश्विक स्थिरता कायम किए जाने की दिशा में सहयोग के माध्यम से प्राप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संकल्प पर भी जोर दिया।
2: न्यूयॉर्क में अपने भाषण के दौरान मंत्री रितेश रामफल ने जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ साथ पानी और नई तकनीकों तक पहुंच जैसी चुनौतियों का भी जिक्र किया। मॉरिशस के कूटनीतिक प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कई आह्वान भी किए, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्षों, सुधार की समाप्ति और एक फिलिस्तीनी राज्य के गठन के पक्ष में। सुनिए,
3: विदेश मंत्री रितेश रामफल ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों पर बात की, खासकर समुद्र के बढ़ते जलस्तर से टापू देशों की सुरक्षा का मुद्दा।
1: The graduation of countries.
3: देशों खासकर विकासशील छोटे टापू राष्ट्रों की तरक्की सुनिश्चित करनी चाहिए, उचित फंडों से उनका समर्थन करना चाहिए। नाजुक स्थिति वाले देशों के लिए फंड प्राप्त करने के निकषों में मॉरिशस सुधार लाने की अपील करता है। मॉरिशस के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की भी अपील की, खासकर सुरक्षा परिषद में बेहतर प्रतिनिधित्व को लेकर।
1: मॉरिशस फुली सपोर्ट्स द कॉमन अफ्रीकन पोजीशन।
3: मॉरिशस अफ्रीका की साझा स्थिति का पूर्ण समर्थन करता है, जो सुरक्षा परिषद में 2 स्थायी और 5 अफ्रीकीय अस्थायी सीटों से संबंधित हैं। मॉरिशस सुधार लाए गए सुरक्षा परिषद में 6 देशों के प्रतिनिधित्व की भी मांग करता है और भारत के लिए एक स्थायी सीट की मांग का समर्थन करता है। दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों के मद्देनजर मॉरिशस ने संयम बरतने की अपील की, क्योंकि व्यापार, आपूर्ति और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित हो रहे हैं। मॉरिशस जैसी छोटी उदार अर्थव्यवस्था के लिए, जो समुद्री व्यापार पर मार्गों पर बहुत निर्भर करता है, ये प्रभाव बहुत ज्यादा है। हम संयम, वार्ता और टिकाऊ कूटनीतिक हल की मांग करते हैं। मॉरिशस ने फलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति अपना समर्थन दोहराया। मॉरिशस एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के लिए फलस्तीनियों के अधिकारों के हक में अपनी दीर्घावधि की स्थिति को पुष्ट करता है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलम हो। उन्होंने अपने संबोधन का समापन इस विश्वास को दोहराते हुए किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास उसके सामने मौजूद नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता हो।
2: फोर मिलिटॉन प्रोग्रेसिस ने शागोस के मुद्दे पर समाधान खोजने के लिए मॉरिशस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप के गठन का प्रस्ताव रखा है। एफएमपी के नेता पोल बेरांजे ने इस शनिवार को एक प्रेस सम्मेलन लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शागोस पर हमारी संप्रभुता पवित्र है और उनका मानना है कि अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच हस्ताक्षरित समझौता एक मिसाल के रूप में काम कर सकता है।
0: एबेन में लगे फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के प्रेस सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से शागोस मामले पर चर्चा। 2025 में मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसका हवाला देते हुए पोल बेरांजे ने इस बात पर जोर दिया कि बरतानी वचन एवं सम्मान दांव पर है। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए विरोध के बाद मॉरिशस को ग्रैनलैंड उदाहरण से प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति शुरुआत में डेनमार्क के इस इलाके में स्वायत्त इलाके पर प्रभुत्व चाहते थे, एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप की बदौलत स्थिति में सुधार लाया गया।
4: Un high-level working group pour étudier sur l'accord de défense de 1951 là, qui m'en est incapable.

0: amélioré du point de vue américain. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il finit arrivé en l'accord. Malgré qu'il trouve un petit peu de la souveraineté, mais finit arrivé en l'accord. Qui pas tous à la souveraineté de Groenland ni du Danemark.
1: इस तरह फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के लीडर ने एक वर्किंग ग्रुप कायम किए जाने का प्रस्ताव रखा जिसमें शागोस मामले को लेकर मॉरिशन बर्तानिया और अमेरिकी प्रतिनिधि संगठित हों।
0: Nous dire si vous propose aux États-Unis et à la Grande-Bretagne une rencontre high level entre le ministre de Maurice de Grande-Bretagne et des États-Unis et mettre sur pied comme dans le cas du Groenland mettre sur pied un high level working group de tous les trois pays pour arriver à une solution, comme dans le cas Groenland, mais sans tous à nos souverainetés, l'eau Sagos.
1: दूसरी तरफ पोल बेरांजे का मानना है कि प्रधानमंत्री को लंदन दौरे के अंतर्गत बरतानी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करनी चाहिए इसके अलावा उन्होंने बरतानी पक्ष को आभार भी प्रकट किया जिसने मालदीव्स और शागोस के दावों को खत्म कर दिया
2: पीएमएसडी ने आज सुबह पोर्टली में एक प्रेस सम्मेलन लगाया जावी लुगजीवाल ने नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन की परियोजना पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की पीएमएसडी के नेता ने शागोस से संबंधित हालिया विकास क्रमों पर भी अपनी बात रखी
3: पीएमएसडी के नेता जावी लुगजीवाल ने नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना पर सवाल किया उनका मानना है कि भावी एजेंसी मॉरिशस के लिए आवश्यक सुधारों की पूर्ति नहीं करती उन्होंने अधिक पारदर्शिता की मांग की खासकर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को अपनाते हुए पीएमएसडी के नेता के अनुसार इस विधेयक को पारित करने से पहले इसमें और संशोधन किए जाने
4: चाहिए Parce que quand on est dans transparence, quand on est dans accountability, quand il est clair, la lumière partout, il est difficile pour quelqu'un. Maintenant, directeur général de NCA, c'est un monsieur, c'est un madame qui peut venir là. Un bandimoun le plus puissant qui peut être dans l'île Maurice. C'est le premier ministre qui peut être prérogative nommée pour 4 ans, possiblement pour 8 ans, parce qu'il a un droit renouvelé. Il faut revoir ce copie et amener un projet de loi acceptable à toute la population.
3: इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शागोस का मुद्दा भी उठाया गया उनके अनुसार इस मामले में कोई प्रगति नजर नहीं आ रही पीएमएसडी के नेता ने यह भी घोषणा की कि सगाइतल जुवाल के जन्मदिन 9 अक्टूबर के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी
2: बच्चों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से बुराइयों से मुकाबला करने के लिए रचनात्मकता एक हथियार के रूप में इसी उद्देश्य के साथ राइस प्लस कार्यक्रम आज सुबह फिनिक्स के रोटेरी क्लब द्वारा काटोबोन के हरिलाल चुगुमुनी सरकारी स्कूल में एक पायलट आधार पर शुरू किया गया 3 साल तक चलने वाला एक मापने योग्य प्रोग्राम जिसका उद्देश्य स्कूली माहौल में ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल पोर्टली में यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष लॉर्ड डेविड न्यूबर्ग से मुलाकात की ब्रिटिश कानून के एक महत्वपूर्ण शख्सियत लॉर्ड न्यूबर्ग चाहते हैं कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मध्यस्थता के सेक्टर में अपनी अपील को मजबूत करे वो एक भविष्य के मॉरिशस मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से अपने व्यापारिक विवादों को निपटाने के लिए मॉरिशस को चुनने के वास्ते अफ्रीकी कंपनियों को भी प्रोत्साहित कर रही है
1: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट के पुराने अध्यक्ष लॉर्ड डेविड निबर्ग के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली
5: I had a very pleasant meeting. We discussed...
1: उन्होंने कहा बहुत अच्छी बैठक लगी हमने कानून प्रिवे काउंसिल जो कि देश के लिए अपील संस्था के अंतर्गत आती है उस पर बात करने का मौका मिला कई वर्षों के दौरान इसमें कार्य करने का भी अवसर मिला इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री के डॉक्टर वकील और राजनीतिज्ञ के कार्य पर भी चर्चा की इस तरह के अनुभवों से जीवन असाधारण सा बन जाता है काफी विशेष है लॉर्ड निबर्ग व्यावसायिक आर्बिट्रेशन चलाने के लिए इन दिनों मॉरिशस में है
5: I would like to encourage Mauritius to
1: अखंडता और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को लेकर देश की अच्छी छवि है उन लोगों के लिए मॉरिशस आकर्षण का केंद्र है जो लोग आर्बिट्रेशन के माध्यम से अपने विवाद को सुलझाना चाहते हैं
5: appeals ultimately, as I say, to the Privy Council.

0: it should prove attractive for people to litigate here and to arbitrate here.
1: ये संभावनाएं मॉरिशस को अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक नियमों के लिए केंद्र की तरह मॉरिशस की स्थिति अतिरिक्त रूप से मजबूत करने के सरकारी उद्देश्य से मेल खाती हैं।
2: विदेशी स्तर पर जो सुर्खियों में हैं कुछ खबरें, बैंकॉक के पूरे इलाके जलमग्न हो गए। शहर की सरकार ने सालों की सबसे भारी बारिश के बाद थाईलैंड की राजधानी में बाढ़ आपदा की घोषणा कर दी। मूसलाधार वर्षा के कारण सड़कें और कारें डूब गई तथा हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। भारत और लाइबेरिया ने समुद्री परिवहन की सुरक्षा और नाविकों की रक्षा के लिए हाथ मिलाए हैं। न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 25 देशों को शामिल करते हुए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी शिपिंग एंड सीफेयरर्स नामक एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की है। हाल ही में लाल सागर, ब्लैक सी और खाड़ी क्षेत्र जैसे रणनीतिक समुद्री मार्गों पर व्यापारिक जहाजों पर हुए घातक हमलों के मद्देनजर ये कदम उठाया गया। ये समूह संयुक्त राष्ट्र के समक्ष नाविकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार का मुद्दा उठाएगा तथा सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और सूचना साझा करने की प्रक्रिया को मजबूत करेगा। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को सुनते हैं।
3: In recent months, the world has seen unacceptable attacks.
4: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हाल के महीनों में दुनिया ने व्यापार जहाजों और समुद्री नाविकों पर अस्वीकार्य हमले देखे हैं। इन हमलों को कानूनी और नैतिक दोनों ही दृष्टियों से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये हमले होर्मुज जलमार्ग और खाड़ी क्षेत्र से लेकर रेड सी और ब्लैक सी तक हुए हैं। हमारा मानना है कि ऐसी हिंसा और जानों के नुकसान का कोई औचित्य नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो इन हमलों को बंद होना चाहिए। ये पहल समुद्री नाविकों और वाणिज्यिक जहाजरानी उद्योग से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर अधिक ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। लगभग 20 लाख समुद्री नाविक दुनिया के वाणिज्यिक बेड़े का संचालन करते हैं। उन्हें अक्सर वास्तविक और रूपक दोनों अर्थों में उठल पुठल भरे हालात से गुजरना पड़ता है। इस समूह के सदस्य इस मुद्दे को उठाने और आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर बहुपक्षीय और बहुदेशीय मंचों पर प्रयास किए जाएंगे। इनमें संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और आवश्यकता के अनुसार अन्य संस्थाएं शामिल होंगी। आज दुनिया संघर्षों और टकरावों से घिरी हुई है। ये परिस्थितियाँ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बुनियादी जरूरतों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, जिनमें खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त शामिल हैं।
2: में चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मस्करीन्स के दक्षिण दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। आज रात को देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर बरसात होगी। अन्य जगहों पर कल सवेरे धूप खिली रहेगी। कल दोपहर बाद देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर बरसात हो सकती है। अन्य जगहों में बादल घिरे रहेंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके इससे ज्यादा तक पहुंच सकती हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17, अधिकतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 6:06 पर, सूर्योदय 5:54 पर।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजन, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। News on NBC Play.

Kalimay Ruud Bolumi, Bolumi 49 साल की 49 years old की उमा शंकर मंगर की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें विशाल के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी कल बल्कि सोमवार 28 सितंबर को सुबह के 10 बजे उनकी माता ललिता मंगर के मकान बोलू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन ऑन मंडे एट 10 AM. रुतबा 5 अक्टूबर में 85 साल के 85 years old के जसमिन देव नक्चेदी वे पहले मॉरिशस टेलीकॉम में काम करते थे. उनके अर्थी कल रविवार 27 सितंबर को दिन के 1 बजे उनके बेटे दिनेश कुमार नक्चेदी के मकान कट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. मोसेलमा फॉरेस्ट साइड में 84 साल के 84 years old के तानाजी लक्सिमो की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल सुबह के 9:30 बजे ईश्वंती लक्सिमो की पत्नी ईश्वंती लक्सिमो के मकान फॉरेस्ट साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM. योंगटाउ रोड ग्रांबोआ में 54 साल के 54 years old के श्री अजय सिबारत की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें लोलो के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल सुबह के 10:30 बजे उन्हीं के मकान ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबोआ ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM. शोक में रूबेन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.

रेडियो मॉरिशस पर लाइव प्रसारण जारी है। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कुछ विज्ञप्तियां सुन लीजिए। सैकवा के रहने वालों को, खासकर इन गलियों के रहने वालों को जो है आले पेलावाल, इजडो बुके, सेंट मारी, एम्पोटेयर, ले कॉर्न्यू और सैकवा रोड के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल रविवार 27 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से उन सभी जगहों पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। अब सुनिए दूसरी विज्ञप्ति। सुयाक और मोसलमो ग्रीग्री के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 27 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से वहां पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ही विज्ञप्तियां सुन लीजिए। फिनिक्स के रहने वालों को, खासकर इन गलियों के रहने वालों को जो है गुत रॉयल के कुछ हिस्से, फिनिक्स हसन गफा रोड के कुछ हिस्से, अजहरी सिंह लेन के कुछ हिस्से, रॉबिनसन लेन नंबर 1, 2, 3 और 4, फिक्सों, सर अब्दुल रजाक मोहम्मद सेंटर, क्यूबिकल इनोजे सुमन सेंटर और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 27 सितंबर 2026 को ही सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से उन सभी जगहों पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। अगली विज्ञप्ति सुन लीजिए। लामारी के रहने वालों को, खासकर रॉयल रोड लामारी के कुछ हिस्से, मालाकोफ और मिरन लेन के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल ही रविवार 27 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी और लामारी रॉयल रोड लामारी और नाटू लेन वहाँ के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल ही यानी कि रविवार 27 सितंबर 2026 को दिन के 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक

0: वहां पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। तो उन सभी जगहों पर मरम्मत कार्यों की वजह से ही बिजली में कटौती लाई जाएगी और जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे तो बिना पूर्व सूचना दिए बिजली को फिर से चालू कर दी जाएगी। ये थी कुछ विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

大家晚上好，感谢您选择留在这个频道。一如既往，我是张大卫，欢迎您的收听，也希望这些选曲能更好符合您此刻的心情。

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

सभी श्रोताओं को अनीता काकर जोड़ नमन स्वीकार कीजिए। शिक्षण आप रेडियो मोशस पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है कि वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी ही दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी वाणी मधुर और रसपूर्ण है, जिसके कर्म परिश्रम से युक्त हैं, जिसके पास दानशीलता का गुण है, उसका जीवन वास्तव में सफल होता है। तो श्रोताओं, इसी सुविचार के साथ ये कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तजन, कहा गया है कि क्रोध मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु है, जो शरीर में स्थित होकर उसी के विनाश का कारण बनता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि उसी लकड़ी को जला देती है, वैसे ही क्रोध मनुष्य को स्वयं ही नष्ट कर देता है।

प्रियजन, एक सुभाषित इस प्रकार है कि कोही भारह समर्था नाम किम दूरम व्यवसायी नाम को विदेशह सब विद्या नाम कह परह प्रियवादी नाम। अर्थात सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य भारी है, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कौन सा स्थान दूर है, विद्वान व्यक्ति के लिए कौन सा देश विदेश है, और मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति के लिए कौन पराया है। कहने का तात्पर्य है कि सामर्थ्य, परिश्रम, विद्या और मधुर वाणी, ये चार गुण मनुष्य को हर परिस्थिति में सफल और प्रिय बनाते हैं।

भक्त जन, चाणक्य नीति में कहा गया है, मूर्खस्तु परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः भीनति वाक्य शूलेन अदृश्यं कंटकम् यथा। भावार्थ यह है कि मूर्ख व्यक्ति को दो पैरों वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह अपने शब्दों से शूलम के समान उसी तरह भेदता रहता है जैसे अदृश्य कांटा चुभ जाता है।

श्रोताओं, समय नहीं बीता, हम स्वयं बीतते गए। हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं कभी पुरानी नहीं हुई, अपितु हम ही वृद्ध होते गए। हमने भोगों को नहीं भोगा, अपितु भोगों ने ही हमें भोग लिया। हमने तपस्या नहीं की, अपितु हम स्वयं ही जीवन की कठिनाइयों से तपते रहे। तो इसी सुविचार के साथ श्रोताओं, यह कार्यक्रम समाप्त होने चला। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

भजन में भाव है, जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था बढ़ती है विभिन्न अवस्थाओं में वो संसार के झंझटों में फंस जाता है। केवल एक काम करना वो भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना, हरि का सुमिरन करना। तो किस अवस्था में कौन कौन से झंझट हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है, उन्हीं का वर्णन है इसमें।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़रत तलब करते हैं। हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये रेडियो मॉरिशस की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज़ जान अली। महफ़िल-ए-शब प्रोग्राम

में आपका खैर मकदम है। महफिल का आगाज़ कुरान की तिलावत से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकात अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत कदर मुसल्लत करूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही न होगी और सुकून से महरूम रहोगे। बहवाला सही बुखारी।

सूरा अतूर उर्दू तर्जुमा, और बेशक जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनके लिए इस दुनियावी अजाब के अलावा भी अजाब है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग जानते

तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें न बता दूँ कि जहन्नम किस पर हराम है? फिर फरमाया, हर उस शख्स पर जहन्नम हराम है जो लोगों के साथ नरमी और सहूलत का मामला इख्तियार करे। सामईन कराम, महफिल इशा प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। आपकी तवज्जो के लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे, अपना ख्याल रखें। शब बखैर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी,
3: भोजपुरी तड़का,
2: तड़का।
4: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगी एमबीसी।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:06 हो गल बा। रेडियो मॉरिशस पर आप सबको के स्वागत बा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। अभी से लेके रात के 11 बजे ले सब कोई के साथ देवत हाय रहा कहूँ से भी साथ देवत हवा तू तो बस ऐसा ने प्यार से हमनी के संगे जुड़ल रही है और ही मजेदार गुजराती भोजपुरी गीत। कहाँ गुजराती, हाँ हो भोजपुरी गीत तोहर खातिन लेके आल हाय और आप सब कोई के मनोरंजन करब जा अभी से लेके 11 बजे ले तो जरूर हमनी के साथ देते रहिए जा और बढ़िया से बढ़िया भोजपुरी गीत सुने खातिर तू हमनी के टेलीफोने करे सुखब 4028085 पर। जी हाँ 4028085 पर जहाँ पर अपन पसंदीदा गीत के तू फरमाइश करे सकब और जे मिसाज विदा करे खोजा था हुआ था 5251700 पर हमनी के तू संपर्क करे सकब मिसाज विदा करे सकब। और आज के कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया गीत के संगे सजाव जा कहे के आज तह सामदी के रात और जे सामदी के रात तोहर हिया परिवार आल होन या तू परिवार हिया गल हो तो जरूर हमनी के संगे जुड़ल रहियो और अपन पसंदीदा गीत के तू मांग करे सकब। तो चल आज के गीत के शुरुआत करब जा एगो बढ़िया गीत संगे काहे के है गीत एकदम हट के है और मजेदार बात तोहर से जरूर साझा करब कि है जोन गीत है हमनी के गावे के मौका मिलल बा और हमनी के संगे बिल्कुल एगो ऐसन कलाकार जेकर आवाज बहुत ही मजेदार तो चला राजा बंधु के आवाज में रखल है गीत तोहरा सुनाव जा आशा करब जा कि है गीत तोहरा बहुत अच्छा लगी।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 2006 के बरिस और बिल्कुल सितंबर महीना के आखिरी शनिवार और हाय गीत रहल राजा बंधु के आवाज में। आशा करब जाके हाय गीत और अच्छा लगल और चला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत ही मजेदार कार्यक्रम और हाइजा पर हमनी के ढेर कोई श्रोता सुनत हवन तो बस ऐसे प्यार से साथ देते रहिए जा। और जैसे कार्यक्रम शुरू होला तनी तड़का मारे के चुटकुला के तो चला आज के जो पहला गीत है गायत्री जी के पसंद पे नुवल फौस से वो हमनी के साथ देवत हवन उनकर बेटा हवन अजय मामी हवन कल्याणी मोहन जी हमेशा मेबक से साथ देते रहे लन भौजी हवन शकुंतला मोतायलोंग से और उनकर खास सखी हवन गीता बाई जे रहे लन नुवल फौस से हाँ और साथ ही साथ सुनीता जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन गाँव गोब देने से। तीन गो बहिन विमला अमृता और वीना जी हमेशा साथ देवेलन बहुत ही प्यार से। तो चला आज के जो नगला गीत है लागी नहीं छूटे राम बहुत खुशी रहेलन सा है गीत सुने के। तो चला साथ ही साथ तलत महमूद और लता मंगेशकर के आवाज में रखा लेगो हिंदी फिल्म के गीत है लागी नहीं छूटे राम। और हमार चाची के तो कैसे बोलब हमार जो चाची चमेली है कौन दिन चचा के बोले अहो सुना था तोहरा हमार कौन आदत सबसे अच्छा लगेला सच्चे सच्चे बोलिया। तो चचा बोले अरे नाराज होवे के जोन तोहर आदत है ना हाय हमने के बहुत अच्छा लगेला काहे के तू खिसिया के अपन नम्मा हिया जब चल जाला तो हाय आदत का बोलब हमने के बहुत दिल छू जावेला हो का बोलब। तो चाची बोले हट हो हम तोहर से नहीं बतियाब।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, मजेदार कार्यक्रम संगे भोजपुरी के रंग। और चला हाइजा पर हमनी के ढेर कोई साथ देवत हवन।
0: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम और चला है जहाँ पर 9:17 हो गल बाय अबू हमनी के संगे जुड़ गल हवन संगे हवन उनकर बेगम आफे साथ देवत हवन असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी आपी और उनकर पत्नी और उनकर सब परिवार संगे जुड़ के हमनी के बोले गीता के जादर के आवाज में रखल माँ बाप के मोल है गीत उनका सुने के बहुत बहुत मन करा था तो चला आज उनकर दिल खुश करब जा है ये गीत के संगे। और हैजा पर हमनी के साथ देवत हवन बहुत प्यार से भाई माहेन, बहुत बहुत धन्यवाद भाई माहेन साथ देते रहिए जा और ऐसे ने हमनी के संगे संगे जुड़ल रहिए संगे हैजा पर हवन राफिक मोहित ताहिया देने से तो चला बहुत मजेदार कार्यक्रम संगे तू भी हमनी के साथ देवत हवन तायाक बगल से आशा करब जा हौजा मौसम बहुत अच्छा बा और बुझाता जैसे गर्मी तो एकदम से जोर पकड़ ले ले बा तो चला ऐसा मौसम में बढ़िया बढ़िया गीत के संगे तनी मजेदार तड़का और हमर जो चाची चाचा के तो झगड़ा होते रहेला का बोलब चाची कौन दिन चाचा के ऐसन ऐसन तनी अबिते करके बोलत हवा ना सुना ना आ खिड़किया पे तनी नवा पर्दा लगा द तो चाचा बोले काहे हो अभी तो लगैले रहली देसाम में तो अभी नवा पर्दा काहे मांगत हवा बोले हई जानत हवा हई पर्दा ना तनी तनी हमें से लौकेला और हौ नवा पड़ोसी आल हवन ना तो हमनी के ताक झाँक करके बार बार हमनी के झाँक झाँक के देखेलन स नहीं अच्छा लगेला हमनी के हई तनी नवा पर्दा दलवा द हमारे खातिन तो चाचा बोले अरे देख लेवे दा ओकरा निमन से वो खुद ही अपन घर में नवा पर्दा लगा दे तू काहे चिंता करत हवर बुढ़िया

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:23 हो गलबा बिल्कुल अच्छे से ढेर कोई हमनी के इतना प्यार से टेलीफोन पर बतिया था नहीं है छोड़ा था हमनी के बहुत प्यार से हमनी के अच्छा लगा था बात करे के। तो चला आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ब सा और ये अगला गीत जो है बहुत ही मजेदार गीत और हई गीत चलाओ अब जब मानती जी खातिर मानती जी के भैया जोन हवन उनका जन्मदिन रहल काल सुख के दिन आनंद भैया के जन्मदिन के बहुत बहुत बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलब जा और खास कर उनका तीन गो बहिन मानती अनंती और आरती के ओर से और खासकर दू गो बेटा रनीश और निवेश दू गो पतो हवन उर्वशी और अनुषा संगे हवन नाती पोता गिरिशा मितिशा हितांशु भव्य पुष्कल और सब परिवार देने से उनका बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद और संगे संगे हाइजा पर पों लो जैसे साथ देवत हवन छोटी उनकर भैया आत्मा राम के जन्मदिन बा 80 बरिस के हो गल हवन। चला तबियत उतना अच्छा नहीं बा पर भगवान से हइए प्रार्थना करब जा कि तोहरा अच्छा स्वस्थ मिली और ऊपर वाला तोहरा बहुत शक्ति दे तोर सब परिवार देने से तोहरा ढेर ढेर प्यार और कुआश बोलब जा। और चला हाइजा पर दादी प्रभावती चाची ललिता और संगे संगे हरीश भैया खातिन भी हाई गीत मंगले हवन छोटी। चला हाई गीत चलाओ अब जा बसंत सुपोल के आवाज में रखल।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखा था। और अभी अगला गीत जो है शांति जी खातिन चलाओ अब जा। अभी शांति जी हमने के साथ देवत हवन त्यागूज देने से और दागोचे के सब मराठी परिवार खातिन वो गीत मंगे।

हवन और खासकर उनकर भगिना ओम जे अप्प दागो छे रहेलन और उनकर भैया हवन बलराम जे लापुलिस के काम करेलन। तो चला गिरीश रूपचंद के आवाज में रखल है अगला गीत, चलाओ अब जाओ उनकर खातिन और उनकर सब परिवार और जितना कोई सुना थवन जितना कोई खुशी हवन है गीत खातिन। और जाने ल हमर चाची जोन है चाची चमेली अभी बहुत सी गल हवन ऑनलाइन शॉपिंग करे तो एगो सेल्समैन ओकरा टेलीफोने कलन बोले हाँ बहन जी तोहर पार्सल लेके आल है। तो चाची बोले कहाँ हवा भैया सीमा में हवा। तो बोले जाने ला अम्मा जे कोई हम सीमा में रहब कि नहीं रहब तो बुझाता तोहर बूढ़ा हाली से सीमा में चलाई काहे के जितना शॉपिंग तू करत हवन महीना में 4 गो 5 गो 6 गो चक्कर लगावत हई तोहर तोहर गली के बुझाता तोहर बूढ़ा हाली से सीमा पे चलाई।

0: भोजपुरी
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला अगला गीत जोन है कुमारी जी खातिन जी अभी दागो छे से ही हमनी के संगे जुड़ गल हवन और बहुत ही मजेदार गीत के साथ साथ आज अपन गुतनिया के जन्मदिन के बहुत बधाई देवत हवन राधा जी राधा उस्ताबिया जे वालिता रहेलन और अभी आज सब कोई परिवार हौजा गल हवन राधा जी के जन्मदिन मनावे खातिन उनकर बूढ़ा उनकर पति हवन गजराज बेटी हवन पूजा साथ हवन अजू और उनकर सब नाती पोता की ओर से और उस्ताबिया परिवार खासकर उनकर गोतनी कुमारी जी की ओर से उनका जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई। तो चला हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और ये अगला गीत जोन है कुमारी जी तोहर खातिन है गीत के मांग कर ले हवन अभिमन्यु हरिपाल के आवाज में। चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और हमर चाची जाने ल कौन दिन अपन साफ सफाई करत रलन घर के और चाचा के ऐनक मिल गल ओकरा त जैसे चाचा के ऐनक मिलल त जैसे सफा करके चढ़ा देलक अपन आँख पे और हाली से चढ़ा के बोले कौन ची बोले बाप रे बाप भाई में तो हमनियों के गलती सब लौकता हब समझ ली हमर बूढ़ा जोन है काहे खाली हमर नुक्स निकाले लन सा काहे हमनी के गलती बोले लन सा काहे के ओकर ऐनक में तो जिस हमर हमर गलती वे लौकेला है ये से तो अब बूढ़ा जब देखा तब हमर कंप्लेन करते रहे लन।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चल 9:41 हो गल बा और मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर चाची ललिता हमनी के साथ देवत हवन सब कुशल परिवार संगे त्रियोले से। और आज उनकर दामाद बाबू विकास के जन्मदिन बा और इस संगे हवन उनकर पत्नी आरती दूगो लड़का विशेष और विधि सासुमा हवन ललिता संगे हवन उनकर साढ़ू भाई अजय आशना रणधीर और नताशा नहीं साडू भाई नहीं हवन सार हवन यानी साला साहब। तो चला संगे हवन उनकर जितना भी नाती पोता हवन घर में सब कोई जितना कोई लेकवन हवन सब कोई उनकरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई देवत हवन। साथ हवन सुदेवी जी ज्ञानी छोटी दादी प्रभावती भाई आत्माराम भैया हरीश सुखलाल मौसी माला राम जावन और चाची ललिता हमनी के बोले तनी लागी ना ही छूटे राम के गीतवा चला दल लाले लाल होठवा हाँ ये गीत चलावा अब जा नाजीरा खातीन जे हमनी के दागोचे से साथ देवत हवन। तो चला जितना कोई खुशी हवन है गीत सुने के उनकर सब कोई खातीन चलावा अब जा हाई ये गीत और मजेदार गीत संगे का बोलब हमर चचा गजोधर उनकर जोन संगतिया हवन ना दमोदर भैया कौन दिन भेटा गल तो ऐसे मुंह लटका के बैठल रहलन। तो चचा बोले कौन ची होल भैया काहे तू ऐसा मुंह लटका के बैठल हवा फजीर से देखत है तोरा। तो दमोदर भैया बोले अरे का बोली भैया हम तो बहुत देर से एगो चीज सोचत हई नहीं समझ में आवता करी कि नहीं करी। तो चचा दमोदर चचा गजोदर बोले हाँ तो बोल ना कौन चीज करे के तोरा मन करता। बोले चचा के बोलता सोचत हई शादी करे के। बोले अरे तो इतना काहे सोचत हवा कर डाल शादी। बोले हाँ ये तो सोचत हई कुंवारी छोकरी से करी कि फिर विधवा से। तो चाचा बोले अरे कुंवारी से करिया दो तीन बरिस में तो वो अपने आप विधवा हो जाए हो।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और हाइजा पर फ्लिक ऑफ फ्लैग देने से हमनी के साथ देवा धवन अनीता जी, उनकर बहिन हवन शोभा भी से साथ जबिल्लो पिताल में हवन और गीत मंगले हवन शारदा सिन्हा के आवाज में रखल हिंदी फिल्म मैंने प्यार किया से लेवल गए तो जरूर हाई गीतवा सुनब जा।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला अभी थोड़ा घड़ी में 10 बजे के बाद और अगला गीत जोन हा बड़ की मसाला पिसेला कृष रिदोई की आवाज में रखल हई गीत चलाओ अब जातो हर खातिन और हई गीत खास मंगले हवन कल्याणी मोहन नेबक से उसाथ देवत हवन और साथ हवन उनकर खास दोस्त और साथ ही साथ सुनीता देवी दीन खातिन उनकर 3 गो बेटी खातिन रिश्ता रोशनी और संगे संगे हवन बिंदु काली चंद खातिन और भगिनी हवन गायत्री और

और उनकर बेटा अजय जे नुवेल फ्रांस से हमनी के हमेशा साथ देते रहेलन, सुनते रहेलन। और एमबीसी के सब टीम खातिन और जितना कोई सुनत हवन, रात के काम करत हवन, उन सब कोई खातिन थोड़ा घड़ी में चुटकुला के साथ आगे बढ़ जाओ।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
2: धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का तड़का

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला भोजपुरी कार्यक्रम के संगे संगे ढेर कोई हमनी के साथ देवत हवन और मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर भाई आत्मा राम हमनी के साथ देवत हवन बेलिया से तो चला है गी चलाओ अब जाओ उनकर बेटा पतो तीन गो बेटी हवन नौ गो नाती नातीन और चार गो बहिन खाती है गी था पानी के बुलबुला महेश विश्वजीत के आवाज में और चला थोड़ा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई देवब जा आत्माराम भैया और हमर चचा के का बोलब चला चचा के कितना किस्सा चलते रहेला पप्पू भैया के का बोलब पप्पू भैया हमनी के बोले जाने ल आज फजीरा फजीरा जात रही तो एगो बिल्ली करिया करिया बिल्ली हमर रास्ता काट देलक तो हम बोलिए अच्छा फिर कौन सी होल बोले कुछ नहीं आगे जाके बिल्ली के एक्सीडेंट हो गल बिल्लिया मर गल तो पनौती के रहल पप्पू भैया तू की बिल्ली आइए समझे के कोशिश करत है

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
0: भोजपुरी
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का 10:09 और चला मजेदार कार्यक्रम 11 बजे ले चली और हैजा पर हमनी के चाची शांता सुकागी से जमिल फॉरेस्ट साइड से जुड़ गल हवन उनकर पतो हवन किरण चार को बेटा सुजीत सुदेश गाविन और अशोक नाती हवन पावेश और नातीन संजना खातीन और सब सुकागी परिवार खातीन चलाओ अब जा नीरज गुप्त मधु के आवाज में रखा अगला गीत और चाचा के किस्सा तो सुनते चला हमर चाचा जन है ना कबो कबो ऐसा ऐसा ज्ञान के बाद झाड़े शुरू कर देवे लंस कि का बोला चाचा जी कौन दिन अपन सब संगतिया लोग के बीच में बोला थवन जाने ला है लोहा जन है उ लोहा के काटेला और हीरा जन है उ हीरा के काटेला उतना देर में उतना घड़ी में जाने ला कौन ची होल गली के कुत्ता आके चाचा के काट लेलक अब का बोलब

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के अगला गीत उमेश दाऊ की आवाज में रखल और है। गीत चलाओ अब जा उमेश जी खातिन और संगे हवन युवान दमाद बाबू हवन मानव बेटी जिदवा और रिश्ता खातिन तो चला मजेदार गीत संगे हमार चाची जोन है कौन दिन बैठे बैठे बादाम लेके खात रहलन तो चाचा बोले कौन ची खात हवा तो पत्नी बोले हाँ बादाम खात हई बोले अकेले अकेले काहे खात हवा हमनियो के दिया तनी हम भी गुते करब तो चाची एक एक गो बादाम धरा देलक चाचा के हथवा में तो चाचा बोले हई का एक गो काहे देलन बोले हाँ सब बादाम के गूजन हाँ एक पारे रहेलन से एक एक गो खा के देख ल तो बोले हवा गुते करे के ना तो कर ला गुते

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम और चला रात के 10:20 भी हो गल। और अगला गीत जो है पूर्णिमा फुकीरा जी खातिन चलाव अब जा और उनकर प्यारा नाती जो हवन आयान देवी दयाल जेकर जन्मदिन बा 28 तारीख के 6 बरिस के हो जाए तो चला आयान के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई नानी पूर्णिमा की ओर से और खासकर उनकर मामा हवन पूजा और पापा नीतीश और सब देवी दयाल परिवार फ्लाक बग देने से दादा दादी की ओर से और खासकर उनका जितना मौसी हवन पिंकी पूनम प्राविनी मामू हवन भावेश मामी कुष्मा उद्दीन और सब कोई परिवार खासकर कुजे हवन शयान कैकेयान संगे हवन परी और नानी जी बोले हमर खातिन चला द है गीतवा पलना में झूले श्री राम तो जरूर चलाओ अब जा है गीत और चला का बोलब जा है जुन सामदी है सप्ताह महीना के अंतिम सामदी जरूर और आवत समय तो अक्टूबर में हिल जाप सा तभी जाने ल ना जब मंथ के यानी महीना के अंत तारीख चलावेला तो सब कोई के रहेला कि कब पगार मिली कब तनी जाके राशियों किनब स तो हमर चचा जोन है कैसे बोलब कौन दिन कपार पे ऐसे हाथ रख के बैठे हमने के बोले हाँ जाने ल महीना के जो अंतिम दिन आवेला पगार तो मिल जाला सेलमर जाने ल आई जन सैलरी है एगो ऐसन घटना है जब महीना के अंत में हाथ में आवेला तब बुझाला अहम ब्रह्मासी जैसे हम ही भगवान हैं और 10 दिन के अंदर जोन हाल होला बोले भिक्षाम देही के मोड में मन चल जाला और बुझाला जैसे हम ही भिखारी हो गल हैं।

और चला आगे बढ़ा आप सा अगला गीत जो है बहुत मजेदार गीत और है गीत मंगले हवन सुदेवी जी वाकवा से अभी साथ देवत हवन और त्रियोली त्रियोले के दीदी ललिता कुशल खातिन है गीत मांग करत हवन दीदी सुनीता शोभा देवीना और मलेगा के राम रतन परिवार खातिन और है गीत है गणपत सत्यम ईसन के आवाज में तो जरूर सुनब जा हाई गीत आउरी का बोलब चाचा हमनी के बोले चाचा कौन दिन बतियात रलन दमोदर भैया से बोले खा जनी बहुत दिन से हमर पेट फूलल फूलल बुझाता तो जाने ल हमर चाचा गजो

धर कौन ची बुलन बोले अच्छा बा पेट फुलल बा जाने ला ना आज से पितर पक शुरू हो गल बा जोन दिन है 15 दिन में जोन दिन तोरा बुझाए कि पेट बहुत ज्यादा फूल गल बा तो पिछला जन्म के कोनो तोहर पोता पोती रही वो तोहरा बुझाता तो नी तनी तनी तोरा श्राद्ध देवत हवन है ये से तोहर पेट फुलाल फुलाल लौकी तो नी कहाँ हो चचा कहाँ के कहाँ ढुकावत हवा बतवा गाज होगल होई।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मौरी चला 10:36 हो गल बाहे जापर कोटेज से साथ देवत हवन आशा जानू उनकर ममा कुमारी बहिन हवन आरती जीजा राज शुभम और ऋषभ संगे और बहुत प्यार से साथ देवत हवन बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी साथ देवे खातिन और है जापर हमनी के साथ जुड़गल हवन श्यामा रघुनंदन गोब दिनी से उनकर भैया हवन जयप्रकाश भौजी हवन नम्रता केशव और युधीश और वैजंती जी खातिन चलाओ अब जा अगला गीत जो हमनी के हमेशा बेल्जियम से साथ देते रहेलन और बहुत प्यार से हई अगला गीत के मांग कले हवन और हई जोन गीत है गोदान फिल्म से लेवल गयल हिंदी फिल्म गोदान से लेवल गयल है गीत है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में और जानेला कौन दिन चचा और चाची देखत रलन रामायण के सीरियल पुरनकवा जोन रामायण रहल हाँ हो रामानंद सागर के हाउ में जैसे वो देखलन ताड़कासुर के ताड़कासुर जैसे प्रकट हो गल त पप्पू बोले चचा हे है के है ताड़कासुर तो चचा बोले हाय हा तो हर चाची के बहिन मौसी

0: चाची सुन लेलक, बोले हाँ हमर काहे काहे नहीं बोला था तोहर बहिन नियर लौकत हवन। अरे फिर का रामायण तो हाउजे छूट गल, शुरू हो गल महाभारत घर में।
1: अरे पुरवा के झोंकवा में

0: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम 10:40 और विजय बंधन जी हमने के साथ देवत हवन क्लावे देने से उनकर पत्नी हवन रेखा साथ हवन तीन गो बहिन बिंदु कुमारी और चंदनी और चला इसी के साथ उनकर बेटा खातिन और जितना परिवार हवन उन सब कोई खातिन आदेश ताकू प्रसाद के आवाज में रखल है अगला गीत चलावम जा संगे संगे युधिष भी हमनी के साथ देवत हवन और मजेदार गीत बस साथ देते रहिए जा रात के 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर अभी रात के 10:41 होकर

ली। जब छोकरी मिलाता तो जानेला हमर पप्पू भैया कुंची बोले बोले आई लव यू सिस्टर तो कहाँ मिली बूढ़ बक कहुआ के। चला एक संगे ललिता पुनित के आवाज में रखल है जो अगला गीत है श्रीमती जी खातिन चलाओ अब जा सुयाग से साथ देवा थवन औरी है जो गीत है इंद्रासन से ढोलक मंगाईला। आई गीत बहुत है मजेदार गीत है चंद्रमुनि परिवार खातिन चलाओ अब जा जे सुयाग से हमनी के सुना थवन और महेश परिवार लिस कालिये से औरी श्रीमती जी के जितना संगतिया लोग अभी सुना थवन उन सब कोई खातिन मजेदार गीत संगे चला आगे बढ़ब स।

0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
1: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चल रोज रात के 9 बजे से लेके 11 बजे ले चलेला और आज तसामदी के रात है। रत्ना आप सब कोई के साथ है और मजेदार कार्यक्रम के हिजा पर समाप्त करेंगे। समय भी हो गल बा रात के 10:53 हो गल बा। बस थोड़ा घड़ी में आज के कार्यक्रम हिजा पर समाप्त हो जाए। आप सब कोई के याद दिलाओ देवत है कि रात के 11 बजे से शुरू हो जाए सुनहरे पल के कार्यक्रम और जो आज के कार्यक्रम है नीतुषा के ओर से प्रस्तुत करल जाए तो जरूर तू पुराना गीत के आनंद लेवे सकब। और चला इसी के साथ आज के जो अंतिम गीत है अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल हाई गीत चलाओ अब जा राजन लक्ष्मण जी खातिन जे लफलोगा से हमनी के साथ जुड़गल हवन उनकर पत्नी हवन माला दूगो बेटी प्रार्थना और प्रगति खातिन और महिन हरपाल के आवाज में रखल हाई गीत हमर 20 के पास बा बंतार करीला। और भाई राजन हमनी के बोलत हवन के हाँ फ्लाग से निकल के हम जाब मायबू जाके दाल पूरी खाब काहे उतना दूर जाए के हो फ्लाक में भी मिलेला बढ़िया बढ़िया दालपुरी और मजेदार गीत संगे चला आज के हाई गीत जरूर राज वर्मा जी जी हमनी के सुनत हवन पंडित राज वर्मा पीछे गाफे से हमेशा हमनी के साथ देते रहेलन तो चला जे तू सुनत हव तो हाई गीत तोरा भी बहुत अच्छा लगेला हाई गीत करब जा तोहर खातिन और तोहर सब बड़ुआ परिवार खातिन। तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हई जो जिंदगी बा बहुत अच्छा बहुत जोली है और जोली जस्ती तब लगेला जब चेहरा पे मुस्कुराहट रहेला और जब तू स्वस्थ रह तो जिंदगी और भी अच्छा लगेला जिए के। तो जितना कोई लोपिताल में बीमार हवन उन सब कोई खातिन अच्छा प्रार्थना करब जा कि भगवान सब कोई के बहुत बहुत हिम्मत दे। और चला इसी के साथ तू अपन ख्याल रखिए स्वस्थ रहिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और मजेदार गीत के संगे साथ देव अब जा फिरो से भेट आप स आवत सामदी के रात के 9 बजे से लेके 11 बजे ले भोजपुरी धड़का कार्यक्रम में। तो चला एकर संगे रत्ना को दीजिए अनुमति शुभरात्रि नमस्कार सब कोई के।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कैसे हैं आप मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, स्वीकार करें नीतूषा का करजोर प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक कुशल मंगल हैं। तो एक बार फिर आइए बॉलीवुड के उस जमाने में आपको ले चलते हैं जिसको हम सुनहरे पल कहते हैं, और उन्हीं पलों को फिर से ताजा करते हुए इन खूबसूरत गानों के साथ हम भी जुड़ जाते हैं, स्पेशली द 70s। आहा, हमें पता है कि आपको पसंद है द 70s के गाने, तो आइए इन गानों का मजा लेते हैं।

वैसे बॉलीवुड के इतिहास में 1970s का दौर एक ऐसा सुनहरा पन्ना है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए उतनी ही नई खुशबू महसूस होती है। ये वो जमाना था जब हिंदी फिल्मों के गाने सिर्फ फिल्म का एक हिस्सा नहीं होते थे बल्कि कहानी की जान भी होते थे। गीत दिल की बात कहते थे, किरदारों के जज्बात को आवाज देते थे और सुनने वालों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते थे, जैसे कि आप इस समय इस खूबसूरत सफर के हिस्से हैं।

70s के गानों में एक अलग ही मिठास थी, मेलोडी, गहराई, लफ्जों की खूबसूरती थी और सबसे बढ़कर एक ऐसी सिंप्लिसिटी थी जो सीधा दिल तक पहुंचती थी। चाहे मोहब्बत हो, जुदाई हो, दोस्ती हो, जिंदगी के संघर्ष हो या खुशियों के पल, हर एहसास को गीतों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। इसी दौर के सबसे खास बात थी मेलोडी। धुन इतनी यादगार होती थी कि एक बार सुनने के बाद भी वो दिल और दिमाग में बस जाती थी। किशोर कुमार की आवाज में रोमांस और मस्ती का एक अलग रंग था। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में नरमी, रूहानियत और जज्बात की गहराई थी, तो वही मुकेश जी की आवाज में दर्द और सादगी थी। लता जी की आवाज, आशा जी भोंसले जैसे महान स्वरों ने फीमेल प्लेबैक सिंगिंग को नए रंग दिए।

वैसे किशोर कुमार की आवाज ने 70s के रोमांटिक हीरो को जैसे एक नई पहचान दे दी। उनकी आवाज में कभी शरारत थी, कभी दीवानगी, कभी तन्हाई और कभी जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज। उनके गाने सुनते ही लगता था जैसे कोई दोस्त दिल की बात कह रहा हो। रफी साहब की बात करें तो उनकी आवाज की रेंज ही कमाल की थी। रोमांटिक सॉन्ग से लेकर इमोशनल नंबर्स, फिलोसॉफिकल गीतों से लेकर एनर्जेटिक सॉन्ग्स तक रफी साहब हर मूड को अपनी आवाज में जीते थे। उनकी गायकी में लफ्जों की इज्जत और सुरों की मिठास दोनों महसूस होती थी और मुकेश जी के गीतों में तो एक खास उदासी और सच्चाई थी। उनकी आवाज जब दिल टूटने, तन्हाई या जिंदगी के संघर्ष की बात करती थी तो सुनने वाले को लगता कि ये गीत उसी की कहानी कह रहा है। और फिर आती है लता जी और आशा जी। दोनों की आवाजों में एक पवित्रता, नजाकत और इमोशनल डेप्थ थी। आशा जी अपनी वर्सिटैलिटी, एनर्जी और यूनिक स्टाइल के लिए तो मशहूर ही थी और दोनों ने 70s के बॉलीवुड म्यूजिक को एक अलग ही पहचान दी।

श्रोताओ, 70s के गीतों की एक और बड़ी खूबसूरती थी लिरिक्स, यानी कि बोल। शब्द सिर्फ राइम करने के लिए नहीं लिखे जाते थे, उनमें कहानी, फिलोसॉफी, पोएट्री और इमोशंस होते थे। आनंद बख्शी, गुलजार, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी और कई अन्य शायर और गीतकारों ने सिंपल अल्फाज में गहरी बातें कह दी। गुलजार साहब के गीतों में तो जैसे अल्फाज खुद तस्वीर बन जाते हैं। उनकी पोएट्री में बारिश, हवा, रात, चांद, सफर, खामोशी और मोहब्बत सब कुछ अपनी एक अलग जुबान में बात करता है। इसी तरह आनंद बख्शी के गीतों में आम इंसान की जिंदगी, मोहब्बत और जज्बात की सीधी और दिल को छू लेने वाली भाषा मिलती थी।

वैसे 70s के म्यूजिक कंपोजर्स ने भी कमाल का संगीत दिया। आरडी बर्मन ने इंडियन मेलोडी को वेस्टर्न अरेंजमेंट्स, रिदम और इनोवेटिव साउंड्स के साथ जोड़ा। उनके म्यूजिक में एक्सपेरिमेंटेशन भी था और मेलोडी भी। उनके गिटार, ड्रम्स, पर्कशन, इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स और इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को एक नए अंदाज में यूज किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कंपोजिशंस में ग्रैंडियर, मेलोडी और ऑर्केस्ट्रेशन का खूबसूरत संगम था। कल्याण जी आनंद जी, शंकर जयकिशन, बप्पी लहरी और अन्य संगीतकारों ने भी इस दौर को अपनी यूनिक आइडेंटिटी दी। 70s के बॉलीवुड सॉन्ग्स में इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल भी बहुत दिलचस्प था। तबला, ढोलक, फ्लूट, सितार, सारंगी, हारमोनियम जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गिटार, सैक्सोफोन, ड्रम्स और वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन का इस्तेमाल सुनने को मिलता था। इसी फ्यूजन ने सॉन्ग्स को, गानों को एक फ्रेश और मॉडर्न साउंड दिया। इस दौर के गाने सिर्फ रोमांटिक नहीं थे श्रोताओं,

दोस्ती के गीत भी यादगार रहे, जिंदगी को समझने वाले गीत भी आए, और ऐसे गीत भी जो मुश्किलों के सामने हौसला देते थे। कुछ गीतों ने कहा कि जिंदगी एक सफर है, कुछ ने याद दिलाया कि खुशी छोटे छोटे पलों में छुपी होती है, और कुछ ने मोहब्बत को एक खूबसूरत एहसास के रूप में पेश किया। 70s के बॉलीवुड सॉन्ग्स का एक खास चार्म उनके स्क्रीन प्रेजेंटेशन में भी था। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शशि कपूर, जितेंद्र, ऋषि कपूर जैसे एक्टर्स पर फिल्माए गए सॉन्ग्स ने उन गीतों को एक विजुअल आइडेंटिटी दी। हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, शर्मिला टैगोर और कई एक्ट्रेसेस ने अपने एक्सप्रेशंस और स्क्रीन प्रेजेंस से सॉन्ग्स को और यादगार बनाया।

70s के सॉन्ग्स की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद यही है कि उनका कनेक्शन जेनरेशन से है। वो गाने जो हमारे पेरेंट्स ने सुने, उन्हें हमने सुना, और आज की जेनरेशन भी उन मेलोडीज को नए अंदाज में डिस्कवर कर रही है। रिमेक्स रिक्रिएशंस अपनी जगह है, लेकिन ओरिजिनल कंपोजिशंस की वो वॉर्म्थ और इमोशनल डेप्थ थी, उसका अपना ही चार्म है। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, म्यूजिक सुनने के तरीके बदल गए हैं। विनाइल रिकॉर्ड्स, कैसेट्स और सीडीज की जगह डिजिटल प्लेलिस्ट ने ले ली है, लेकिन 70s के गीतों की रूह आज भी जिंदा है। एक पुराना गाना रेडियो पर अचानक बजता है और हम चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, कुछ पल के लिए तो रुक ही जाते हैं, क्योंकि अच्छा म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है।

70s के बॉलीवुड सॉन्ग्स हमें याद दिलाते हैं कि मेलोडीज का कोई जमाना नहीं होता, मोहब्बत पुरानी नहीं होती, यादें पुरानी नहीं होती और दिल को छू लेने वाली आवाज कभी पुरानी नहीं होती। तो आज अगर हम 70s के बॉलीवुड गीतों की दुनिया में खो जाएं, तो हमें मिलेगी मोहब्बत की खुशबू, दोस्ती की मिठास, जुदाई का दर्द, जिंदगी का फिलोसॉफी, मस्ती का रंग और सबसे बढ़कर संगीत का वो जादू जो वक्त की सीमाओं से परे है। 70s का बॉलीवुड म्यूजिक एक दौर नहीं, एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो कभी किशोर कुमार की आवाज में मुस्कुराता है, कभी रफी साहब के सुरों में दिल को छू जाता है और कभी मुकेश जी के दर्द में आंखों को नम कर देता है, तो कभी लता जी की मधुर आवाज में मोहब्बत बनकर उतरता है, तो कभी आशा जी के सुरों में जिंदगी की मस्ती बनकर झूम उठता है। और जब रेडियो पर 70s का कोई एवरग्रीन गीत बजता है तो बस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद को उस सुनहरे दौर की उन्हीं गलियों में ले जाइए जहाँ हर धुन में एक कहानी थी, हर लफ्ज में एक जज्बा था और हर गीत में दिल की एक आवाज थी। प्रणाम, शुभ रात्रि।

सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूईएफए नेशंस लीग में आज सभी खिलाड़ी अपने वतन अपनी राष्ट्रीय टीम की सेवा में। इस टूर्नामेंट में अलग अलग लीग होते हैं। यूरोप की बेहतरीन टीमें लीग ए में, इसमें चार ग्रुप हैं। लीग ए ग्रुप वन में है फ्रांस, इटली, बेल्जियम और तुर्की। लीग ए ग्रुप टू में जर्मनी, नेदरलैंड्स, सर्बिया और ग्रीस। लीग ए ग्रुप थ्री में वर्ल्ड चैंपियन स्पेन, क्रोएशिया, इंग्लैंड और चेक रिपब्लिक। लीग ए ग्रुप फोर में पोर्टुगल, डेनमार्क, नॉर्वे और वेल्स। फिर लीग बी, सी और डी भी हैं। आज लीग ए मतलब एलीट ग्रुप के में नेदरलैंड्स का मुकाबला जर्मनी से, सर्बिया वर्सेस ग्रीस। लीग ए के ग्रुप फोर में नॉर्वे, डेनमार्क, पोर्टुगल वर्सेस वेल्स, नेदरलैंड्स वर्सेस जर्मनी। द नेशनल मैनशाफ्ट के लिए बॉस यर्गन क्लॉप के लिए बैटेम दे फ्यू। लिवरपूल से जाने के बाद ये क्लॉप के लिए वापसी कॉम्बैक है। पहली बार वो मैदान में उतरेगा, उसके लिए नया चैलेंज, नई चुनौती है द नेशनल मैनशाफ्ट में अपना खोया हुआ गौरव वापस दिलाना, ब्रिंग बैक लॉस्ट ग्लोरी। नए खिलाड़ी लाए जा रहे हैं, दो अलग अलग स्क्वाड हैं, जवान टीम है, एवरेज एज 24 से 25 के बीच। नेदरलैंड्स के खिलाफ यर्गन क्लॉप के सामने कुछ पुराने खिलाड़ी होंगे जिनको वो अच्छी तरह से जानता है। लिवरपूल का उसका कप्तान वर्जिल वान डाइक, कोडी गाकपो, ग्रेवेनबर्च आदि। नेदरलैंड्स का नया बॉस ज़ावी हर्नांडेज है, जर्मनी की तरह यहां पर भी नया बॉस। ग्रुप फोर में पोर्टुगल वर्सेस वेल्स, चर्चा का विषय है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 41 साल का, 41 ईयर ओल्ड, पर अभी तक दम है, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। पोर्टुगल दो नेशंस लीग जीत चुका है, नेशनल टीम के साथ 1000 गोल का टारगेट है, अभी 21 गोल और चाहिए CR7 को। आज के अन्य लीग में अंडोरा, माल्टा, लिएश्टेनस्टाइन, लिचुआनिया, ऑस्ट्रिया, इजराइल, कोसोवो, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। कुछ फ्रेंडली मैच भी आज खेले जाएंगे, इनमें जापान का मुकाबला यूरुग्वे से, साउथ कोरिया, इक्वाडोर, चीन, मालदीव्स, उज्बेकिस्तान, इराक। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस क्वालिफायर्स के तहत आज ग्रुप सी में आइवरी कोस्ट, गाना के बीच गर्म मुकाबला। ग्रुप ई में कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वाटोरियल गिनिया, सियेरा लियोन का मुकाबला जिम्बाब्वे से है। ग्रुप एफ में मोरिटानिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ग्रुप जी में नामीबिया, कोंगो, कमरून का मुकाबला कोमोरो आइलैंड से। फिर ग्रुप एच में लीबिया, बोत्सवाना, चुनिजिया वर्सेस युगांडा। कल UEFA Women's Champions League

0: लीग के लीग स्टेज के मैच खेले गए। बार्सिलोना ने 5-2 से पारी एफसी को हराया। चेल्सी की जीत 1-0 से ऑस्ट्रिया वेन के खिलाफ। ओ एच लुवेन 0 एस रोमा 0 और ओलंपिक लियोन 8 सर्वेट 0। दो फ्रेंडली मैच भी खेले गए। अजरबैजान ने 1-0 से ताजिकिस्तान को हराया। जिब्राल्टर और साउथ टोमे के बीच मैच ड्रॉ 0-0। टोक्यो में लग रहे एशियन गेम्स में जहां चीन की टीम मेडल टैली में बहुत आगे है, टीम इंडिया के खाते में अब तक 1 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। गोल्ड मेडल महिला क्रिकेट टीम के नाम। जुजुत्सु में हमारे एथलीटों के बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी हैं। अल्जीरिया में लग रहे अफ्रीकन जुजुत्सु चैंपियनशिप में 4 अलग अलग डिसिप्लिन में युवीना अजारी सिंह 4 गोल्ड मेडल जीत पाई। एमी वाटरसन 2 गोल्ड मेडल जीत पाई। आदिल डुकी फुल कॉन्टैक्ट में चैंपियन बना। येहान पगाउन के नाम 2 ब्रॉन्ज मेडल। और घुड़दौड़ में गजारर स्टेबल ने रायान कुरातुलो को अपना नया घुड़सवार, नया जॉकी बनाया है। डैनियलसन को निकाले जाने के बाद कुरातुलो को रखा गया है। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे दीजिए नमस्कार आप सभी लोगों को। अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनो।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

बाद आजीजानी गिरामी कदर कुरान करीम फुरकान हमीद की बड़ी फेमस दुआ है, रब्बना आतिना फिल दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। वल्लाह गिव अस गुड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड ग्रांट अस गुड इन द हियर आफ्टर एंड सेव अस फ्रॉम हेल फायर। ए अल्लाह हमें इस दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें आग के अज़ाब से बचा। मैंने बारहा इस पर मुख्तलिफ दुरूस दिए, मुख्तलिफ खुतबात में, खिताबात में, मुज़ाकरों में इसके मुख्तलिफ मानी पे रोशनी डाली। आज के टॉपिक से रिलेटेड हसना फिद दुनिया, द गुड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड या द गुडनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस दुनिया की भलाई। सो इसके मानी में से एक माना है सहबतुस सालिहीन, द कंपनी ऑफ द पायस पीपल, द कंपनी ऑफ औलिया, सालिहीन की और औलिया की सोहबत। वो इस दुनिया में हसना है और वो इस दुनिया की भलाई है। जो हम नमाज में भी अल्लाह से मांगते हैं और नमाज के अलावा भी अल्लाह से मांगते हैं, औलिया से, अल्लाह वालों से कनेक्शन के, उनसे कनेक्ट होने के बहुत से बेनिफिट्स हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को जिन प्रॉब्लम्स का सामना है, स्पेशली यंग जनरेशन और न्यू जनरेशन, नौजवान नस्ल और नई नस्ल के एंगल से, तो जाहिर है कि जहां प्रॉब्लम्स होते हैं तो वहां उसके रीजंस होते हैं। बगैर रीजन के कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कॉज और इफेक्ट, इसको कहते हैं इल्लत व मालूम। दुनिया का पूरा निजाम ये इल्लत व मालूम का है, कॉज और इफेक्ट का है। तो जहां इफेक्ट हो तो उसका मतलब कोई ना कोई कॉज है उसका। आपके मेडिकल साइंस का सारा दारो मदार ही इस उसूल पर है, इल्लत मालूम पर, सबब और मुसब्ब पर। तो बहुत से रीजंस हैं, उनमें मेन रीजन ये है कि हमारी नई नस्ल और नौजवान नस्ल दिन ब दिन बामल उलमा से और अल्लाह के नेक बंदों से दूर होती चली जा रही है, बल्कि उनके दिल में जहां बहुत सारे अंधेरे हैं तो वहां बामल उलमा और औलिया से नफरत का अंधेरा भी पैदा किया जा रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल पर
एक बहुत बड़ी साजिश है।

कि जब ये उम्मत बामल साहिबान इल्म से और सुलहा अवलिया अहलुल्लाह से दूर हो जाएगी तो ये खुद बखुद तबाह हो जाएगी, खुद बखुद मिट जाएगी, फिनिश हो जाएगी। सो अल्लाह पाक ने जा बजा हमें और आपको ये कमांड दिया कि हम सालिहीन नेक लोगों की कंपनी ज्वाइन करें, उनकी सोहबत इख्तियार करें। इस वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह जो नौजवान इखलास और सिंसेरिटी से बामल साहिबान इल्म से पीरान आज़ाम से अल्लाह वालों से ज़ाकिरीन से जुड़े हुए उनसे कनेक्ट हैं, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से महफूज हैं जिनको और लोग फेस कर सकते। कुतुब रब्बानी शहबाज लमकानी गौसे समकानी आलिम उलूम सबए मसानी हामिल असरार सबए मसानी सैयदना व सनदना السيد السند عبد القادر الجيلاني نور الله مقدم ने इस उम्मत को जहां सालिहीन की सोहबत सालिहीन की कंपनी अता की तो वहां इस उम्मत को ऐसे सालिहीन अता किए अपनी मुरीदीन और मुतकिदीन कि एक ऐसा लंबा सिलसिला और चैन अता किया जो आज तक है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये गोल्डन चैन चलता चला जाएगा, ये सिलसिला नूर सुबह क़यामत तक चलता चला जाएगा। वो इसी तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए उस नस्बत में नस्बत कादरियत में जब वो अपने हकीकी शक्ल में इस दुनिया की बेनजात है और उस जहां की भी निजात, इस दुनिया का हसना जिस शक्ल में भी हो इस निस्बत से आता होता और उस जहां का हसना वो जिस शक्ल में भी हो वो इसी निस्बत से इंशाअल्लाह आता होगा। बड़ी आसान दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। याद है तो अच्छा है, नहीं है तो इसको मेमोराइज करें, नमाजों में नमाजों के अलावा सुबह शाम ये दुआ मांगा करें। बच्चों के लिए एग्जाम होने वाले हैं, अल्लाह पाक माँ बाप को दुनिया के इम्तिहान के साथ साथ उनके कब्र हशर क़यामत के इम्तिहान की फिक्र भी उसकी सोच भी दे और अल्लाह पाक सब बच्चों को बच्चियों को इम्तिहान में नुमाया कामयाबी अता करे। तो ये एक अच्छे रिजल्ट के लिए भी बड़ी उम्दा दुआ है, इस्लामिक एजुकेशन हो या एकेडमिक एजुकेशन हो, जब वो अल्लाह के लिए हो और

मिशन ए मुस्तफा मुस्तफवी मिशन, तो इस दुआ में दीनी उलूम और दुनियावी उलूम दोनों खजाने वाले। और गौसे पाक ने हमेशा अपने निस्बत वालों का ख्याल रखा, हमेशा कलायदुल जवाहिर में और आपकी सीरत में जो और किताबें लिखी गई तकरीबन सब में ये है कि आपने फरमाया कि मैंने दोजख के दारोगा मालिक से पूछा कि क्या मेरे अस्हाब में से, मेरे मानने वालों में से कोई तुम में है, तो मालिक ने कहा जो दारोगा है दोजख जहन्नम है कि ला आपके असहाब मानने वालों में से मुझ में कोई नहीं। तो ये जो है वकीना अजाब अल्लाह, अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा, वल्लाह सेव अस फ्रॉम हेल फायर। ज़ाहिर है कि आग के अजाब से बचने के मुख्तलिफ असबाब हैं, रीजन से उनमें से एक औलिया की और हुजूर गौसुल वरा की निस्बत, उस निस्बत की बरकत से अल्लाह पाक एक तो सही अकीदा अता फरमाता है, और अकीदा सही हो तो फिर उस पर इस्तिकामत अता फरमाता है, और दूसरा यह है कि अल्लाह फिर नेकियों की तौफीक देता है। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि बेअत से पहले उनकी जिंदगी और होती है और बैत के बाद फिर उनकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। ये वो निस्बत है जिस निस्बत का फैज उन्हें आता होगा। फिर आपने फरमाया कि मैं अपने मुरीदों पे ऐसा हूं जैसे आसमान जमीन में, जिस तरह आसमान ने पूरे जमीन को घेरा हुआ है, तो इसी तरह गौसे पाक ने अपने मुरीदीन को, मोतकदीन को, जो भी अपनी निस्बत उनकी तरफ करे, उनको अपने दामन रहमत में और प्यार के दामन में घेरा हुआ है और लिया हुआ है। फिर आपने फरमाया कि मेरे मुरीद का मर्तबा आली ना समझ, अगरचे उसका लेवल हाई ना, तो फरमाया कि मेरा मर्तबा अल्लाह की यहां आली है, बुलंद। इसमें भी आपने अपने मानने वाले चाहने वाले अहले ईमान और सही अकीदा, जो सही अकीदा मुसलमान है, उनको एक बशारत दी, गुड न्यूज दी। लेकिन शर्त यह है कि अकीदा सही हो और सेहत अकीदा के साथ साथ सेहत अमल भी। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इंसान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह के फजल और अपने नेकियों से, नेकियों के साथ अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएगा, दोजख में जाएगा तो अपने गुनाहों की वजह से।

0: अपने बद आमाली तो बैत करने वाले ये समझें कि बैत का पर्पस क्या है। दो हमेशा याद रखिए, पहला अकीदा सही हो, दूसरा ये है कि अमल सही। अगर बैत के बाद अकीदा सही है और अल्लाह पाक आपको नेकियों की तौफीक और गुनाहों से बचा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बैत का पर्पस है उसको आपने अचीव किया, वरना वो पर्पस लेस बैत है, बेमकसद है, निस्बत के तकाजे। और बहुत आसान लफ्जों में निस्बत के दो अजीम तकाजे हैं, डिमांड्स हैं। पहला डिमांड बिलीव्स का करेक्ट होना, अकायद का सही होना। दूसरा डीड्स का करेक्ट होना, आमाल का सही होना। आला हजरत नव्वरल्लाहु कदहु ने ये जो फरमाया, तुझसे डर, डर से सख और सख से है मेरी इज्जत, मेरे गले में भी है दूर का डोरा। तो आपने देखा कि अल्लाह पाक ने उस निस्बत की क्या बहारें अता की, क्या बहारें अता की। आपकी वजह से मिलियंस बिलियंस लोगों के अकायद सही हुए और अल्लाह पाक ने आपको मनसब तजदीद अता किया, मुजद्दद। ये उसी निस्बत का फैसला। अल्लाह पाक हमें और आप सब को वही फैजान अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। सलाम अलैकुम।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे।
1: MBC रेडियो, योर म्यूजिक कंपेनियन।